100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज आषाढ़ मास की 7वीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 28 जून 2026 दिन रविवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि में। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण हमारे घर की खिड़की से अंदर आती है तो वो अपने साथ एक नई उम्मीद और सकारात्मकता लाती है। आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारा मंगल लेकर आए, इसी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

जब हम नए आरंभ की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है श्री गणपति जी का। वो जो विघ्नों को हर लेते हैं और भक्तों को शक्ति, बुद्धि और साहस प्रदान करते हैं।

हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, कल क्या होगा इस फिक्र में आज का सुकून खो देते हैं। लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कि जब हमारी चिंताएं हमारी ताकत से बड़ी हो जाएं, तो उन्हें उस विधाता को सौंप देना चाहिए जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है। जब वो साथ हैं तो डरने की फिर क्या बात है। आइए अपनी सारी चिंताएं भूलकर डूब जाते हैं

जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड आता है जब चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें नजर आती हैं। ऐसे में महाबली केसरी नंदन ही है जो हमारे रक्षक बनते हैं। तभी तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो हर संकट को पल भर में दूर कर दें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अपने अंदर के हर डर को दूर भगा दीजिए। और इस सुंदर से भजन में आइए, हनुमान जी की इस प्यारे से भजन में खो जाते हैं।

शिव जी हर किसी के हैं, जिसने भी उन्हें सच्चे दिल से मान लिया, उन पर समर्पण कर दिया। हमने ये सुना होगा ना कि हर किसी को कहते हुए सुना है कि ये विधाता की मर्जी है, ये नियति का खेल है। आखिर इससे कौन बच पाया है? और इसी विधाता और नियति से जुड़ी कहानी और इससे बचने की भी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर कौन थे जो विधाता और नियति से बच पाए थे। सृष्टि की रचना हुई तो ऋषि भृगु के दो पुत्र हुए, धाता और विधाता। विधाता की पत्नी थी नियति और इनके पुत्र हुए ऋषि मृकुंड। मृकुंड ऋषि को एक पुत्र की अभिलाषा थी जो कि पूरी भी हुई। उन्हें एक पुत्र प्राप्त भी हुआ, लेकिन उस पुत्र का विधान था कि वो सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। नियति थी मृत्यु। विधे के विधान से कोई नहीं बच सकता, तो उनके ही वंश का ये बालक कैसे बचता? विधाता के पौत्र के मन में भय नहीं था, उनके मन में था समर्पण, और वो समर्पण भगवान शिव के लिए। उन्होंने अपने आखिरी दिन शिवलिंग की स्थापना की और ध्यान में बैठ गए। जब उन्हें ले जाने के लिए काल स्वयं यमराज आए, तो यमराज उन्हें ले जाने के लिए उन पर यमराज ने मृत्यु का पाश फेंका, लेकिन उस बालक ने एक आखिरी बार शिवलिंग को कस के पकड़ लिया। अब उस काल के पाश में वो बालक भी हैं और शिवलिंग भी। शिवलिंग फटा और निकले महाकाल। उन्होंने यमराज का अंत कर दिया और शिव भगवान शिव कहलाए कालांतक, शिव जी का एक रूप। अब बालक के प्राण तो बच गए, लेकिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, मृत्यु होनी ही बंद हो गई। सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि यमराज को जीवित किया जाए ताकि सृष्टि अपने नियमों से चल सके। तो महाकाल महादेव ने उस बालक को काल से परे कर दिया, क्योंकि अगर यमराज जीवित हो जाता तो 16 वर्ष की अवधि तो उस बालक की पूर्ण हो चुकी थी। तो कालांतक ने उन्हें पहला चिरंजीवी बना दिया, जो आजीवन 16 वर्ष के रहेंगे और वे बालक कहलाए ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जो अपने समर्पण और ज्ञान के कारण सबसे कम उम्र में भगवान शिव को प्राप्त कर लिया और पहले चिरंजीवी कहलाए।

6:41 का वक्त, भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि सुन रहे हैं आप आज स्वेच्छा के साथ।

कहते हैं जब इंसान पर दुनिया का रंग चढ़ता है तो वो बदल जाता है, लेकिन जब उस पर हरि का, ईश्वर का रंग चढ़ता है तो वो डर जाता है। मीरा, कबीर, सूरदास, ये सब इसी रंग में रंगे थे। आइए हम और आप भी आज इस दिव्य रंग में रंग जाते हैं।

इस पूरी कायनात में अगर भगवान की मूरत को साक्षात दिखना हो तो वो माँ के रूप में दिखती है, चाहे वो हमारी जन्म देने वाली माँ हो या जगत जननी माँ भवानी। माँ की एक प्रार्थना हर बला को टाल देती है।

दुनिया का शोर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी ये हमें अंदर से थका देता है। ऐसे में थोड़ी देर मौन बैठकर अपने अंदर झांकिए, वहाँ आपको एक सुकून की आवाज़ सुनाई देगी, वही ईश्वर का निवास स्थान है। अब वक्त हो गया है आज की पुष्पांजलि को यहीं पर विराम देने का, लेकिन इस वादे के साथ कि दिल में ईश्वर के प्रति विश्वास और होठों पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद हम मिलेंगे कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PCB सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जीवन में ही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पहले हाथरस पहुंचेंगे, जहां सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। श्री योगी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हाथरस दौरे के बाद मुख्यमंत्री आगरा पहुंचेंगे, जहां वो आयुक्त सभागार में आगरा मंडल के लोक निर्माण विभाग के कार्यों के संबंध में बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनपदीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा करेंगे। आगरा से लौटकर मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस, सुरक्षा मानकों की जाँच की जाएगी। साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जाँच इत्यादि की जाएंगी। जांच में बस बॉडी की संरचना, बस की छत की निर्धारित भार मानक के अनुसार

मजबूती, सीट एवं सीट एंकरेज टेस्ट, बॉडी चेजिंग माउंटिंग टेस्ट, आपातकालीन गेट, फायर उपकरण का विशेष फोकस रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: नमस्कार, एक बेहद खूबसूरत और प्यार भरी सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त स्वेच्छा, आपके अपने कार्यक्रम सदाबहार गीत में। कहते हैं सुबह की जो पहली हवा होती है वो सीधे रूह को छूकर गुजरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की सच्ची मोहब्बत। तो चलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि आज की सुबह हम सिर्फ और सिर्फ प्यार के नाम करने वाले हैं। लेकिन ये जो पहला गाना है ना, वो हम सभी के दिल की आवाज है। तो आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं।
1: मर गए।

भाई जो जो शिमला जा सकता है वो जाइए, और जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए जल्द ही मानसून भी आने वाला है, फिर आपको शिमला जाने की जरूरत नहीं, आपका लखनऊ ही शिमला बन जाएगा। 7:09 आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत कार्यक्रम आज स्वेच्छा के साथ। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, प्यार तो किसी की खुशी की दुआ करने का नाम भी है। और उस दौर की बात करें तो मोहब्बत में एक पाकीज़गी थी, प्योरिटी। लोग मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाते थे तो खुद से पहले अपने प्यार की सलामती मांगते थे, जहां खुद की ख्वाहिशों से ऊपर सामने वाले की मुस्कुराहट होती थी।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:17 का वक्त, सदाबहार गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप स्वेच्छा के साथ। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जुबान होती है खामोशी, जब शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ आंखें बात करती हैं। वो दौर कितना हसीन था ना, जब एक महफिल में बैठकर भी दो दिल बिना एक लफ्ज कहे पूरी कायनात की बातें कर लेते थे।

0: आज के इस शोर शराबे वाले दौर में वो पुराने वाले प्रेम को बयां करता ये प्यारा खूबसूरत सा गाना।
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है कह

आपको याद है अपनी जिंदगी की वो पहली मुलाकात, जब उससे मिलने जाना था, हाथों में हल्की सी कपकपी थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लग रहा था सामने वाले को सुनाई ना दे जाए। शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार खुद को देखना और फिर भी ये सोचना कि मैं कैसा लग रहा हूं या मैं कैसे लग रही हूं। उस मासूम घबराहट का कोई मुकाबला नहीं है। याद कीजिए उस पल को इस बेहद से प्यारे से गाने के साथ।

0: सर्जन? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुनेंगे कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। इसमें आज श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, इनसे सुमोना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी जी की खास बातचीत आप सुन सकेंगे ठीक 10 बजे। फिलहाल अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत, स्वेच्छा के साथ एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए।

7:27 का वक्त, आज संडे का दिन है, रविवार का दिन और संडे स्पेशल है। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे सेगमेंट्स आप सभी के लिए खास पेश किए जाते हैं, जिसपे आज ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम। हर रविवार आप सुनते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच, और आज का विषय है लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म, यानी कि चयापचय से जुड़ी मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं, जिसके लिए डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल, MBBS, MD मेडिसिन, KGMU लखनऊ से आज हमारे स्टूडियोज पर मौजूद रहेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी संशय है, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0522-2238-845 और 0522-2238-852। साथ ही आप मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर fmakashwanilakhnau@gmail.com। और 12 बजे से थोड़ा पहले आते हैं, ठीक 10 बजे आप

घुमा सुबह पे जिस तरह शाम का वो घुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

7:34 का वक्त, मैं हूँ स्वेच्छा, आप सभी के साथ सदाबहार गीत कार्यक्रम में। कभी कभी सुबह काम करते हुए अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आए और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दे जाए, तो वो हवा का झोंका नहीं, दरअसल किसी की याद होती है जो कहीं दूर पार, बहुत दूर से खिड़की के रास्ते आप तक पहुंच जाती है। अगर आज सुबह आपके चेहरे पर भी ऐसी कोई मुस्कान आए तो समझिए ये अगला गाना खास आपके लिए ही बज रहा है।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: शहर आपका, धुन आपकी।

कहते हैं दूरियां कभी प्यार को कम नहीं करती, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। जब वो पास नहीं होते तब उनकी अहमियत और ज्यादा महसूस होती है। और रेडियो पर बजते ये सदाबहार गाने उन फासलों को पाट देते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बिल्कुल बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब खड़े हैं।

असली मोहब्बत वो है जो उम्र के साथ उस ढलान पर भी साथ निभाए, जब चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं पर आंखों में वही पुराना सम्मान और प्यार बाकी रहे। जैसे हमारे ये पुराने गाने जो हर दौर में लाजवाब रहते हैं, वैसे ही वो उम्र भर का साथ भी सदाबहार होता है।

0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग टीचर.
2: गुड मॉर्निंग बेटा.
3: गुड मॉर्निंग बॉस.
4: गुड मॉर्निंग मम्मा.
5: गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग.
7: गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग.
10: Current affairs, history, birthdays, traffic, weather, music or entertainment. Sab kuch milega Morning Breakfast Show, Good Morning Lucknow mein. Har subah 8:15 se, only on Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.
11: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से
12: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
11: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
12: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
11: जहाँ आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट.
12: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
11: fmrainbowhelpline@gmail.com.
12: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर.

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 7:53 का वक्त, संडे स्पेशल है तो बहुत सारे खास सेगमेंट हैं। बागवानी स्पेशल सेगमेंट भी आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में ठीक 9 बजे, और 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के, और 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। तो भाई रेडी

हो जाइए, आज बहुत कुछ है आप सभी के लिए खास। फिलहाल प्यार की बातें और पुराने गानों का ये साथ, इसके साथ पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया और सदाबहार गीत कार्यक्रम को वाइंड अप करने का वक्त आ गया। पर अब ये दिन की शुरुआत हो चुकी है और खूबसूरत दिन के साथ बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन ट्रैक्स और बहुत सारे आरजेस आप सभी से मिलने आएंगे। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जो कि रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से, और ठीक 8:15 बजे होगी हमारी आपकी मुलाकात एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। तो चलते चलते बस यही कहना है कि काम के इस भागदौड़ में भी अपने दिल में मोहब्बत की उस महक को कम मत होने दीजिएगा। मैं आपकी दोस्त स्वेच्छा अब आपसे विदा लेती हूँ एक प्यारे से ट्रैक के साथ। मिलेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। 62

0: और इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ाने भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
5: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
6: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों की पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप

0: में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है। हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र

0: ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: वक्त चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता भी अपने आप बन जाता है।
4: बिल्कुल, और ये रास्ते आपके हौसले से ही बनते हैं वाकई। और जब आपके दिल में बिल्कुल जुनून हो किसी चीज़ को पाने की, तो वो आप तक ज़रूर पहुंचती है।
3: और साथ ही साथ इतनी भीषण गर्मी में अगर थोड़ी सी बौछार पड़ जाए तो देखिए कितना सुकून महसूस होता है। लखनऊ वाले तो आज सवेरे उठे होंगे तो कहेंगे वाह क्या बात, क्या मौसम है।
4: बिल्कुल, और रात से ही छुटपुट बारिश का जो मौसम है वो बना हुआ है। एक बड़ा ही कहते हैं राहत मिली है बड़े दिन बाद सब लोगों को, और ये जो मानसून का इंतज़ार इतने दिनों से हर कोई कर रहा था, उन सभी का इंतजार अब जाके जल्द ही खत्म होने वाला है। जल्द ही मौसम मानसून भी दस्तक देने वाला है।
3: बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वेच्छा और विनय गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हो गए हैं।
4: बिल्कुल, आपके संडे को बहुत स्पेशल बनाने के लिए हम आ गए हैं। बहुत सारी खास बातें, स्पेशल सेगमेंट है आप सभी के लिए, और इस प्यारे से मौसम में एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
3: जी, वक्त हो गया है 8:22 और अब बारी है सुबह की एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ। आज का मॉर्निंग मंत्रा हमसे क्या कहता है?
4: और दोस्तों, मॉर्निंग मंत्रा कह रहा है कि जज्बा रखो तो पत्थर भी पिघल जाता है, हौसला हो तो किस्मत भी बदल जाती है।
3: बिल्कुल, अगर आपके पास जज्बा है किसी चीज को करने के लिए और हौसला है तो किस्मत जरूर बदल के रहेगी।
4: बस प्रयास लगातार होने चाहिए।

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: जी, अब बारी है आज के मुद्दे से आप सभी को जोड़ने की। और आज का मुद्दा बहुत आसान है, बहुत सीधा सा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आप अपने जीवन का, आपके जीवन का फलसफा क्या है? आप वर्तमान में जीते हैं या भूत में या भविष्य में?
3: बिल्कुल, कई बार लोग क्या करते हैं ना कि कल की चिंता उन्हें बहुत ज्यादा होती है, स्वेच्छा कि आने वाला कल में क्या होगा, कैसे होगा, और वो ये भी इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहते, उसने ये कह दिया था मुझे, है ना, और उसकी ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, उसकी चिंता उन्हें नहीं होती। उनकी सेहत खराब हो रही है, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं और लोगों से ठीक से बात नहीं करते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है।
2: जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बस ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, सोचते रहते हैं बातों को, पुरानी बातों को दिल से लगा के रखते हैं और भविष्य के लिए उन पुरानी बातों को सोच के कि भविष्य में क्या होगा, उसने ऐसा किया तो भविष्य में क्या होगा, या मैंने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया तो अब फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, इन सब बातों को लेकर जो लोग टेंशन में रहते हैं, आप उनमें से आते हैं या आप प्रेजेंट में जीते हैं?
3: बिल्कुल, हमें बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। हम कर रहे हैं आपकी मेल्स का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
1: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से
2: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियां, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
1: तो अपने हर सवालों का जवाब

0: जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। जी, संडे स्पेशल है तो ठीक 9 बजे आप सुनेंगे बागवानी स्पेशल सेगमेंट, जिसमें एक्सपर्ट आएंगे, आप सभी के सवालों का जवाब देंगे। तो आप अपने सवालों के साथ एकदम रेडी हो जाइए और अभी से हमें भेज दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbowhelpline@gmail.com।
2: बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में कई बार दिक्कतें होती हैं पेड़ पौधों को, और गर्मी में कई बार हम बहुत परेशान भी होते हैं। लेकिन आपको पता है, लाइफ में भी कई बार बड़े सारे लोग परेशान होते हैं
1: हमेशा
2: और उसके लिए फिर वो चिंतित होने लगते हैं, और चिंतित होने के बाद कई सारी बीमा कंपनियों का फायदा होने लगता है।
1: बिल्कुल, और इसी मुद्दे से, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ आज हम एक दिन मना रहे हैं, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कभी अचानक तबीयत खराब हो जाए, कभी कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कोई और मुश्किल आ जाए, ऐसे समय में बीमा हमारे लिए एक मजबूत सहारा बनता है।
2: और यही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 28 जून को, यानी आज ही के दिन, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देने के लिए बीमा योजना चुनना और समय समय पर उसको अपडेट करना जरूरी हो जाता है।
1: और आज के समय में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, वाहन बीमा और घर का बीमा जैसी सुविधाएं सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बनती जा रही हैं। बढ़ते इलाज के खर्चे और रोजमर्रा की अनिश्चितताओं को देखते हुए बिना आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत ढाल का काम करता है।
2: जी, तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस पर हम तो यही कहेंगे कि केवल बीमा करवाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी जो प्रेजेंट में क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ही आप बीमा करवाएं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर ले लें जिससे आपका वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट टाइम वो हो जाए। स्वेच्छा एक और चीज़ हम कहेंगे कि बड़े सारे लोग ना अपने कार का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बाइक का कर लेते हैं, घर का करवा लेते हैं, अपना नहीं करवाते।
1: आजकल तो मोबाइल फ़ोन का भी हो रहा है।
2: तो मतलब हम इन सब मैन मेड चीजों का तो करवा लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कितना जरूरी है बीमा, वो जागरूकता आज का दिन दे रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो इसी बात के साथ एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के बीच, इस बात पर आप विचार करिएगा। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए।

0: हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे आप सभी लोगों को जिनका आज है खास दिन, स्पेशल डे। आप सभी को आपके खास दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी बिल्कुल, ये गाते हुए हमारे चेहरे पर अलग से मुस्कान आ गई होगी, और जिनका आज बर्थडे होगा वो मौसम भी बढ़िया है और बड़े खुश होंगे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बहुत बधाई, और किसी भी दिन की एनिवर्सरी मना रहे हैं तो बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, और आप सभी को हम बता दें कि आज आप अपना खास दिन है वो किन के साथ शेयर कर रहे हैं। जिस पर पहला नाम है शिव प्रसाद गुप्त, जो है भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, उद्योगपति और हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत थे। आज इनकी जयंती है।
1: दोस्तों, इन्होंने एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र दैनिक आज की स्थापना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज इनकी जयंती पर हमने शत नमन करते हैं।
0: जी, और आज है पीवी नरसिम्हा राव जी की भी जयंती है। पामुल वेंकट नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, और उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक सुधारों का जनक भी माना जाता है।
1: साल 1991 में जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब इनके नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू हुई, और जिससे हमारा देश भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली।
0: और आज जयंती है जसपाल राणा जी की, भारत के महान निशानेबाजों में से एक थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित किया। इन्होंने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक भी जीते।
1: दोस्तों, इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और बाद में उत्कृष्ट कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और खिलाड़ी के रूप में सफलता के बाद इन्होंने शूटिंग टीम के कोच के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनु भाकर जैसे बहुत सारे प्रतिभाशाली निशानेबाज को इन्होंने हमारे देश को दिया है, और बड़ी दुखद घटना इसी महीने हुई, 12 जून को ये हमसे जुदा हो गए।
0: जी, और अब बारी है कुछ प्रसिद्ध बर्थडेज की। आप सभी के बीच नाम शामिल करते हैं आनंद एल रॉय, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता। आज इनका भी है जन्मदिन। वे साधारण लोगों की असाधारण कहानियों को संवेदनशील और मनोरंजक ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।
1: और तनु वेट्स मनु की दोनों सीरीज रांझणा और शुभ मंगल सावधान अतरंगी जैसे बहुत सारे फिल्मों

0: का डायरेक्शन किया है इन्होंने, और इनकी फिल्मों में जो कहानी होती है वो रियल मुद्दों से जुड़ी रहती है
1: जी। और आप सुन रहे हैं विशाल दलान के गाने, सुबह से हमने काफी सारे बजाए, आज इनका भी है हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। प्रसिद्ध संगीतकार, गायक, गीतकार और संगीत निर्माता, लोकप्रिय संगीतकार हैं विशाल जोड़ी। इनकी एक मिसाल है इनकी जोड़ी विशाल शेखर की, ये लोकप्रिय जोड़ी है जिसने बॉलीवुड को अनेक सुपर हिट गाने दिए,
0: जैसे ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, बैंग बैंग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पठान, बहुत सारी लंबी लिस्ट है दरअसल
1: जी। और आज है बर्थडे विवियन डिसेना, भारतीय टेलीविजन जगत के लोकप्रिय अभिनेता, जिन्होंने अपने करियर की, अपनी एक्टिंग के करियर की शुरुआत 2008 में की, लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान प्यार की ये एक कहानी से मिली।
0: मधुबाला सीरियल अगर आपने देखा हो तो उसमें विवियन डिसेना एक अलग किरदार में है, और इनका जो चेहरा है ना वो अलग ही नजर आता है, रोमांटिक में भी बढ़िया लगते हैं, और अगर आप ये विलन के रूप में देखें तब भी बेहतरीन लगते हैं। और एक बड़े खिलाड़ी हैं, पैरा हाई जंप खिलाड़ी हैं, मरियप्पम थंगावेलु, उनका भी जन्मदिन है आज, और पूरे विश्व में ये विख्यात हैं। और एक बचपन में एक सड़क दुर्घटना में इनका दाया पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी साल 2016 में रियो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत और पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मरियप्पम थंगावेलु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी। और अब बारी है एक प्यारे से ट्रैक की, आनंद एल रॉय के डायरेक्शन फिल्म तनु एट्स मनु का ये ट्रैक आप सभी के लिए।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा और हम आपके साथ चलते रहेंगे।
4: और अब आपके मेल्स को भी शामिल कर लेते हैं। 8:51 का वक्त हो गया है। सुधांशु हमें सुबह सुबह मेल करते हैं। पहला मेल इनका आया है बख्शी का तालाब से। लिखते हैं, पुष्पांजलि कार्यक्रम अच्छा लगा और सदाबहार गीत भी अच्छे लगे और अपनी भारतीय महिला टीम को आज भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के होने वाले मैच के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं ये।
3: जी और साथ ही साथ दिलीप राजमाही की मेल आईडी से भी मेल आया है और इन्होंने लिखती है कि प्यारी सी क्यूट स्वेच्छा दीदी को प्यार भरा नमस्कार, रिंकी पिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर रायबरेली से इन्होंने लिखा है और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, पुष्पांजलि और सदाबहार का नगमे अच्छे लगे और साथ ही साथ कह रहे हैं हमारे यहाँ बारिश हो रही है, कल मेरे घर में इनविटेशन है। अच्छा, ओ आपको इनवाइट भी कर लिया इन्होंने। और इन्होंने कुछ दोस्तों के नाम लिखे, उसमें पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, समा परवीन, बड़ी सारी लंबी लिस्ट है।
4: जी, सभी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम सिंह जी हमें मेल कर रहे हैं फैजाबाद रोड लखनऊ से। लिखते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुप्रभात, नमस्कार, आपने कहानी कही हकीकत वाली अच्छी लगी, गीतों को सुनवाया वो भी अच्छा लगा, मैं 1970 से 1990 के वर्षों में चला गया हूँ। अच्छा, सदाबहार गीत में जब ये नगमे सुन रहे थे तब की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और लिखते हैं, इस समय मेरे क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया है क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है।
3: और साथ ही साथ रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेशाय नमो, सदाबहार गीत सुन रहे होंगे ये, जिला रायबरेली से इन्होंने हमें मेल किया है और कुछ नाम है, रामराज, राजू भान, रामचरण, शंकर भैया, पप्पू पासी और बड़े सारे नाम हैं और इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं।
4: वारिस अली जी हमें लिखते हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को नमस्कार, आपको भी लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के कलाकार खुद बनिए और वही रंग भरिए जो दिल को सुकून दे, पुष्पांजलि अच्छा लगा। और लिखते हैं कि जहाँ भजन है वहाँ भाव है और जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। और इस वक्त, जिस वक्त इन्होंने मेल किया उस वक्त लिखते हैं, सदाबहार गीत सुन रहा हूँ, गाने अच्छे लग रहे हैं और मैं इसी तरह के गाने को सुनता हूँ।
3: साथ ही साथ नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है और हम लोग बहुत बढ़िया है और लिखती, मेरी प्यारी दोस्त पीहू की मम्मी डैडी की आज एनिवर्सरी है। अरे हम तो बधाई दे ही चुके हैं और फिर से हम पीहू की मम्मी डैडी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कह रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी लिखा है, मम्मी डैडी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा, वो उनके लिए इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। थैंक यू सो मच।
4: घनश्याम सिंह जी का एक और मेल आ गया है मुद्दे पर, लिखते हैं कि निश्चित रूप से मैं वर्तमान में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, बस इतना लिखा है इन्होंने।
3: और वकील अहमद ने भी हमें लिखा है और ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, आज के बारे में सोचते हैं, मुद्दे पे ही कह रहे हैं कि आज के बारे में सोचते हैं क्या हमें करना है, कल जो होगा कल देखा जाएगा। क्या बात है, वकील अहमद मंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर से इन्होंने मेल किया है।
4: जी, आप सभी लोगों का हमें शुक्रिया जिन्होंने हमें मेल किया, भी बहुत सारे मेल्स बाकी हैं, सबको पढ़ेंगे हम, लेकिन आप सभी के बीच मुद्दा एक बार फिर से रिपीट कर दें कि आपके जीवन का फलसफा क्या है, आप

0: बताइए, आप वर्तमान में जीते हैं या भूत या भविष्य में?
1: बहुत ही सिंपल है, हमें लिख भेजिए fmakashwani@gmail.com पर। और फिलहाल एक बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए आ रहे हैं, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 9 बजे आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर को राजधानी लखनऊ से प्रकाशित अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है चंपत राय अनिल का इस्तीफा। दैनिक जागरण लिखता है चंपत राय व अनिल मिश्र का इस्तीफा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय व अनिल मिश्र का इस्तीफा। वहीं अमर उजाला ने हेडिंग दी है लंबी फजीहत के बाद आखिरकार चंपत और अनिल मिश्र का ट्रस्ट से इस्तीफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यमुना सिटी ईडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सोलर उपकरण निर्माण संयंत्र के शिलान्यास की खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। नवभारत टाइम्स ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है यूपी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान के हवाले से लिखा है यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का हब बनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति रही। अमर उजाला ने लिखा कि ग्रीन एनर्जी में प्रदेश की होगी नई पहचान, सौर ऊर्जा उपकरणों का केंद्र बनेगा नोएडा। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है जंगल राज कहा जाने वाले उत्तर प्रदेश मंगल राज में बदला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र को संबोधित किए जाने की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। अमृत विचार ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है मूल्य और आदर्शों की बदौलत शून्य से शिखर तक पहुंची भाजपा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की खबरें भी अखबारों की सुर्खियों में है। अमर उजाला ने लिखा है टूटा युद्ध विराम, अमेरिका ने ईरान पर फिर किए हमले। अमृत विचार ने लिखा है युद्ध विराम टूटा, ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने भी बरसाए बम। दैनिक जागरण ने लिखा है अमेरिका ईरान में फिर संग्राम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्लैट खरीदारी के संबंध में दिए गए निर्णय को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय के कथन के आधार पर लिखा है फ्लैट पर कब्जा मिलने के बाद भी मिलेगा देरी का मुआवजा। अमृत विचार ने लिखा है फ्लैट पर कब्जा लेने के बाद भी देरी के लिए मुआवजा मांग सकता है खरीदार। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आप जानते हैं कि 9 बजे के बाद हम लेते हैं बागवानी जो स्पेशल हमारा सेगमेंट है उसे, और हमारे साथ जुड़ जाते हैं एक एक्सपर्ट। तो हमारे साथ हैं
3: डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उपनिदेशक उद्यान, उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश से। हेलो
4: जी, नमस्कार।
3: जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: हमारे कार्यक्रम में।
1: जी
2: तो सर हमारे पास सबसे पहला मेल श्वेता का है, महमूदाबाद सीतापुर से इन्होंने मेल किया और लिखती हैं कि मेरे घर पे करीब 50 गमले में अलग अलग प्रकार के इंडोर प्लांट लगा हुआ है। लगभग सारे गमले में छोटे छोटे घोंघे हो गए हैं। क्या ये पौधे को नुकसान करते हैं? अगर करते हैं तो उसका क्या उपाय है? और मैंने कुछ दिन पहले इनमें नीम का पानी डाला था लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, और ये घोंघे क्यों हो गए हैं, इसका क्या कारण है? और भी लिखा है कि और मैं अपने पौधे में किचन से निकला हुआ वेस्ट को पानी में डाल के उसके बाद उसी पानी को गमले में डेली डालती हूँ, ऐसे कोई नुकसान तो नहीं होता? और कौन कौन से सब्जी के छिलके इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल सभी प्रकार के सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मायने रखता है कि इसका कंसंट्रेशन जो सघनता है, कितना गाढ़ा घोल डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा नुकसान कभी कभी कर सकता है। इसलिए जब भी डालें तो इसको सड़ाने के बाद जब वो फर्मेंटेशन होता होगा फल का या सब्जी का छिलका, तो इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें, कम से कम 20 गुना पानी ज्यादा मिला करके
0: जी।
1: और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। नंबर एक। नंबर दो कि मिट्टी की छनाई इन्होंने अपने गमलों की कब नहीं की है। अक्सर बरसात के बाद गमलों की मिट्टी पलट करके और उनकी जड़ें जो होती हैं, जो ज्यादा हो जाती हैं, उनकी प्रूनिंग करते हैं हम, तो उसी समय जो गमले की पूरी मिट्टी होती है उसको एक छान देना चाहिए बारीक छन्ने से, तो ये घोंघे की समस्या नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि काफी दिनों से गमलों की मिट्टी बदली नहीं गई है, तो इस बार जैसे ही बरसात खत्म हो सितंबर के आखिर में, तो गमलों की पलटाई करें तो ये घोंघे की समस्या समाप्त हो जाएगी
0: जी।
2: तो सर ऐसा करने से क्या है, जो खरपतवार निकलते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं सर?
1: हाँ बिल्कुल, जितने भी खरपतवार के बीज होते हैं वो अंदर पड़े रहते हैं, वो भी मर जाते हैं जब आप मिट्टी पलटते हैं, सुखाते हैं, दूसरी ताजी मिट्टी खेत की ला करके उपजाऊ मिट्टी भरते हैं, तो पौधा भी स्वस्थ होता है और उसको एरेशन बढ़िया मिलता है, तो सारे वीड और जितने भी नुकसानदायक चीजें होती हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं।
0: जी जी जी। सर मुनेश कुमार पूछना चाहते हैं कि इस समय गेंदे की खेती कर सकते हैं क्या, या फिर कोई और फूल या कोई ऐसा बताइए जिससे हम खेती कर सकते हैं, और अगर गेंदे की नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरे फूल की?
1: नहीं, गेंदे की भी कर सकते हैं, गेंदा तो इस समय पूरे साल भर होता है, गेंदे की भी प्रजाति लाएं चयन करके जो इस समय हमारे बरसात के सीजन में होती है वो भी मिल जाएगी। और फूल लगाने के लिए तो बरसात में जो सीजनल पौधे होते हैं वही दो तीन लग सकते हैं। गेंदे की खेती बढ़िया कर सकते हैं, बशर्ते कि पौधा जो पौध उनकी तैयार करें वो सुरक्षित हो, लो टनल पाली हाउस में हो, जो कि बरसात आने वाली है। अब जब क्यारी बनाएंगे तो थोड़ा ऊंची बनाए ताकि जो जहाँ पर पौध तैयार हो रही है वहां पर पानी ना भरे, या जो हमारी हाईटेक नर्सरियां हैं उत्तर उद्यान विभाग की हर जिले में है, वहां पर अपना बीज लेकर के बढ़िया क्वालिटी का दे दें, जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करके वो बढ़िया पौध तैयार करके आपको दे देंगे सुरक्षित, जिसमें कोई कीड़े बीमारी कोई रोग नहीं लगेंगे और पौध इनकी बढ़िया चलेगी
2: जी। और सर लखनऊ से ऐशबाग से वारिस जी ने हमें मेल किया है, कहते हैं बालकनी की शोभा बढ़ाने के लिए कौन सा फूल लगाएं जिसकी खुशबू भी अच्छी और देखने में सुंदर हो?
1: खुशबू के लिए तमाम सारे फूल आते हैं, जैसे चमेली है, बेला है, अब उनको क्या पसंद है, गुलाब है, इनमें सब में खुशबू आती है। अब देखना है कि बालकनी में उनके जो भी उनकी पसंद का हो रख सकते हैं फूल
2: जी,
1: उसको लगा सकते हैं
0: जी।
1: मैं
0: जी।
1: एक सूचना दे दूं अभी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लखनऊ के निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है अगले हफ्ते में, 3 से 5 जुलाई तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो लोग आम के शौकीन हैं, आम को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, खाते हैं, उनके लिए एक प्रदेश भारत देश स्तर का एक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लोग करीब 700 से ज्यादा आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा, 5 ग्राम से लेकर के और 1 किलो से ज्यादा करके आम रहेंगे। तो मेरा सभी शहर वासियों से अनुरोध है कि उसमें जाए, कम्पिटिशन में देखें आम की प्रजातियों को, भिन्न भिन्न प्रकार की, और उसका लुत्फ उठाएं, ये अच्छा मौका है।
2: हाँ मतलब हम उसे खा भी सकते हैं, अब ये कह रहे हैं।
1: हाँ, खाने की प्रतियोगिता होगी, जो 8 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनको खाने के लिए भी आम मिलेगा, पंजीकरण करा करके प्रतिभाग करें, और जो ज्यादा आम खाएंगे उनको इनाम भी मिलेगा।
2: मैं जरूर जाऊंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत बेहतरीन सूचना दी हमारे लिसनर्स को।
1: जी
2: तो इसी सूचना के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, और ये जो एंड में आपने तड़का लगाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू, धन्यवाद
0: जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ।

0: डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उपनिदेशक उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश से, इन्होंने आप सभी के सवालों का जवाब दिया. साथ ही आप सभी को एक बड़ी खास सूचना दी, आम जो जिनको पसंद है, मैंगो लवर्स जो हैं, उन सभी के लिए आपको ढेर सारी वैरायटीज़ मिलेंगी मैंगो की देखने को, खाने के लिए. तो आप बिल्कुल जाइए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 जुलाई से. और इस पर आते हैं बागवानी पर, जिन्होंने भी आज हमें सवाल नहीं भेज पाए, उन सभी के लिए कि आप अपने सवाल अभी भी भेज सकते हैं, हमें भेज दीजिए. हमारी मेल आईडी है fmrainbowhelpline@gmail.com. हम अगले संडे आपके सवाल को जरूर शामिल करेंगे.
1: बिल्कुल, और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, जहां पर इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है.

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: 9:15 का वक्त और संडे है, साथ ही में 28 जून की तारीख है और इस तारीख से जुड़े कुछ खास इतिहास है, कुछ खास बातें हैं हमारे आज के दिन से जुड़ी हुई, अब वो जान लेते हैं।
1: तो दोस्तों 1846 की बात करें तो आज ही के दिन बेल्जियम के वाद्य यंत्र निर्माता एडोल्फ सिक्स ने विश्व प्रसिद्ध संगीत वाद्य सैक्सोफोन का पेटेंट कराया था।
0: और आज ही के दिन 1919 में वर्साय की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पर हस्ताक्षर हुए, जिसके साथ प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ।
1: साथ ही साथ 1965 की बात करें तो दुनिया के पहले वाणिज्यिक संचार उपग्रह अर्ली बर्ड यानी इंटेल सेट वन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय संचार सेवाएं शुरू की थी, जिससे वैश्विक दूर संचार के नए युग की शुरुआत हो गई थी।
0: और साल 2007 की बात करें तो एप्पल कंपनी ने अमेरिका में पहली बार आईफोन की बिक्री शुरू की, जिसने मोबाइल फोन के उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया।
1: तो दोस्तों ये थी भविष्य की बातें, फ्यूचर यानी पास्ट की बातें थी, और आप हमें मुद्दे पे बता रहे हैं ना कि आप किस पे जीते हैं, भविष्य में, भूत में या प्रेजेंट में।
0: तो आप हमें मेल करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। पास्ट की बातें हमने कर दी, फ्यूचर अभी आया नहीं है, प्रेजेंट की बात आप हमें बता दीजिए कि आप किस
1: माइंडसेट के हैं।
0: जी
2: तुझे तक तक तक

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर। 9:22 हुए हैं और स्विच्छा और विनय आपके साथ हैं।
2: और भाई 9 बजे आपने बागवानी स्पेशल सेगमेंट तो सुन लिया, बारी है 10 बजे की। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के, जिसमें आज श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, इनसे सुमोना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी जी की खास बातचीत आप सुन सकेंगे। याद रखिए ठीक 10 बजे।
1: और साथ ही साथ दोस्तों 12 बजे, आज है संडे, और 12 बजे आएगा प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आप जानते हैं कि इसमें हम अपने स्टूडियोज में आमंत्रित करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर साहब को, और आज का विषय है लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म, यानी चयापचय से जुड़ी मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं। और हमारे साथ रहेंगे स्टूडियोज में डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी, जो कि MBBS MD मेडिसिन है KGMU लखनऊ से। तो इस कार्यक्रम को सुना ना भूलें, क्योंकि इसमें आप फोन करते हैं और मेल्स के थ्रू डॉक्टर साहब से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं।
2: जी, एक प्यारे से ट्रैक के बारे, फिर लौटेंगे, बहुत सारी बातें अभी भी हैं बाकी।

0: और दोस्तों हम जानते हैं कि लखनऊ और आसपास का मौसम बड़ा सुहावना हो चला है और मौसम की बहुत सारी जानकारी देने के लिए हर रोज हमारे साथ रहते हैं
1: वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, और आज भी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं हमारे शहर के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है।
0: तो सर गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी गुड मॉर्निंग।
0: तो सर बताइए कैसा मौसम रहने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ अच्छी खबर लग रही है, सुनने में लग रही है।
2: जी बिल्कुल, जैसा कि रात में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी का असर हुआ जिससे हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे मानसूनल फ्लो बढ़ रहा है
1: जी।
2: आज भी थोड़ा सा ऐसे धूप छाव वाला रहेगा, थोड़ा बादलों की आवाजाही रहेगी और छिटपुट हल्की छिटाकसी टाइप का आज भी संभावना है। बाकी कल से भी मौसम बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहेगा। तो कुल मिला के कहे तो आने वाला यहाँ से थोड़ी गर्मी से हमको राहत मिलेगी और यहाँ से फिर जो मानसून फ्लो है उसमें बढ़ोतरी आएगी और आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना पूरी है। तो कुल मिला के कहे तो अब यहाँ से मौसम में तब्दीली आ रही है।
1: जी
0: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये गुड न्यूज देने के लिए सर हमें।
2: ओके धन्यवाद
1: जी। तो दोस्तों भाई सर ने बताया कि मौसम अब अच्छा रहने वाला है, आगे मॉनसून जल्दी आने वाला है, तो ये अच्छी खबर है। ये तो हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने इतनी अच्छी खबर हम सभी को बताई।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
5: भाई अब मैच का क्या होगा,
4: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
6: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
7: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
6: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
7: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
8: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
9: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज विनय और स्वेच्छा आपके साथ हैं। 9:35 होने को है और अब चलिए फिर से हम अब बढ़ चलते हैं मेल्स की ओर।
10: बिल्कुल, जनवीश कुमार जी हमें मेल करते हैं, लिखते हैं, आप सभी आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुद्दे पर कहना है कि हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, अगर वर्तमान अच्छा तो भविष्य भी अच्छा ही रहेगा।

0: मेरे हिसाब से, और कार्यक्रम सुन के अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेल किया है हमें कन्नौज जिला, कन्नौज नोएडा से ये सुन रहे हैं हमें।
1: और साथ ही साथ रोशनी रावत ने हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, हम लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये बहनवा तहसील सफीपुर ज़िला उन्नाव से मेल कर रही हैं, और मुद्दे पर इन्होंने लिखा है कि ना चाहते हुए भी कई बार चिंताएं सताती हैं कल की, मगर अब कर भी क्या सकते हैं, कहते तो सभी हैं कि चिंता मत करो, लेकिन करते सभी हैं। सोचने वाली बात यह है कि पल पल की खबर नहीं है, फिर कहते हैं कि इंश्योरेंस करवा लो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कुल मिलाकर मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं। ये सही है,
0: ये बढ़िया। अरुण कुमार कुशवाहा में हरदोई से लिख रहे हैं कि जानकारी और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और मंत्रा जो था वो जीवन को संतुलित बनाए रखने में बहुत मदद करता है। मुद्दे में कहना है कि हमें भूतकाल और भूतकाल को भूलकर भविष्य की चिंता ना करके अपने वर्तमान को जीना ही सर्वोत्तम है, और इतना प्यारा प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद।
1: साथ ही साथ हमें विनीत कुमार ने ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल्स ज़िला सीतापुर से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, और हम दोनों को इन्होंने प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं, और कहते हैं कि मेरा रेडियो डाउन हो गया है इसीलिए सुन नहीं पा रहा हूँ। अरे मोबाइल पे सुन लीजिए।
0: हमें मुनेश कुमार राज हमें मेल कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से, प्रणाम लिखते हैं, कार्यक्रम हर घंटे बहुत अच्छा है, लाजवाब है, हर रोज हर घंटे लाइव सुनता हूँ। मुद्दे पर कहना है कि जो बीत गया वो अब लौट कर कहाँ आएगा, और आगे ईश्वर की इच्छा है, इसलिए हम वर्तमान में जीते हैं। जिस प्रकार समय को कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार बीते हुए दिनों को केवल याद कर सकते हैं और भविष्य में अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। वर्तमान ही तो है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसलिए न भूत में न भविष्य में, वर्तमान में है हम जीते। आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज,
1: थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ बबीता राव ने हमें लखनऊ गुसाईगंज से मेल किया है, और टॉपिक पे कह रही हैं कि मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, लेकिन अब से अच्छा, एक इन्होंने जो लखनऊ में अग्निकांड और उस हादसे का जिक्र किया है, तब से ये एहसास हुआ है कि किस उम्र में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेना व्यर्थ है, और जो जिंदगी है बस आज है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें और लोगों को वर्तमान में जीना चाहिए, इसीलिए अब से जो है बस वर्तमान है, जिंदगी छोटी ही सही लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा मेल आपने किया। बिट्टू भाटिया हमें मेल कर रहे हैं, हरियाणा से सुन रहे हैं, रीता भाटिया, रजत, मयंक भाटिया, और साथ ही एक और मेल है दिलावर खान जी का, इनको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू हमें सब सुन रहे हैं,
1: क्या बात है। और राममोहन गुप्त जी ने हमें कुछ पंक्तियां लिखी है, ये लखीमपुर खीरी से हमें मेल करते हैं, कहते हैं, यूं तो जीते आज में पर रख भविष्य का ध्यान, कल की चिंता भी जरूरी करता है हर इंसान, थोड़ी बहुत व्यवस्था अपने और परिवार हित करते रह कर होता व्यतीत सुख शांति सहित, जीते वर्तमान में रख कर ऊंच नीच का ध्यान, बीते कल से ले सबक भविष्य संजोए समाधान।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया राम मोहन गुप्त जी, आपने अपनी पंक्तियों से एक बार फिर से बहुत प्यारा सा मेल हमें लिखकर भेजा। 9:39 हो गए हैं, और अब बारी है एक प्यारे से ट्रैक की, और फिर लौटेंगे इस गाने के बाद।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
5: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
6: जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से। और अब हमारे प्रोग्राम में बारी है आप सभी को हमारे शहर से जुड़े ट्रैफिक के हाल की अपडेट्स देने के लिए, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ते हैं TSI विकास सिंह जी। तो आइए जानते हैं उनसे हमारे शहर के ट्रैफिक का हाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज जैसा कि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में यातायात का उतना दबाव नहीं रहता है, तो ऐसे में जो है सड़कों पर तो ट्रैफिक नहीं है
6: जी।
7: और संडे के दिन होने से जो है शाम के समय में हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है वो लूलू माल, प्लाचियो माल हो गया और हजरतगंज की तरफ अमीनाबाद, ये एरिया हमारा जो है यातायात से ज्यादा प्रभावित होता है। और अगर लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें तो

0: स्कूटर इंडिया की तरफ और हमारा बारह बिरवा आलमबाग की तरफ यातायात का अधिक दबाव रहता है। तो ऐसे में यदि आप शाम की तरफ निकल रहे हैं तो यदि अति आवश्यक ना हो तो इस मार्ग के प्रयोग से बचें, आप इन मार्गों का प्रयोग कम से कम करें, और अगर अति आवश्यक है तो थोड़ा सा घर से जल्दी निकलें शाम को। और फिलहाल हम ऐसे स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस की विशेष ड्यूटी लगाकर सुगम यातायात का संचालन कराते हैं। मैम, आज कोई विशेष डायवर्जन नहीं है, यदि कोई डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं तक अवश्य अपडेट पहुंचाएंगे। बस यही अनुरोध है श्रोताओं से कि आप जब रोड पर चलें तो कृपया आप जो है यातायात नियमों का पालन करें। जैसे आप वाहन चला रहे हैं तो खाली रोड दिखता है मैम, तो आदमी जो है सोचता है थोड़ा सा तेजी कर ले, और जहाँ स्पीड आपने बढ़ाया तो वो स्पीड आपके लक्ष्य की तरफ ना हो करके वो ऐसे मतलब दूसरे स्थान पर ले जाता है जहाँ आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं। तो ऐसा ना हो, ईश्वर ना करें ऐसा हो, परंतु आपके और दूसरे व्यक्ति के जीवन की कुशलता के लिए ये जरूरी है कि आप जब भी रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर जो निर्धारित स्पीड लिमिट है उसी पर उसी का आप पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। तो यही अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, हमारे साथ थे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी, जो हमें ट्रैफिक की जानकारी दे रहे थे। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं।

0: इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, धड़कन लखनऊ में आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम, जो अपने बिल्कुल वाइंड अप की ओर है। 9:50 और ये ठीक 51 मिनट का वक्त हो गया है, और अब जल्दी जल्दी आप सभी के मेल्स को शामिल करना है।
5: तो देखिए, नवीन मिश्रा जी ने हमें मेल किया है और ये इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में हमें कुछ लिख रहे हैं। तो नवीन जी, आपने अपने अपनी बातें हमसे शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: और मोनू सेठ जी हमें मेल कर रहे हैं, आप दोनों को नमस्ते। और जल प्राणियों का प्रणाम, जल ही फसलों का जीवन है, जल के बिना संसार में कोई बीज या अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता।
5: और साथ ही साथ सुधांशु जी ने राधे राधे कहा है, और वो हमें इटौंजा बख्शी का तालाब से मेल करते हैं और कहते हैं कि इनका कहना है कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए।
4: मोनोसेठ जी एक और मेल करते हैं हमारे मुद्दे पर, बीते हुए कल यानी भूतकाल की गलतियों या यादों में उलझकर समय की बर्बादी है। आने वाले कल की चिंता में आज को खराब करना बेमानी है। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे आप बदल सकते हैं। मेहनत और अच्छे कर्म करके आप भविष्य संवार सकते हैं।
5: साथ ही साथ कृष्ण कुमार जी ने हमें सुप्रभात कहा है, और सुबह 7 बजे से संगीत थेरेपी के साथ शुरुआत हुई है, यानी ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। भूत कल से अनुभव के साथ भविष्य की योजना बनाते हुए वर्तमान में जीते हैं। FM सभी के लिए संगीत के द्वारा अपडेट कर देता है। कृष्ण कुमार, गोमती नगर, लखनऊ से।
4: सौरभ कुमार हमें पहली बार मेल कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और हमें मेल कर रहे हैं सीतापुर से।
5: साथ ही साथ सोनू परवाना ने हमें मेल किया है, ये लिखते हैं कि प्रेमजन जी ने लिखा है कि मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमें हमारी कमर तोड़ देता है।
4: अचल सेठ लिखते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है पुरानी बातों को याद करके दुखी होना और भविष्य की चिंता करना, दोनों कारणों से ही हम परेशान रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने वर्तमान को भी सही तरीके से नहीं जी पाते, इसलिए वर्तमान सबसे बढ़िया है, इसी में जिए और मस्त रहें।
5: जी, और साथ ही साथ प्रवीण जी ने हमें मेल किया है और लिखते हैं, माय माइंडसेट 40% पास्ट हीलिंग ओल्ड इमोशंस, 25% फ्यूचर चेजिंग ड्रीम्स एंड करियर, एंड 35% प्रेजेंट फाइंडिंग पीस एंड जॉय।
4: नागेश कुमार हमें मेल कर रहे हैं, सभी को प्रणाम। एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, जीवन देते हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। और गर्मी में और कम बारिश के समय ऐसे पौधे लगाना, उनकी सेवा करना प्रकृति के प्रति हमारा छोटा सा योगदान है।
5: साथ ही साथ मोहम्मद सैफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं, और इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमें मेल किया।
4: जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मेल किया, हमारे साथ शामिल हुए। और अब मैं स्विच आपसे अनुमति लेती हूँ आज से, और जल्द ही मिलेंगे किसी और दिन किसी और वक्त। फिलहाल विनय आप सभी के साथ रहेंगे।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क्स, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पहले हाथरस पहुंचेंगे, जहां सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। श्री योगी यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हाथरस दौरे के बाद मुख्यमंत्री आगरा पहुंचेंगे, जहां वो आयुक्त सभागार में आगरा मंडल के लोक निर्माण विभाग के कार्यों के संबंध में बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनपदीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा करेंगे। आगरा से लौटकर मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट हॉक आई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तैनात की है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के

0: अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में 4 मैच खेले हैं और 3 में जीत के साथ वह ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। श्री सुशील रॉबर्ट बनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी से सुमोना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।

0: पदचिन आकाशवाणी के आज ये कार्यक्रम लेकर हम पुनः हाजिर हैं श्रोताओं, और हमारे साथ हमारे जो को प्रेजेंटर हैं सीनियर अनाउंसर श्री राजेश्वरी जी। तो राजेश्वरी जी, आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं से फिर मिलने आए हैं।
1: निश्चित रूप से यह हमारा बड़ा सौभाग्य है, और सभी सुनने वालों को हम दोनों का बहुत बहुत नमस्कार। और हमारी कोशिश रही है कि आकाशवाणी चूंकि 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है, और ऐसे में अगर वो स्तंभ है जिन्होंने 90 वर्षों में इस छोटे से पौधे को इतना खूबसूरत वृक्ष की शक्ल अता की है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
0: बिल्कुल। और मैं सुगुना पांडे, श्रोताओं, आज आपके लिए ऐसे विशिष्ट अतिथि को स्टूडियो में बुलाकर लाई हूँ, जिनसे बात करके हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मनोरंजन भी आपका होगा। हमारे स्टूडियो में आज हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनके लिए जितने भी हम विशेषण इस्तेमाल करें शायद कम होगा, लेकिन हमारे पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी सम्मानीय श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी साहब हमारे साथ हैं, जो कि विशेषकर नाटक के पुरोधा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट और अनेक उपलब्धियों के मालिक हैं। तो हम श्री बैनर्जी साहब को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुमोना जी और राजेश्वरी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ एक बार फिर इस स्टूडियो में बैठकर अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करूं, कुछ अपने श्रोताओं के साथ जो अपनी जिंदगी में जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है इस माध्यम के बारे में उसको बांटूं, और हो सकता है कि हम लोगों की बातों में हमारे श्रोताओं को जो आकाशवाणी में आना चाहते हैं एक उद्घोषक के तौर पर, एक प्रेजेंटर के तौर पर, एक एफएम आरजे के तौर पर या नाटक कलाकार के तौर पर, तो शायद उनको एक जरा सा हम लोगों की बात से कुछ मार्गदर्शन मिले। अगर मौका मिला तो जरूर उदाहरण देकर भी अपनी बात को सामने रखूंगा।
0: बहन साहब, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके पास तो खजाना है अनुभवों का, उपलब्धियों का।

0: जिनसे हम कुछ बातें यहाँ चुनकर लाएंगे अपने श्रोताओं के लिए, ताकि वो जान सके कि आकाशवाणी दरअसल है क्या। क्योंकि हम जब आकाशवाणी के लिए लोगों का ऑडिशन होता है, लोगों को यहाँ पर उनको काम करने की ललक होती है, उनको जब हम बुलाते हैं उनके दिमाग में एक चित्र होना चाहिए कि क्या अपेक्षाएं होती हैं आकाशवाणी के लिए। राजेश्वरी जी,
1: जाहिर सी बात है इस वक्त सर आपको यहाँ देख करके डॉक्टर महेश्वर तिवारी जी नवगीतकार हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आई कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है और सोनी छत दीवारों को घर कर देता है। तो आप तशरीफ लाए हैं तो यकीनी तौर पर बहुत रौनक आई है।
0: बिल्कुल सही आपने बोला है। और भाई साहब, मैं अपना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में, जो आपने शुरुआत की किस तरह से आकाशवाणी के लिए, या उसके पहले आपका जो स्थान रहा है जहाँ से आपने शुरू किया इस यात्रा को, उसके बारे में कुछ बताएं।
2: बड़ी मनोरंजक बात है कि मैंने आकाशवाणी में अपना जीवन कैसे आरंभ किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने 1977 यहाँ कार्यक्रम अधिशासी के पद पर कार्य शुरू किया था और इसी लखनऊ केंद्र से मैंने अपना कैरियर शुरू किया।
0: क्या बात है।
2: और मुझे याद है मैं हुसैनगंज में रहता था और हुसैनगंज से यहाँ से मेरा ख्याल है 10 कदम पर है हुसैनगंज का चौराहा, वहां से मैं रिक्शा में बैठ के आठ आने में आया करता था तो मुझे आकाशवाणी में जाना। और रिक्शा वाले ने जिस दिन मुझसे 1 रुपया कहा, नहीं साहब आज 1 रुपया लगेगा, तो मैंने कहा मैं आज से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। आकाशवाणी में आने का भी एक बड़ा रोमांचक रहा। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री में था।
0: तो ये किस वर्ष की बात है?
2: 76 में मैंने पास आउट किया एनएसडी से और 77 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन कर लिया। तो 76 में जब मैंने पास आउट किया तो मैं कुछ महीने रेपेट्री कंपनी में रहा और वहाँ रेपेट्री कंपनी में आपको शायद मालूम हो, बड़े अच्छे जाने माने कलाकार अब तो नहीं है इस दुनिया में, राजेश विवेक करके थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बनर्जी ऐसा है यार, वो आकाशवाणी की कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जॉब निकली है तो तुम भर दो। मैंने कहा यार मैं थिएटर का आदमी, रेडियो में सरकारी नौकरी को ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैनेजर कहता मैं 2 फॉर्म ले आया हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए, तुम भर दो उसको फिर देखेंगे। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं भरेगा। और मैंने उसको फॉर्म को रोल करके वहां सामने टेबल पे रख दिया और हम लोग अपना थिएटर कर रहे, रिहर्सल कर रहे, कर करा के जब 9:30 बजे रात में घर चले गए, उसके बाद घर पहुंच के हमने अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्म है तो हम तो वहां छोड़ा है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। कब पागल हो गए, जाओ ज्वाइन करो रेडियो। अगले दिन हम वापस आए, अपने वहीं छोड़ा था फॉर्म, तो देखा फॉर्म नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कहाँ गया फॉर्म, कहाँ गया। तभी हमने देखा कि सफाई करने वाला झाड़ू दे रहा था, हमने देखा वो फॉर्म जो था डस्टबिन में पड़ा हुआ था। उसको बेचारे को क्या मालूम, उसने कहा रद्दी का कागज उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया उसने। वो डस्टबिन का फॉर्म निकाल के हमने भरा और आज हम आकाशवाणी में बैठे हूँ।
0: और लगभग अर्धशतक आपने आकाशवाणी के साथ गुजारा, सच में वाकई बहुत ही रोचक ये कहानी।
2: तो यानी कि हमने डस्टबिन से हम उठे हैं, मतलब
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप में वो जो एक कलाकार था वो उभर कर यहाँ आया। और आपने थिएटर की बात की, तो थिएटर की शुरुआत की तो आपको लगा कि आकाशवाणी में आपको थिएटर पे ध्यान देना है।
2: ऐसा हुआ कि लोगों ने उस वक्त कहा, एनएसडी में तो आप मालूम है जब 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और उसमें तो 3 साल में आपको सिर्फ आपके दिमाग में थिएटर के अलावा और कुछ नहीं जाता, आप बिल्कुल थिएटर में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हैं।
0: आपके परिवार से पूरा सहयोग मिला इसमें?
2: बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात। और उस जमाने में वैसे पढ़ाई में हमको एज यूजुअल तेज नहीं थे, लेकिन ग्रेजुएशन कर लिया था क्योंकि वो थिएटर का जो कीड़ा होता है ना वो फिर आपको कुछ करने नहीं देता। खैर, तो हमारा क्या था कि हमारा थिएटर 76-77 के जमाने में ना तो सीरियल्स हुआ करते थे इतने, दूरदर्शन था या रेडियो था, और फिल्मों में भी बड़े जैसे कहते हैं कि चॉकलेट वाले हीरो, यू नो देवानंद धर्मेंद्र, बड़े स्मार्ट। अब हमारी शक्ल क्या था, मतलब क्या बताएं। तो हम कभी भी थिएटर के अलावा फिल्म में जाने, आजकल एनएसडी जो है वो एक तरह से लॉन्चिंग पैड है फिल्म्स के लिए। हमारे साथ जो थे, हमारे साथ पंकज कपूर मेरे बैच में थे, के रैना थे और लोग थे, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस है तो मैंने सोचा कि क्यों ना या तो थिएटर किया जाए। और फिर ये अपॉर्चुनिटी आई जब रेडियो की, तो हमने कहा चलिए रेडियो ट्राई किया जाए। और

0: सही में रेडियो आके मुझे लगा कि मैंने सही में किया, क्योंकि मुझे एक ऐसा माध्यम मिला जिसमें चैलेंजर्स थे। इस माध्यम में इतना काम है करने को जो आपको ना फिल्म में मिलेगा ना आपको थिएटर में मिलेगा, क्योंकि ये माध्यम सिर्फ साउंड का माध्यम है। यहाँ आपका इमेजिनेशन जो है वो डबल चलता है, क्योंकि आप देख कुछ नहीं सकते, आपके कान है सिर्फ आपको सुनना, और आप किस तरह अपनी आवाज, अपने प्रेजेंटेशन, अपने फीलिंग से आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं।
1: बने साहब ये बताइए कि रंगमंच जो है वो दर्शकों के सामने और आकाशवाणी सुनने वालों के पीछे, इन दोनों माध्यमों में काम करने का अनुभव कैसा रहा?
0: देखिए ऐसा है कि चैलेंजिंग तो और सबसे डिफिकल्ट तो मुझे रेडियो लगता है। उसका कारण यह है, मैंने रेडियो नाटक भी प्रस्तुत तो किए ही, भाग भी लिया उसमें, और जहाँ मंच पर भी, और अभी तक कुछ महीने पहले तक मैं मंच पर से जुड़ा रहा हूँ। देखिए मंच पर आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व, आपके एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व, आपका पूरा मतलब कि इमोशन, फीलिंग, मूड, आप अगर कुछ ना भी कहें तो भी और दर्शकों तक पहुंच जाए। यहाँ पर सिर्फ आपके पास आपकी आवाज है।
2: क्या बात,
0: आपको अपनी आवाज से पहुंचना है।
1: क्या बात, वाह वाह,
2: क्या बात।
0: तो वो एक जो फीलिंग है, जो मूड है, जो एक अंदर की जो आपकी फीलिंग है, वो सिर्फ आपको ऑडियंस तक आवाज से पहुंचना है, कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को संप्रेषित करना है, सिर्फ आवाज से, फीलिंग, मूड, पर्सपेक्टिव, सब कुछ। मंच पर आप सब देख रहे हैं, आपके साथ हैं, आप खुद हैं वहां
2: जी,
0: मगर यहाँ ना आपके पास दृश्य है, ना आपके पास मेकअप है, ना आपके पास कॉस्ट्यूम है, ना आपके पास लाइटिंग है, आपके पास क्या है?
2: आवाज।
0: रेडियो जो माध्यम है, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी बात को संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, भले ही वो नाटक के माध्यम से हो, वार्ता के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, कमेंट्री के, न्यूज के माध्यम से हो। आप सब जानते हैं जैसे हमारा इसका ध्येय ये है, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, राइट। हमारे पास क्या है, रेडियो में हम सिर्फ तीन चीजों से काम करते हैं
2: जी।
0: क्या है वो तीन चीजें? स्पोकन वर्ड, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट, ध्वनि प्रभाव और साइलेंस। अभी मैंने साइलेंस लिया तो आप लोग सब मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या है, क्या बोलने जा रहा है, कौन सी चीज आने जा रही है, एक उत्सुकता बढ़ती है इस साइलेंस से। तो साइलेंस आप न कहते हुए भी आप बहुत कुछ कहे जाते
1: कहे जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब देखिए, आपने कभी सड़क पर जाइए तो आपको वो जो सड़क में मदारी होते हैं ना, वो आपको दिखेंगे, उनको तो नहीं मालूम कि क्या कम्युनिकेशन है, उनको तो नहीं मालूम कि एक सेंडर होता है, भेजने वाला होता है संदेश, एक रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला, एक आपका ऑब्जेक्टिव है आपका, उसको तो कुछ नहीं मालूम है, उसको तो बेचारे को अपना पेट देखना है
2: जी।
0: तो वो क्या करता है, अजगर करीना चाकरी पंछी करीना खाद, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, हाँ तो मेहरबान कदर राउन, तुक दान पीक दान, मेरे सामने आइए अपना खेल दिखाऊंगा। अब क्या है,
2: क्या बात?
0: ये ऐसे करते करते हजारों की भीड़ जमा कर लेता। आप और हम दो लोगों की भीड़ जमा करके दिखा दें, या हमारे इलाके में एक सब्जी बेचने वाला आता था, कुछ नहीं, वो क्या करता था, सब्जी आलू ले ले, भिंडी ले ले, टमाटर ले ले, कद्दू।
2: क्या बात।
0: एक दफा मैंने पकड़ी, यार ये बाकी तो ले लो, ये कद्दू क्या होता है? कहता साहब यही तो चीज है, कद्दू कोई लेता नहीं है, तो इसको मुझे जोर से कहना पड़ता कद्दू। तो आप विश्वास कीजिए, लोग सिर्फ उसकी ये, एक दिन कह रहा साहब एक कविता सुनने में कहा, लैला की उंगलियां है मजनू की पसलियां, आने की दो दो ले लो ये ककड़ियां। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट,
2: एग्जैक्टली
0: दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन रेडियो। जो यंग हमारे बच्चे आते हैं वो सोचते हैं बस हमें तो बोल देना है, हमें आकाशवाणी में राजेश्वरी जी ने स्क्रिप्ट दे दी है, इसको मुझे पढ़ लेना है। नहीं, पढ़ना ही नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को पहुंचाना है।
2: वही है जो कि बैंस साहब आप जैसे बता रहे हैं, और वाकई में हमारे सारे जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, वो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे होंगे राजेश्वरी जी, है कि नहीं? और ये जो आपकी कला है,

0: उसको आपने आकाशवाणी में लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है बहन साहब आपसे। तो बहन साहब, अगर आप अपने इन अनुभवों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ शेयर करें।
1: जी, जहाँ तक रेडियो नाटकों का प्रश्न है, हमारा जो पहले नाटक का जो स्टूडियो होता था, वो जो अब कॉन्फ्रेंस रूम है आकाशवाणी का, वो हमारा नाटक का स्टूडियो होता था। और उस नाटक के स्टूडियो में, मुझे मालूम नहीं अब तो वो बंद हो गया, एक तरफ विविध भारती का बूथ होता था और दूसरी तरफ हमारा रिकॉर्डिंग का सारा नाटकों का होता था, और इधर जो होता था मेन गेट होता था। अब हम लोगों की जब रिकॉर्डिंग चलती थी, उसी वक्त ट्रांसमिशन विविध भारती का चलता था। अब आप सोच लीजिए कि कितनी मुश्किल होती थी। कई दफा होता ये था कि बड़ा टेंशन चल रहा है,
0: अच्छा,
1: चोर घर में घुसा हुआ घुस रहा है, लड़की अकेली है, सारे लोग जो हैं उसको, मतलब लड़की घबराई हुई है, और इतने में ही दरवाजे पे खटखट होती है, सर ट्रांसमिशन करना है, जरा टेप दरवाजा के लिए। सारा मूड खत्म, नाटक खत्म, स्टॉप स्टॉप, रिकॉर्डिंग रुक गए, फिर खोला जाता था दरवाजा, वो अनाउंसर का, फिर अब एक्टर एक्टर होता है ना, अब जरूरी नहीं है तो उसका फिर मूड, अब वो मूड बनाने में फिर टाइम लगता था।
0: जी सर, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि रिहर्सल का कितना महत्व होता था।
1: हाँ, यस यस, देखिए हमारे टाइम पे एक घंटे का जो प्ले होता था, 60 मिनट्स का प्ले होता था, उसकी एक हफ्ते रिहर्सल चलती थी 2 बजे से लेकर, कब खत्म हो ये नहीं मालूम। आधे घंटे के प्ले के लगभग 4 या 5 दिन तो रिहर्सल चलती चलती थी। बाय द टाइम वी यूज्ड टू गो फॉर रिकॉर्डिंग, तब तक कलाकारों को ये मान लीजिए कि वो कंठस्थ हो जाते थे और एक्चुअली क्या होता है कि अगर यहाँ पर जैसे रेडियो में इस विधा को समझ, हाथ में स्क्रिप्ट रहती है, उसमें क्या होता है कि जब आप डायलॉग बोलते हैं तो क्योंकि स्क्रिप्ट हाथ में रहती है, आप पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने का चांस है। अगर आपको वही डायलॉग कंठस्थ हो जाए तो आप इजिली उसको पुट रहे, तो रिहर्सल हम लोग थ्रेड बेयर एक एक कैरेक्टर को, एक एक मूड को, एक एक फीलिंग को, अच्छे अच्छे कलाकार, यू वोंट बिलीव, यहाँ पर हमारे जैसे पी एन श्रीवास्तव, राधे बिहारी लाल, हल्लो भाई, या पी डी वर्मा, या बिमल बैनर्जी, ऐसे पर एक से एक गजब के कलाकार, प्रमोद बाला, वो खुद फील करते थे कि नहीं हमें और रिहर्सल,
0: यानी जज्ब हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक जब तक वो आपके खून में ना बस जाए वो कैरेक्टर, और खास तौर से ध्वनि के माध्यम के लिए जहाँ आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, आपके सिर्फ आवाज में रहो, फीलिंग कहाँ आप पॉज लेंगे, किस वर्ड को स्ट्रेस करेंगे। देखिए अब स्ट्रेस जो हम बात करते हैं, यही गलतियां करते हैं हम, जैसे एक संवाद है, कोई सामान को ले लीजिए, जैसे चलो उस गांव में चलते हैं, मान लीजिए ये डायलॉग, चलो उस गांव में चलते हैं, रुको नहीं, चलो उस गांव में चलते हैं, उस गांव और किसी गांव में, चलो उस गांव में चलते हैं। When you emphasize a particular word, जब आप एक शब्द पर आप जोर देते हैं, बलाघात करते हैं, तो उससे उस शब्द का अर्थ निकलता है। पूरे एक ही सेंटेंस को आप 20 तरह से कह सकते हैं,
0: बिल्कुल, you know? और मतलब बदल जाता है।
1: एग्जैक्टली, तो आपको सबसे पहले जो आपके हाथ में स्क्रिप्ट है या जो आपको दिया, पहले आपको उसका मतलब समझना है कि जो लेखक है या जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो क्या है
0: जी,
1: और तभी तो आप स्ट्रेस देंगे वर्ड्स पे, तभी आप पॉज लेंगे, तभी आप फीलिंग लाएंगे, तभी आप मूड लाएंगे
0: जी। रेडियो में दरअसल बात ये होती है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बीच में सन्नाटा हो गया अगर, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन किसी भी विधा में विशेषकर नाटक में पॉज का जो आप बार बार कह रहे हैं बहुत महत्व है, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ऐसा है, पॉज एक ऐसी चीज है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि घातक चीज है, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी पॉज को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा फिल्म का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसा है कि हमारे सब श्रोताओं ने शोले फिल्म देखी होगी, ठीक, शोले फिल्म में गब्बर सिंह जब, कितने आदमी थे, क्या है, कुछ नहीं है, आपने कभी अगर सुना होगा कितने आदमी थे, तो वो चल रहा है एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर, हाथ में उसके एक बेल्ट है, और बेल्ट

0: की जो बकल की आवाज है, क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग, वो जितना हॉरर क्रिएट करती है, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स का ऑर्केस्ट्रा होता तो शायद ही वो हॉरर क्रिएट कुछ नहीं। या एक और सीन है जिसमें गब्बर सिंह ऊपर चट्टान पे है, वो गोली मारता है और वो बच्चे की डेथ होती है और बच्चा झूल रहा है, बच्चे पे जो गिरता है, उसके बाद झूले की आवाज है सिर्फ, और उस झूले की आवाज अब देखिए ये जो उसने साइलेंस का इस्तेमाल किया, साइलेंस कैन क्रिएट सो मैनी फीलिंग्स। इट मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये 1000 चीजें दिखा सकता है, उत्सुकता जगाता है, सस्पेंस क्रिएट करता है, हॉरर क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है। साइलेंस में सच में अब सामने से अगर टक टक स्टेप्स आ रहे हैं तो सुनने वाले के सामने देखे कि कुछ कुछ होने वाला है, कोई अटैक होने वाला है, कुछ कुछ होगा जरूर। साइलेंस ऐसी जगहों पे बहुत कारगर है।
1: सर आज भी इस उम्र में आपके भीतर एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाकार मौजूद है और अब आकाशवाणी के इतने शीर्ष पदों पर आपने काम किया, तो ये दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन कितना
0: बहुत मुश्किल था, कठिन था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अब आप ये सोच लीजिए अगर अब मैं खुल के कह सकता हूँ कि मुझे फाइलों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, करता था क्योंकि पार्ट ऑफ द जॉब, मेरा आधा मन जो रहता था वो हमेशा
1: प्रोडक्शन
0: स्टूडियो में रहता था या प्रोडक्शन में रहता था, या क्योंकि मैं लकी ये रहा कि मैं दिल्ली में NABM का भी डायरेक्टर रहा, अपना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का RABM का भी निदेशक रहा। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि फाइलें थोड़ी साइड पे हो जाती थी, अपनी बात जो कुछ हमने सीखा वो लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत मजा आता था। जैसे अभी बैठ के मुझे जितना आनंद मुझे अब आ रहा है बात करने में आप लोगों से और अपने श्रोताओं से, मन करता है कि बस ऐसे बैठ के बात करता हूँ, मुझसे जितना भी मेरे अंदर जो कुछ है वो जितना भी वो निकाल सके। कल को मैं मर जाऊंगा, अब कितने साल रह गए, लगेगा 5 साल और जिंदा
2: नहीं, हम चाहेंगे कि आप शताब्दी वो बिल्कुल
0: लेकिन जितना भी रह गया है मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को दे सकूँ, खास तौर से इस माध्यम के लिए। इस माध्यम ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने जिंदगी में शायद मैं अगर उस जमाने में फिल्मों में चला जाता या और किसी में, मैं उतना 5 साल मैं दूरदर्शन में भी रहा हूँ। जो रेडियो ने मुझे दिया है, क्योंकि रेडियो मीडियम क्रिएटिव था, सोचता था यार ये साउंड इफेक्ट क्रिएट करना, मैंने एक नाटक किया था एनवायरनमेंट पे था, साइंस फिक्शन था, उसमें दिखाना है कि मुझे कि एक बाहर से उड़न तस्करी आई है और वो उड़न तस्करी आके अर्थ पर आती है और किस तरह वो डिस्ट्रक्शन करती है और क्या करता है। अब मैं ये सोच रहा था कि उड़न तस्करी का इफेक्ट कैसे लाया जाए, या ये जो बोल रहे हैं, ये जो एलियंस बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये इफेक्ट लाना था। अब सोच रहे हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी आती, क्या किया, मेरे बच्चे की एक खेलने वाली बंदूक थी जो पहले वो बैटरी से चलती थी, ये सारी आवाजें वो लेके आया मैं, तो उस जमाने में हम लोग सब
1: टेप का दौर था,
0: टेप पे होता था, तो स्पीड बढ़ा के स्पीड स्लो करके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब डायलॉग थे, अब एलियंस के डायलॉग बोलने थे, कैसे बोले जाएंगे एलियन के डायलॉग, अगर बहुत फास्ट करेंगे तो क्लैरिटी जाएगी, बहुत स्लो करेंगे तो क्लैरिटी जाएगी, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसा करें यार कुछ बीच करा। तो हमने क्या किया, टेप पे पहले डायलॉग रुकाए, अच्छा मैं वहां जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगे, ओ जो मैं वहां जाऊंगा तुम वहां आओगे, तो ये सारी चीजें जितना क्रिएशन, क्योंकि क्या है कि आप देख नहीं सकते, आपको सब कुछ अपने एफेक्ट्स मूड फीलिंग या अपने डायलॉग से आपको लोगों को दिखाना है क्या हो रहा
2: जी। आपके अंदर का जो कलाकार है भाई साहब, हमें पूरी तरह से अनुभव हो रहा है कि वाकई में वो अभी भी कितना सक्रिय है, आप मंच पर भी सक्रिय रहे हैं। कुछ अपने अनुभव, जैसे आपने नाम लिए पंकज कपूर के रैना साहब के, तो इनके साथ के कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहेंगे?
0: हाँ, इनके साथ तो बहुत अच्छा, मुझे याद है हम लोगों को जो NSD में थिएटर करते थे, हम तीन बहुत जो वेल नोन प्लेज हुए हैं NSD के, जैसे एक

0: अंधा युग धर्मवीर भारती जी का
1: जी।
0: सुल्तान रजिया और पुराने किले में किए थे, और हमने आधे अधूरे मोहन राकेश का किया था, स्टूडियो थिएटर था रविंद्र भवन का, उसमें किया था, और ये बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे अंधा युग और सुल्तान रजिया और तुगलक
1: जी।
0: ये तो उन्होंने अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया था, और मुझे याद है एक छोटा सा इंसिडेंट अगर
2: जी, जी
0: ऐसा था कि दिल्ली के पुराने किले में ओल्ड फोर्ट में हुआ था ये, और पुराने किले में एक बहुत बड़ा ह्यूज दरवाजा था, उसमें से तुगलक की एंट्री

0: छोटा सा इंसिडेंट अगर
1: जी जी
0: ऐसा था कि दिल्ली के पुराने किले में ओल्ड फोर्ट में हुआ था ये, और पुराने किले में एक बहुत बड़ा ह्यूज दरवाजा था, उसमें से तुगलक की एंट्री होती है। तुगलक आ रहे हैं, तुगलक कर रहे थे मनोहर सिंह
2: जी।
0: तुगलक की एंट्री होती है और जब वो आते हो पहली ओपनिंग स्पीच वो अपने रियाया से बात कर रहा है तुगलक। एक आध दफा रिहर्सल हुई, अलकाजी साहब भी थे, हम लोग भी थे। अच्छा, क्योंकि अलकाजी साहब की जो रिहर्सल होती थी हमारे लिए तो एक क्लास होती थी, मतलब कि हम सीखते थे। वो आए मनोहर सिंह, एक दो तीन तीसरी एंट्री पे उन्होंने कहा सर एक बात मुझे कहनी है। अलकाजी साहब ने कहा हाँ कहो। कि सर ये जो आर्च है ना, अब मैं हूँ 5-8-9 फीट का आदमी, हाइट है मेरी, और ये आर्च जो है ये कम से कम 12, ये तुगलक के पूरे जो उसकी पर्सनैलिटी उसको खा जा रही है। तो मैं जब एंट्री लेता हूँ मेरी एंट्री बिल्कुल फीकी पड़ रही है क्योंकि ये आर्च डोमिनेट कर जाती है। तो काजी साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा आप हटिए मैं। अलकाजी साहब की जो हाइट थी वो 5'2" या 5'3" थी।
1: अच्छा।
0: और हाँ नाटे थे बहुत ज्यादा। और अलकाजी साहब ने जब वो उस आर्च से आके वो खड़े हुए हैं अलकाजी साहब, और उन्होंने अपने पहले दो लाइन बोली है डायलॉग की, आप विश्वास नहीं करोगी वो आर्च ऐसा लगता था जैसे वो कोलैप्स करके गिर गई।
2: क्या बात।
0: तो उन्होंने ये कहा कि इट इज नॉट योर पर्सनैलिटी, इट इज नॉट यू एज अ पर्सन, इट इज योर कैरेक्टर, हाउ यू स्टैंड ऑन दिस, आप मंच पर किस तरह खड़े होते हैं, आपका पोस्चर क्या है, आपकी आंखों का जो जो रौब है, आपके चेहरे की जो जो एक, एक जिसे कहते हैं ना वो जो तमतमाहट है वो आपके पूरे बॉडी को, वो आर्च वाज भूल जाइए, व्हाट यू आर, आप तुगलक बादशाह, और जब आप आके खड़े होगे तो उस आर्च का क्या मजाल के वो आपको खा जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत छोटा पड़ रहा हूँ इस आर्च, तो फिर वो तो चाहे तुगलक हो और चाहे कोई भी हो, राजा हो बादशाह, वो छोटा अपने आप को फील करेगा। नो, योर बॉडी, योर फीलिंग, योर मूड, योर पोस्चर, आप किस तरह खड़े होते हैं वो काउंट करेगा।
2: कैरेक्टर का जो एक्चुअली वो जो
0: स्पिरिट चीज काम करेगी
2: बिल्कुल, और वही चीज लाने की जरूरत होती है कलाकार। आकाशवाणी में सर कैसे इस तरह को आप लोग करते थे, जैसे आपने बताया बहुत सारे।
0: देखिए आकाशवाणी में भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मैं यही अपने लखनऊ स्टेशन पर मैंने एक प्ले था मोती नंदी का, स्ट्राइकर
2: जी,
0: फुटबॉल प्लेयर के ऊपर था, और उस जमाने में अनुपम खेर यहाँ भारतेंदु नाट्य केंद्र में ही वॉज पढ़ा रहे थे, और क्योंकि हमसे एक साल जूनियर थे तो हमारे अच्छे दोस्त हैं वो, तो आए यहाँ पे, हमने बुलाया उनको, ही डिड द मेन रोल उसका। हाँ वो
2: सन की बात होगी लगभग,
0: ये 79 की जी। तो अनुपम को हम, ही डिड द मेन रोल। और अब सबसे बड़ी बात ये, वो कैरेक्टर था प्रसून बैनर्जी करके नाम है वो, और वो बंगाल का काफी फेमस फुटबॉल प्लेयर है वो
2: जी।
0: तो अब क्या होता है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, अब देखिए एक स्टूडियो में फुटबॉल खेलने का जो एक प्रस्पेक्टिव बनाना होता है, इट इज नॉट एन इजी जॉब। अब क्या किया जाए कि फुटबॉल खेलने का पूरा जो मूड है वो बने, तो हम लोगों ने क्या किया, लिटरली सारे जो एक्टर्स थे जिनको वो, हमने यहाँ स्टूडियो वन में फुटबॉल उन्होंने खेली।
2: अच्छा। हाँ क्या बिल्कुल बात?
0: उससे क्या हुआ कि प्रस्पेक्टिव बना, बॉल यहाँ से वहां गई, वहां से वहां गई, वहां से वहां, अगर हम सिर्फ एक जगह खड़े होंगे तो वो प्रस्पेक्टिव जो एक डेप्थ जो एक मूवमेंट होना है वो नहीं हो पाता। तो हम लोग सबने वहां पे बॉल फुटबॉल खेली और उससे जो इफेक्ट बना वो
2: काबिले तारीफ होगा,
0: और तो वो चीज लोगों को अच्छी लगी,
2: बिल्कुल अच्छी लगी होगी। और वाकई में जब आप इस तरह से बता रहे हैं हमें लगता है कि दृश्य सबके सामने आ जाता है, और यही तो आकाशवाणी का उद्देश्य है कि आप जो भी बोलें वो लोगों तक दिल तक पहुंचे और वो उस दृश्य को देख पाए। तो कमेंट्रीज का भी, जैसे आपने कहा कि आपने वहाँ लाइव खेला, कमेंट्रीज भी हमारे आकाशवाणी से होती है।
0: राइट। देखिए कमेंट्री आंखों देखा हाल भी अपने में एक एक बहुत बड़ी आर्ट है
2: जी।
0: देख आप रहे हैं लेकिन आपके थ्रू आपका लिसनर देख रहा है। वो रंग, अब 26 जनवरी का आंखों देखा हाल हो या आपका क्या कहते हैं 15 अगस्त का आंखों देखा हो
2: जी,
0: किसी फुटबॉल मैच का या किसी भी गेम का आंखों देखा हाल, क्रिकेट का आधा एक जमाने में, अब आजकल तो भैया सब टीवी पे देखते हैं, लेकिन एक जमाने में

0: या फुटबॉल की जो कमेंट्री रेडियो पे आती, जो लोग कान पे लगा के मार, क्यों जो जो कमेंटेटर था वो ऐप में है, एंड द बॉल इज कमिंग एंड इट गोज एंड इट कम्स एंड इट गोज, भले ही शॉट ग्राउंड पे उतनी जोर से लगे ना हो, लेकिन जो कमेंटेटर होता था वो इतनी जोर से उचलता था कि आपको लगता था कि वो छक्का ही लग गया। बाद में कहता ओ बट द बॉल वाज स्टॉप्ड एट द बाउंड्री एंड आई एम सॉरी देयर वाज ओनली, तो पता लगता था दो रन लिए गए। तो एक्साइटमेंट ये क्या, जब आपकी आंखों, तो आपको ये देखना है कि मेरी आंखों से हजारों लोग जो सुन रहे हैं कमेंट्री दी,
1: और पहले कमेंटेटर्स को सुनने के लिए जगह जगह पे भीड़ लगी होती थी,
0: भीड़ लगी होती
1: जी।
0: दूसरी बात, एक कमेंटेटर को सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ, इंदिरा जी की डेथ हो गई थी और उनके अर्थी की रनिंग कमेंट्री देनी थी
1: हमारी पूर्व प्रधानमंत्री,
0: और हाँ, और मेरी जो ड्यूटी लगी थी जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होना था शक्ति स्थल पर, वहां पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी एज अ ओबी इंचार्ज, और वहाँ कमेंट्री करने के लिए दो दिग्गज लोग थे, मेलविल डिमेलो इंग्लिश में और शिव सागर मिश्र जी हिंदी में कमेंट्री। तो एज यूजुअल अब हम लोगों को तैयारी करनी थी, तो मैं सुबह दफ्तर पहुंच गया, मुझसे कहा गया था कि ये दोनों 4 बजे आएंगे, तो आप इनको अकंपनी करिएगा वहाँ शक्ति स्थल तक
1: जी।
0: और वहाँ पे ये कमेंट्री के लिए सब हमारे इंजीनियर भाई सब उन्होंने तैयारी कर दी थी एज यूजुअल, उन्होंने परफेक्ट सारा किया हुआ था। तो मैं सुबह अपना कमरे में बैठा कोई 8:30-9 बजे के करीब, सडनली मेरे को SD साहब MS बत्रा जी थे, उन्होंने का फोन आया जल्दी आओ ये मेलबल डिमेलो और ये दोनों आ गए। मैंने कहा अरे यार इन्हें तो 4 बजे आना था, ये कैसे आ गए, जल्दी आओ, तो इनको अभी जाना है वहाँ स्थल पर स्पॉट। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अभी जाना, हमने अपना जो कुछ भी कागज थे समेटे और चल दिए वहां गए। यू वोंट बिलीव, दोनों भाई दिग्गज का
1: बिल्कुल,
0: एक एक चीज, मंच जिस पर उनकी अर्थी रखी जाएगी, क्या हाइट है, कौन से पंडित बोल रहे हैं, कहाँ VVIPs कहाँ बैठेंगे, कौन किस सीट पे बैठेगा, बैंड कौन सा होगा, कौन कौन से भजन बजाए जाएंगे, कौन बैंड को लीड कर रहा है, पंडित कौन होगा, एक एक चीज उन्होंने
1: फुल रिसर्च।
0: तब मुझ जैसे एक नए आदमी ने सीखा कि सही बात है कि आपको पहले यू हैव टू बी श्योर ऑन योर ग्राउंड, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, देन ओनली तब आप उस बात को अपने श्रोता तक पहुंचा पाएंगे। अगर आपको खुद ही आप नहीं श्योर है तो आप श्रोता को क्या बताएंगे,
1: कंटेंट को आपको पहले लेना
0: पहले है। यस, रिसर्च इस तरह का, ये कंटेंट कहीं बुक्स में तो मिलेगा नहीं आपको, ये तो लाइव होना है, वहीं पे होना है, आपको खुद नहीं मालूम क्या होगा।
1: बिल्कुल,
0: और विश्वास नहीं करेंगे जब कमेंट्री में उन्होंने की, रोंगटे खड़े हो गए, इतनी खूबसूरत दोनों ने कमेंट्री की। हम लोगों का जो बूथ था वो एक मंच के ऊपर था,
1: अच्छा।
0: और वहां से पूरा बिल्कुल वो
1: उनका दिख रहा था।
0: वो दिख रहा था, मतलब कि आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, कितनी खूबसूरत कमेंट्री की थी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो ये है कमेंट्री की खासियत।
1: बिल्कुल बहन साहब, आप इतना कुछ हमें बता रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, अब लगातार सीख रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत उत्सुकता हो रही है कि किस तरह से आपने इतने सारे प्रोडक्शंस किए होंगे, उसमें आपने बिल्कुल अपना जी जान दिया होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्शंस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। तो हम अपने श्रोताओं से आगे भी बात करेंगे राजश्री जी, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता चाहते हैं कि साथ ही साथ थोड़ा संगीत का भी लुत्फ उनको मिल सके, तो एक गाना हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए।

0: बैनर्जी साहब, आपने रंगमंच और रेडियो दोनों के लिए कई अहम किरदार निभाए हैं, तो आपको पसंदीदा कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कोई किरदार आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहते हैं उस रोल को?
1: मैं एक नाटक करना चाहता था, वो हो नहीं पाया, वो बाद में मैंने मंच पे जरूर किया। अभी
2: कुछ उसकी वानगी हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए, पर्टिकुलरली इस नाटक के लिए।
1: ये हानुष जो है वो बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वो एक कुफल साधु घड़ी बनाने वाला है, और होता यह है कि वो घड़ी बनाता है, राजा बहुत खुश होता है उसकी घड़ी देखकर, और बाद में क्या होता है, राजा को लगता है कि ये कहीं दूसरी घड़ी ना बना दे तो उसको अंधा कर देता है, उसकी आंखें निकलवा देता है। अब होता यह है कि घड़ी खराब हो जाती है, अब सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो घड़ी ठीक कर सकता है और वो अंधा है। तो वो राजा कहता है इसको बुलाओ, यही ठीक करेगा, और एक आदमी उसकी मदद के लिए दे देता है। ये सोचता है कि जिस राजा ने मुझे अंधा किया इस घड़ी के, मैं तो ये घड़ी सारी बुराइयों की जड़ है, मैं इस घड़ी को ही खत्म कर दूंगा। वो घड़ी तोड़ने के लिए जाता, और वहां जाके क्या होता है उसके साथ, एक छोटा सा अंश है हानुष का, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये तोड़ने गया है, और ये जहाँ घड़ी की मशीनरी है वहां पे बैठा हुआ है, और साथ ही में उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कात्या उसका नाम है, वो खड़ी।

0: कात्या, सच कहूं मैं यहां इस घड़ी को तोड़ने आया था। हथौड़ा उठा भी लिया था मैंने, लेकिन लेकिन जब कमानी पर हाथ रखा तो क्या बताऊं, लगा लगा जैसे मैं घड़ी का दिल छू रहा हूं। यहां एक आदमी आया था, मैं उसे नहीं जानता, शायद कोई लोहार था। अधिकारियों ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा था। उसने कहा कि घड़ी तुमने, ये घड़ी तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यारी होगी, तुम ही ने तो इसे बनाया है। कातिया, उसकी बात सुनकर मुझे खुद पर बड़ी शर्म आई। फिर ये घड़ी सिर्फ मेरी ही नहीं रही, सबकी है, और ये मैं हूं जो इसे तोड़ने चला था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मैं एक एक पुर्जे को साफ साफ देख पा रहा हूं। लगा ही नहीं कि मैं अंधा हूं। मैं तो अपनी ही बात ले बैठा, जानता पिटिया कैसी है। जेकब लौटा? अरे सच बताना, वो शहर से बाहर निकल गया है ना। कात्या, क्या मैं तुम्हें और एमिल को नहीं जानता? लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, वो घड़ी बनाना जानता है, और वो अब इससे बेहतर घड़ी बनाएगा। हाँ, और बेहतर घड़ी।
1: क्या बात, बहुत सुंदर, बड़ा खूबसूरत नाटक रहा, और उससे खूबसूरत आज भी
2: सुंदर, और हम इसमें बिल्कुल डूब गए, और यही शायद कला है आपकी। आपके समय में आकाशवाणी लखनऊ में जो लोग रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक लंबा समय आकाशवाणी लखनऊ में गुजरा है, तो और बड़े बड़े कलाकार,
0: देखिए कलाकार जैसे यहाँ पे हमारे टाइम पे रहे, आप तो पता नहीं लोग जानते भी हैं, जैसे संतराम, पीडी वर्मा, विश्वनाथ मिश्रा जी, बिमल बैनर्जी, विजय वास्तव, बी एन गौड़, हल्लो भाई, एच के अरोड़ा, स्वदेश बंधु, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, और बेनू कलसी, नीरजा गुप्ता, कुमकुमधर, ये अब कुमकुमधर जी के साथ तो एक मैंने नाटक किया, बहुत बढ़िया नाटक था, तट निरंजना करके था जी। वो भी मोती नंदी का उपन्यास था, गौतम बुद्ध के जीवन पर, और वो आकाशवाणी अवार्ड उसको मिला था, तो उड़िया वर्जन को, उसका हिंदी वर्जन राष्ट्र कार्यक्रम के नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेस के लिए मैंने प्रोड्यूस किया था। तो उसमें पहला दृश्य था जिसमें कुमकुम जी और हमारे नवनीत मिश्र, वो दोनों मुख्य कलाकार थे, और बहुत अच्छा दोनों ने रोल किया। और उसमें पहला सीन में तेज बारिश हो रही है, और तेज बारिश में ये लोग दोनों भीग रहे हैं, और ये इमोशनली अपना डायलॉग बोलते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बात बताएं। कहा, कहो। दो तीन मिनट का सीन था कि इसको एक कट में रिकॉर्ड कीजिएगा, ब्रेक मत कीजिएगा, और अगर अगर बाद में आपको ठीक ना लगे तो फिर आप बताइएगा, हम जैसा आप कहेंगे। मैं तो ठीक है, आप चाहते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो सीन था दोनों ने इतना खूबसूरत एक कट में दिया, बिल्कुल एक सांस में उन्होंने पूरा सीन, पूरे इमोशन फीलिंग, और आप फील कर सकते थे कि वो तेज बारिश में भीग रहे हैं, उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो निकल रहे हैं, और वो उसके बाद वो इतना अच्छा सीन हो गया था, जब ब्रॉडकास्ट हो गया, सब हो गया, उसके बाद जब मैं पहली दफा दिल्ली में ज्वाइन किया मैंने, तो सत्येंद्र शरद जो उस जमाने में चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा हुआ करते थे, दिग्गज, जो नाटक के दिग्गज माने जाते हैं रेडियो नाटक के, वो खास तौर से मेरे कमरे में आए वो जानने के लिए कि भाई वो कौन नया आदमी है, वो बैनर्जी कौन है जिसने वो दृश्य जिसने रिकॉर्ड किया इतना खूबसूरत। तो ये जो भाव, जो फीलिंग है ना, वो आपको एक किसी और ही दुनिया में ले जाती है।
2: बिल्कुल, और ये बहुत ही सुंदर अनुभव होता है जब एक ऐसे दिग्गज आपको खुद उसके लिए प्रशंसा दे और खुद आकर आपको सराहे। हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका पास टाइम क्या होता है, अगर आप अभी भी मंच पे सक्रिय रहे हैं कुछ समय पहले तक, तो उसके अलावा क्या पास टाइम आप?
0: मुझे रहता ये है कि थोड़ी बहुत मैं पेंटिंग भी करता हूँ, थोड़ी बहुत ड्राइंग।
2: अच्छा,
0: हाँ, थिएटर करने की तो बहुत इच्छा करती है, लेकिन अब थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए थिएटर भी कम हो गया है
2: जी।
0: हाँ, ड्रामे देखने का

0: शौक है, पढ़ने का शौक है, और जब रिटायर्ड आदमी हो जाता है तो घर के भी 20 काम आ जाते हैं उसमें भी व्यस्तता रहती है
1: जी।
0: तो और कभी कभी आप लोग जैसे लोग मुझे बुला लेते हैं, मैं थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूं, तो बस यही है, जिंदगी किसी तरह कट रही है, कट जाए।
2: हमारे सुनने वाले ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम तो आपको देख पा रहे हैं, उम्र किस पड़ाव में भी इतने स्मार्ट हैं आप, इतने आवाज बुलंद है, तो इतने एक्टिव हैं, तो क्या करते हो भोजन कैसे, आपकी दिनचर्या क्या है?
0: बहुत अच्छा, सही पूछो ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये छोटी छोटी खुशियां, देखिए मैं रिटायरमेंट हो चाहे जो भी आपकी अगर हॉबी है या कला है, उसमें आपको डूब के उसमें रहना है, वो आपको स्ट्रेंथ देती है। रिटायरमेंट के बाद भी, मतलब मैं 2012 में यहाँ से रिटायर हुआ और 13 साल हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये वक्त 12-13 साल किस तरह कटा, और ये सिर्फ यही थिएटर करना, रेडियो से जुड़ना, रेडियो में पार्टिसिपेट करना, रेडियो में भी कई प्रोग्राम्स में मैं आया गया, ये आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर आप घर में बैठ जाएंगे और अगर आप सिर्फ अपने आप को बंद कर लेंगे चार दीवारों में, तो फिर आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू डूइंग समथिंग, आपकी जो भी हॉबी है, अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए हॉबी, पढ़ना शुरू कीजिए, लोगों से मिलना शुरू कीजिए। हमारे जब पास टाइम क्या है, मैं और वाइफ अगर थोड़े दिन था उसके बाद हम लोग घूमने चले जाते हैं, उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है।
2: बनर्जी साहब, जब कभी लोग आपको याद करें, आपका नाम लें, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको एक अच्छे कलाकार के रूप में याद किया जाए, अच्छे प्रशासक के रूप में याद किया जाए, या अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए?
0: राजेश्वरी जी, आप बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो, भाई मैं तो मानूंगा इंसान तो जो मैं हूँ सो हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता, किसी के लिए इतना अच्छा नहीं भी हो सकता, तो इंसान तो जैसा हूँ, अब बदलना मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अगर दुनिया याद करे तो एक कलाकार के रूप में याद करे। और अभी भी मैं और सीखना चाहता हूँ, मुझे और मौके मिलेंगे मैं और सीखूंगा और जानना, और ये नहीं मैं आप लोगों से, यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे मैं और सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। हर ऑडिशन में जब आप ही लोगों के यहाँ बैठता हूँ तो मैं, अनाउंसर्स होते हैं जो ऑडिशन देने हैं, तो उनसे मैं सीखता हूँ। देखो ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां बच्चों को बतानी चाहिए तुम्हें कि ये गलती मत करो, या ये देखो ये बात इस एक नए आदमी में कितनी अच्छी है, क्योंकि ये पहली दफा माइक पे बोल रहा है इसलिए फ्रेश लग रहा। अगर यही आदमी 20वीं दफा बोलता तो ये इतना फ्रेश ना बोलता। तो बहुत कुछ मैं खुद सीखता हूँ, तो भाई मुझे तो भैया याद करो तो एक कलाकार के तरह याद करो, बस और कुछ।
1: और आज का कार्यक्रम तो आपके कलाकार रूप को ही उजागर कर रहा है, क्योंकि हमने आपके इतने सारे शेड्स देखे, आपके जो भी अनुभव, जो भी आपका अभिनय रहा है, उसको हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे महसूस किया, और रोमांचक जो आपकी यात्रा रही, इस पूरे यात्रा में श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया होगा मुझे ये उम्मीद है। और आपने इतना जो खजाना हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा किया, उसमें से कुछ भी अगर हम लोग ग्रहण कर लें और हमारे श्रोता ग्रहण कर लें, तो हम लोग कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे, अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। और जो एक डेडिकेशन होता है किसी के भी प्रति, किसी भी काम के प्रति, वो आपसे सीखने को मिलती है। तो राजेश्वरी जी,
2: हाँ अब जी तो नहीं चाहता कि बातचीत को विराम दिया जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि तालियों की गूंज दोस्तों समय के साथ थम जाती है, लेकिन एक सच्ची रंगकर्मी की साधना और उसके द्वारा जगाई हुई संवेदना सदैव जीवित रहती है।
1: और जैसा कि आपने कहा, हम भी आपके शतायु होने की कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, सफल रहें, और जो भी आप करना चाहते हैं आगे भी, आप जितना भी सीखना चाहते हैं जरूर सीखें, यही हमारी शुभकामना है और यही हमारी इच्छा है कि आप हम लोगों को भी सिखाते रहें और हम लोग भी आपसे सीखते रहें।
0: धन्यवाद। बस चलते चलते मैं जो बार बार, क्योंकि मेरे में एक शिक्षक की आत्मा घुसी हुई है, तो मैं अपने जो बच्चे आना चाहते हैं आकाशवाणी में, उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पहले माध्यम को जान लो, समझ लो, किस तरह इसमें प्रस्तुतिकरण होता है वो देखो, सुनो रेडियो को, इस माध्यम को सुनो। और चलते चलते एक वसीम बरेलवी का एक छोटा सा शेर है, वो मैं कहता हूँ कि बात कौन सी कब कैसे कही जाती है, बात कौन सी कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती।
1: क्या
0: है?
1: बात है,
0: मतलब अगर आपका कहने का तरीका सही है तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो भैया ये जान लीजिए

0: कि आपका कहने का तरीका सही होना चाहिए और ये अगर आप समझ गए तो आप इस माध्यम में सफलता प्राप्त कर लेंगे।
1: तो आज का सफर न चाहते हुए भी अब समाप्ति की ओर है और राजेश्वरी जी हमारे साथ रहे हैं श्री बैनर्जी साहब,
2: पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी कार्यक्रम के। सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे सुनने वालों के लिए, हालांकि अभी बहुत सारी बातें जाननी बाकी है, कुछ भी नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि समय की पाबंदी है मुलाकात को ही खत्म करना पड़ेगा। आपके तशरीफ आवरी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। श्री सुशील रॉबर्ट बनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी से सुमुना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
2: पुरानी जींस और गिटार,
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है, हैरते आशिके जगावत,
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा

0: लिए भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए
1: ये आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़ पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का News on Air app

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया ना किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर

से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह

देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने

ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक

और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम

दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का

अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूँ।

0: बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण

0: एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: सामिन, अभी मन की बात में वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डी टी रेडिश पर हमारी नशियात जारी हैं। और अब मन की बात का उर्दू तर्जुमा समाप्त कीजिए।
2: मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। 2026 का निसफ साल गुजरने को है। इन 6 माह के दौरान हमने मन की बात में अहले वतन की बेशुमार कामयाबियों और हुसूलियाबियों पर गुफ्तगू की है। जून के महीने में भी मुल्क ने ऐसी कई कामयाबियां हासिल की हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को फख्र महसूस होता है। ये कामयाबियां मुल्क की सलामती और खुद इन्हसारी से वाबस्ता हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में बहरे से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS आगरे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ मुकम्मल तौर पर स्वदेशी है। साथियों, जून ही के महीने में एविएशन सेक्टर में भी मुल्क ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। C-295 ये तैयारा मेड इन इंडिया है और C-295 तैयारे ने अपनी पहली परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। ऐसे 40 तैयारे भारत ही में तैयार किए जा रहे हैं। इसमें MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई ताकत मिल रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का आज़म मजीद मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने मकामी तौर पर तैयार करदा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया है। इसे DRDO की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने मिलकर तैयार किया है। यानी आज समंदर से लेकर आसमान तक हमारा भारत पहले से ज्यादा महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। साथियों, जून में एक और ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत की कोशिशों से जुड़ी और वो था बैनुल अक्वामी योम योग। इस बार दुनिया के 2500 से ज्यादा मकामात पर योग के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। हमारे मुल्क में भी करोड़ लोगों ने जगह जगह योग प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इसी महीने अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाले विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी खूब चर्चा रही। इसमें भारत ने मजमूई तौर पर 114 तमगे हासिल किए जिनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। इस चैंपियनशिप की तमगों की फहरिस्त में भारत पहले मुकाम पर रहा। मैं तमाम फातेह खिलाड़ियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, किसी भी मुल्क की असल रूह उसके लोग होते हैं और जब किसी मुल्क के लोग कोई अज़्म कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपने मकसद से हटा नहीं सकती। मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की यही ताकत भारत का सबसे बड़ा सरमाया है और इस अवामी ताकत का हम बार बार तजर्बा कर रहे हैं। साथियों, मगरबी एशिया में पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल को देखते हुए मैंने अहले वतन से चंद गुजारिशात की थी। मैंने कहा था कि जहां तक मुमकिन हो कुछ अरसे के लिए गोल्ड यानी सोना खरीदने से गुरेज करें। मैंने लोगों से कहा था कि बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने से भी परहेज करें। मैंने कार पूलिंग को फरोग देने की अपील की थी और किसानों से दरख्वास्त की थी कि केमिकल से पाक खेती अपनाएं, अपनी जमीन को महफूज रखें और कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। साथियों, मैं मुल्क के हर शहरी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी अपील को न सिर्फ कबूल किया बल्कि हर मुमकिन तआवुन भी किया। कई खानदानों ने मुझे पैगाम भेजकर अपने तजर्बात भी शेयर किए हैं। बहुत से खानदानों ने तय किया है कि इस बार घर की शादी में नया सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकिल करके नए जेवरात बनवा लेंगे। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि उन्होंने इस बार अपनी बैरून मुल्क सियाहत मुलतवी कर दी है। साथियों, कार पूलिंग के बारे में भी लोगों ने अपने दिलचस्प तजर्बात बयान किए हैं। जो लोग रोजाना एक ही समत में अपनी अपनी गाड़ियों से जाते थे अब वो एक साथ सफर करने लगे हैं। लोग हत्तुल इम्कान बस और मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून में भारत में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी के अपने मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐसे 40 विमान भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे लघु एवं मध्यम उद्यम MSME और एरोस्पेस क्षेत्रों को नई गति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी बात की, जिसमें पूरे विश्व ने भारत के प्रयासों में अपना सहयोग दिया। इस बार विश्व भर में 2500 से अधिक स्थानों पर विभिन्न योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि भारत में कई स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में करोड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस, सुरक्षा मानकों की जाँच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जांच इत्यादि।

की जाएगी। जांच में बस बॉडी की संरचना, बस की छत की निर्धारित भार मानक के अनुसार मजबूती, सीट एवं सीट एंकरेज टेस्ट, बॉडी चेसिस माउंटिंग टेस्ट, आपातकालीन गेट, फायर उपकरण पर विशेष फोकस रहेगा। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। हमलों में ईरान की निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क, वायु रक्षा ठिकानों और ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर फिर से संकट गहरा गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम पहली बार इतिहास रचते हुए प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज सुबह पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, आशिके जगावत।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
6: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
7: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौभाग्य है और जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार भी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के FM रेनबो चैनल पर आपका अपना हेल्थ शो, हेल्थ एंड फिटनेस। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि those who think they have no time for healthy living will sooner or later have to find time for illness। यानी कि अगर आपके पास आज अपने स्वास्थ्य की देखरेख करने का टाइम नहीं है तो कल को बीमारी

0: आपसे उससे ज्यादा वक्त ले सकती है। जरा सोचिए, सुबह की चाय से दिन शुरू होता है, लेकिन नाश्ता वो तो पता नहीं कहाँ छूट जाता है। काम के बीच आप घंटों अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, थकान होती है तो मोबाइल स्क्रीन का सहारा लेते हैं, और रात कब 12 से 1 फिर 2 में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और यही छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर के उस अदृश्य इंजन को प्रभावित करने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय। फिर शुरू होती हैं समस्याएं जैसे वजन बढ़ना, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर, नींद की कमी, लगातार थकान, और कभी कभी उम्र से पहले ही बीमारियों का दस्तक देना। तो क्या है वजह? क्या बदलती जीवन शैली ही इन समस्याओं की जड़ है? कैसे बच सकते हैं हम इन प्रॉब्लम से? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियोज में खास तौर पर इनवाइट किया है डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि है कंसल्टेंट फिजिशियन चरक हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो के इस मंच पर आपका दिल से स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये तो आप जानते हैं कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, नींद, तनाव, या फिर कोई भी सवाल है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स वही पुराने 0522-223-8852 एंड 0522-223-8845, और ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन एयर ऐप और डीटीएच पर भी। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही हमारी फोन लाइंस ब्लिंक करने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं श्रोताओं का कॉल लूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है क्या, जिसे हम हिंदी में चयापचय कहते हैं, ये है क्या और ये किस तरह से रिलेटेड है हमारी हेल्थ से?
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जो कि आज की जनसंख्या को देखते हुए और होने वाली बीमारियों का जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है यंग पॉपुलेशन में, तो उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपका सवाल है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जैसा जो भी पदार्थ हम खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसका अंत्योदय एक ही मकसद होता है कि आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाते रखना, उसके लिए ऊर्जा का सृजन करना। तो जो भी हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी हम खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, अंततः उसका जाकर के ऊर्जा में सृजन करके शरीर फिर उसको अपने विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल में ले सकता है। जैसे कि जो भी दिनचर्या में हम एक्टिविटी करते हैं, चलना, उठना, बैठना, सोचना, और जब हम सो भी रहे होते हैं उस वक्त भी हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे दिलों का धड़कना, किडनी, लीवर, इन सब का काम करना। दूसरा चीज़ आपने कहा कि इस मेटाबॉलिज्म का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, तो सीधा सीधा है कि यदि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आने वाले वक्त में जो होने वाली बीमारियों के खतरे से आप बचे रहेंगे, आप उनको देर से आएंगे। यदि आपका मेटाबॉलिज्म खराब रहेगा तो आप उन बीमारियों को बहुत जल्दी ही अपने शरीर के प्रति बुला लेंगे कि हाँ, उनका खतरा बढ़ जाएगा।
0: मतलब अगर हम सीधे आसान शब्दों में कहें तो आज डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे हैं ना सिर्फ बीमारियों की, बल्कि उन बीमारियों की जिसे हम जड़ कह सकते हैं, रूट कॉज कह सकते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म का ठीक ना होना, उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल से, जो कि हैं कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे शहर के जाने माने। और डॉक्टर साहब, हमारे जो कॉलर हैं, अब उन्हें हम और इंतज़ार नहीं कराएंगे, चलिए उनसे सीधे बात करते हैं। हेलो, हेलो, हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो जी, कुछ नेटवर्क का इशू है शायद हमारे इन श्रोता के साथ में। तो दोस्तों, आप सबसे ये कहना चाहोगे कि अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल से, तो फ़ोन मिलाते टाइम ये भी ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, ना ही तो आप रेडियो के बहुत करीब हो, ना ही तो आपके आसपास टीवी चल रहा हो, और ना ही आप स्पीकर पर बात करें। फ़ोन नंबर्स हमारे वही पुराने आपको रटे होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ 223-8852 एंड 223-8845, और क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर्स हैं तो

0: अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो लखनऊ का कोड 0522 ये तो आपको ऐड करना ही होगा. सो लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है. हेलो.
1: हेलो नमस्कार मैडम.
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: संजय बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं.
0: जी संजय जी, अपना सवाल बताएं.
1: डॉक्टर साहब से हमको जो है एक दो क्वेश्चन पूछने हैं.
0: जी
1: जैसे डॉक्टर साहब ने अभी ड्यूटी के बारे में बात करी और शुगर के बारे में.
0: जी
1: तो मैडम हमको ये बताइए, जैसे बहुत लोग बीपी अपना चेक करते हैं तो उनके पास किस तरह का मेजरमेंट होना चाहिए और कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए कि जब बीपी को चेक किया जाए, जैसे सुबह चेक किया जाए या रात में चेक किया जाए, और रीडिंग नापने का सबसे सही तरीका क्या है और कितना स्टैंडर्ड बीपी सही होता है.
0: बीपी कब चेक किया जाए, कितना बीपी होना चाहिए और किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करना ठीक होता है ना संजय जी?
1: जी मैडम. और शुगर के बारे में भी दूसरा क्वेश्चन है.
0: जी
1: शुगर के बारे में ये क्वेश्चन है कि कितने शुगर तक आदमी सही रहती है फास्टिंग और उसके बाद जो खाने के बाद जो होती है आफ्टर मील.
0: जी संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए. डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब बिल्कुल देंगे.
2: जैसा कि आपका पहला सवाल था कि बीपी हम कब नापें, किस मशीन में नापें, किस मुद्रा में नापें, कब नापना चाहिए, तो यदि आपको बीपी नापना है और आप अपने घर पर नहीं नाप सकते हैं, आप क्लिनिक या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहां जाकर के जाने के बाद आप कम से कम 10-15 मिनट आधा घंटा इंतज़ार करिए, वेट करिए, ताकि उस के समय में आपका जो हार्ट रेट है, जो बॉडी के जो भी रिस्पॉन्सेज है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि आप जाते ही साथ डॉक्टर से बीपी नपवाएंगे तो बीपी बढ़ा हुआ आएगा. तो थोड़ी देर वहाँ वेट करिए 10 से 15, और हो सके तो कम से कम आधा घंटा वेट करिए. दूसरी चीज़, बीपी नपवाने के लिए आप नॉर्मल सिटिंग पोजिशन में बैठ सकते हैं आराम से, और अपने उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ, मतलब जिससे आप काम नहीं कर रहे हैं, जो कम इस्तेमाल में आता है उस हाथ में आप बीपी नपवाइए. आमतौर पर देखा गया जो उपयुक्त तरीका है वो मरकरी मीटर से नापना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर चूंकि जो भी गाइडलाइंस अब आ रही हैं, अब धीरे धीरे वो मरकरी के जो भी बीपी नापने के मशीन थे उनके उपकरणों को थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है, तो आप डिजिटली आप ज़्यादातर अब देखेंगे हॉस्पिटलों में भी, संस्थानों में भी अब डिजिटल मीटर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे भी नाप सकते हैं. और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि कभी भी सिंगल रीडिंग को आप अपना बढ़ा हुआ बीपी नहीं मानेंगे, आपको लगातार बीपी नपवाना होगा. रही बात समय की, तो सुबह का समय सबसे उचित होता है क्योंकि उस समय हमारा माइंड सबसे रिलैक्स पोजीशन में होता है. शाम तक होते होते कई सारे स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या में घट चुकी होती हैं, जिससे कि हमारा ना बीमारी होते हुए भी हमारा बीपी बढ़ा हुआ आएगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे. दूसरा आपका सवाल था कि डायबिटीज़ में हम लोगों को शुगर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, किसको नॉर्मलाइज किया जाएगा. तो आमतौर पर फास्टिंग शुगर यदि आपकी 100 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, बट ये सिंगल रीडिंग नहीं है. उसके अलावा जो 3 महीने का हमारा एवरेज होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, यदि वो आपका नॉर्मल लिमिट के अंदर है, लेस देन 5.5 है, तो भी आपको डायबिटीज़ नहीं है. और रेंडमली मान लो आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ रेंडम जांचना चाहते हैं, तो वो आपका कम से कम 200 के नीचे होना चाहिए. यदि इससे बढ़ा है तो आपको डायबिटीज़ का खतरा है. इसके लिए आपको रेगुलर आपकी शुगर मॉनिटरिंग करनी होगी, उससे पता लगेगा. और बीपी के लिए जो आपने नॉर्मल रेंज पूछी है तो वो एज टू एज वेरी करती है. यदि आप यंग हैं तो आपका यदि 130 के नीचे ऊपर वाला बीपी है और 90 के नीचे वाला बीपी है तो उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाएगा.
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी. बहुत सारे ईमेल भी हमारे सामने हैं जो कि जानना चाहते हैं मेटाबॉलिज्म और वजन का क्या रिश्ता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे. हमारे कॉलर्स भी फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी बात करने से पहले हम एक बहुत छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कमर्शियल ब्रेक लेंगे.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
0: बारह बजकर 16 मिनट और ठीक 7 सेकंड्स हो रहे हैं. आप है ज्योति के साथ आपके अपने सबसे फेवरेट और सबसे ऑथेंटिक वीकली हेल्थ शो में जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस. और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम खास तौर पर इनवाइट करते हैं एक एक्सपर्ट को जो कि आपके सवालों आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए खुद हमारे

0: स्टूडियो में उपलब्ध होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमने इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि हैं जाने माने फिजिशियन। और आज ये बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म और उससे जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। हमारी स्क्रीन्स भरी हुई हैं ईमेल से और फ़ोन लाइंस भी लगातार ब्लिंक कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, और इंतज़ार नहीं कराते हमारे लिसनर्स को और फ़ोन लाइन पर बात करते हैं, जानते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं नागेश कुमार बोल रहा हूँ, जिला सीतापुर से।
0: जी नागेश जी, अपना सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पेट में दर्द होने लगती है नाभि के सामने कभी कभार।
0: वजन कितना है आपका और उम्र कितनी है?
1: मैम उम्र है 19 वर्ष और वजन है हमारा 49 केजी।
0: 49 केजी, और हाइट कितनी होगी आपकी?
1: 5.7 इंच।
0: ओके, तो डॉक्टर साहब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि आपके पेट में नाभि के पास में दर्द हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए अल्ट्रासाउंड पहले कराएं और ये देखना होगा किसी डॉक्टर से मिल करके कि दर्द किस समय होता है, खाली पेट होता है, खाना खाने के बाद होता है, और इस दर्द की क्या तीव्रता है, क्या असहनीय दर्द होता है या हल्का हल्का दर्द पूरे समय रहता है। पर जैसा कि आपने अपनी उम्र और वज़न बताई है, आपकी हाइट को देखते हुए आपका वज़न कम लग रहा है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि किसी भी नज़दीकी चिकित्सक से मिलकर अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, जांच कराएं पेट की और लिवर की कि आपका वज़न आखिर आपकी हाइट के हिसाब से क्यों नहीं है।
0: सर, जब वज़न की बात हुई ही है तो हम फिर सौम्या का ईमेल ले लेते हैं। सौम्या जानना चाहती कि मेटाबॉलिज्म का और वज़न का क्या कनेक्शन है, क्या वज़न ज़्यादा होना मेटाबॉलिज्म सही ना होने का संकेत है, और क्या कभी मेटाबॉलिज्म की ही वजह से लोग अंडरवेट रहते हैं, क्या किया जा सकता है इस विषय में?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है सौम्या जी का। जैसा कि उन्होंने पूछा है कि मेटाबॉलिज्म का हमारे वज़न से क्या संबंध है, ये बिल्कुल सही है कि मेटाबॉलिज्म यदि आपका ख़राब रहेगा तो आपका वज़न बढ़ना या वज़न बढ़ने की समस्या से, बीमारी से आप जल्दी ग्रसित हो जाएंगी। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि यदि आपका वज़न कम है, आप पतले दुबले हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म यदि आपका अच्छा है तो आपका वज़न आपको दो तरीके से देखना होगा कि जो वज़न है वो आपका विसरल फैट जिसको कहते हैं, जो अंदरूनी फैट होता है, और एक सबक्यूटेनस फैट जो कि बाहरी त्वचा के ऊपर जो हमारा फैट जमा होता है। तो यदि आपका BMI कंट्रोल में है, बाकी पैरामीटर ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक है और आप अपने आप को फिट कह सकते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ पतले दुबले लोग होते हैं लेकिन फिर भी उनमें वजन से ना होने वाली बीमारियाँ जैसे थायराइड है, BP है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, उनमें भी बड़ा आता है। तो हाँ, मेटाबॉलिज्म आप ठीक करके अपने वज़न को कंट्रोल करिए, जिसकी वजह से आपको जो होने वाली बीमारियां मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई जैसे कि BP है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, और आने वाले वक्त में हार्ट डिजीज से आप बच सकते हैं।
0: तो मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? डॉक्टर साहब ने हमें बताया फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियाँ, इन सारी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने मेटाबॉलिज्म को अपने कंट्रोल कर लिया। क्या करें इसके बारे में, इस विषय में भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर हैं, तो चलिए उनका सवाल जानते हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैम, मेरा नाम जितिन सिंह है और मैं आंखों से ब्लाइंड हूं, सीतापुर हर गांव से बात कर रहा हूं।
0: ओके
3: जी मैम, मेरी तो एज ऐसी है और मैम हम थोड़ा सा अपना पतले हैं, यानी कि कुछ मोटा होना चाहते हैं।
0: वजन की प्रॉब्लम, कुछ वैसे ही बात जैसी कि सौम्या ने कही थी, वजन कम है तो क्या करें डॉक्टर साहब? ये
3: हमें पाउडर भी चाहिए मैम इसके लिए।
0: हाँ जी
3: मैम, इसके लिए हम पाउडर भेज के रहे हैं, क्या मैम नाम ले सकते हैं?
0: नहीं, ये अभी डेडिकेशन वाला तो प्रोग्राम नहीं है। ठीक है,
3: अच्छा
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। सब
3: पाउडर का नाम लेना चाहते हैं मैम?
0: पाउडर का नाम लेना चाहते हैं? नहीं, आप पाउडर का नाम नहीं लीजिए, उस विषय में मैं डॉक्टर साहब से ऐसे ही बात कर लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, इनके सवाल से एक चीज़ और दिमाग में आई है, अक्सर वज़न बढ़ाने वाले पाउडर होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चलने लग गई है, कीटो डाइट, क्रैश डाइट, बहुत सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल फैशन में आ गई हैं, इनका कितना असर होता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर और क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है?

0: बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, बट चूंकि इनका सवाल दूसरा था कि हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं उसके बाद भी, तो मेरा इनकी सलाह यही रहेगी कि वो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके जितने भी अपने ज़रूरी टेस्ट हैं बॉडी के वो कराएं और अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि ये जाना जा सके कि आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा मेटाबॉलिक में कोई ऐसा फेरबदल तो नहीं जिसकी वजह से आपका जो खाना आपके शरीर को लग नहीं रहा है, खा तो आप रहे हैं लग नहीं रहा है, तो जाँचना होगा कि शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है। दूसरा आपका सवाल था कि जो आजकल चलन में है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट या फिर क्रैश डाइट, तो इसमें से यदि ओवरऑल देखा जाए तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो सबसे सुटेबल डाइट टाइप की आपकी डाइट दिनचर्या में मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करने को माना जा सके, जिसमें आप लगभग 16 घंटे के लिए फास्टिंग रखते हैं और 8 से 6 घंटे का आप खाने का विंडो पीरियड रखते हैं, बट इसमें आप कैलोरी डिसाइड नहीं करते हैं, बस खाली आपको जो खाना है आप वो खा सकते हैं, बट ये उन मरीजों में नहीं एडवाइजेबल है जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं, जिनको इंसुलिन चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है। दूसरा आपका सवाल था कीटो डाइट। कीटो डाइट में बेसिकली हम लोग हाई अमाउंट ऑफ फैट लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कार्ब बहुत कम होते हैं, बट कीटो डाइट में बेसिकली हमारी बॉडी को फोर्स किया जाता है कि वो फैट को इस्तेमाल करे एज ए एनर्जी सोर्स, बट फैट्स के साथ ड्रॉबैक ये है कि उसमें साइड प्रोडक्ट जो है कीटोन्स होते हैं, तो यदि कोई मरीज को पहले से ही फैटी लिवर ऑलरेडी है और उसको किडनी की बीमारी है और उसमें यदि वो कीटो डाइट लेते हैं तो उनके लिए बेहद ही हानिकारक और खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरा था आपका क्रैश डाइट। क्रैश डाइट में बेसिकली हम लोग कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ज़िंदा रखने के लिए हम उससे भी बहुत नीचे चले जाते हैं, 500-600 कैलोरी, बट इसमें आपका वज़न तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आप वज़न घटेगा आपका, तो आप ये मत सोचिए कि आप दुबले पतले हो रहे हैं, बेसिकली आपका प्रोटीन की वजह से जो आपके मसल्स हैं वो लॉस हो रहे हैं और आपकी शरीर से पानी की कमी हो रही है, तो आप पतले तो बहुत जल्दी हो जाएंगे लेकिन जैसे ही आप दोबारा खाना चालू करेंगे बहुत तेज़ी से मोटे होंगे, तो ये सबसे अनप्रैक्टिस में वाली डाइट है, क्रैश डाइट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीनों में से आप यदि जाना भी चाहते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेस्ट चॉइस।
1: और अच्छा ये रहे कि किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही इनको फॉलो किया जाए। डॉक्टर साहब, जो आजकल बहुत तरह के पाउडर्स आ रहे हैं, बहुत तरह की ड्रिंक्स आ रही है, हर्बल कह के भी बेची जाती हैं, कि इनको आप सेवन करें तो वज़न कम हो जाएगा या इनका सेवन करें तो वज़न बढ़ जाएगा, इनके विषय में आपका क्या कहना है?
0: क्योंकि मेडिकल साइंस में इस तरीके के कोई भी प्रोटीन पाउडर या किसी भी इस तरीके के हर्बल डाइट या सिरप्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। आप अपनी डेली दिनचर्या में रेगुलर एक्सरसाइज करके, अपनी पर्याप्त मात्रा में नींद ले सके, प्रॉपर हेल्दी डाइट ले करके, स्ट्रेस को मैनेज करके आप वज़न बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं बजाय इन प्रोटीन पाउडर इन हर्बल लाइफ को इस्तेमाल करके।
1: तो क्या करें जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे, और कैसे पता करें कि मेटाबॉलिज्म आपका ठीक काम कर रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से फॉर श्योर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम एक कॉलर को ऑनलाइन लेंगे।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: हम ना सिर्फ आपके दिल की धड़कन होने को क्लेम करते हैं बल्कि पूरी कोशिश भी करते हैं कि आपके दिल की धड़कन स्वस्थ रहे। सिर्फ इसीलिए तो लेकर आते हैं हम वो सारे प्रोग्राम्स जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने में मदद कर सकती है। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में इस वक्त आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि है हमारा वीकली हेल्थ मैगजीन। और आज हमने खास तौर पर बुलाया है जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को हमारे स्टूडियोज में, जो कि लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई खास स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं 0522-223-8852 एंड 0522-223-8845, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। और ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwanilakhnow@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आप सुन रहे हैं FM रेनबो, जिस पर इस वक्त हमारे साथ कोई फ़ोन लाइन

0: अरे हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है
1: हेलो, आ
0: जी।
1: रही।
0: बेटर बेटर। अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम सुशील है। डॉक्टर
0: सुशील जी, अपना सवाल पूछें प्लीज।
1: साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब हाथ पैरों में जलन होती है और पैर मतलब पंजे दर्द करते हैं।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
1: मेरी 28 से 30।
0: कोई और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं है? कोई और दवा तो नहीं लेते आप रेगुलर बेसिस में?
1: नहीं, दवा कुछ नहीं लेते हैं।
0: दवा नहीं लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, इनका सवाल यही है कि हाथ पैरों में दर्द रहना, और उसकी वजह से सबको लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म तो ठीक काम कर रहा है क्या, ये भी उसी वजह से तो नहीं है?
2: नहीं, इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया है। और इनका जो था मुख्यतः सवाल कि पैरों में जलन की महसूस फील हो रहा, और तो बेसिकली यदि मेटाबॉलिज्म का तो खैर नहीं मानेंगे, इसमें आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। क्योंकि आपने एज 26 बताई है, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना डायबिटीज़ के ज़रूर जांच करा लें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण

0: मेटाबॉलिज्म तो ठीक काम कर रहा है क्या, ये भी उसी वजह से तो नहीं है?
1: नहीं, इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया है, और इनका जो था मुख्यतः सवाल कि पैरों में जलन की मैं फील हो रहा, और तो बेसिकली यदि मेटाबॉलिज्म का तो खैर नहीं मानेंगे, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। क्योंकि आपने एज 26 बताई है, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना डायबिटीज़ के ज़रूर जाँच करा लें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण पैरों में जलन, हाथ पैरों में सुन्नपन आना हो सकता है प्राइमरी लक्षण। तो आप शुगर की जांच कराइए, और फिर भी आपको यदि शुगर नॉर्मल आती है, फिर भी आपके पैरों में झंझनाहट सुन्नपन रहता है, तो आप उसके लिए अपने बाकी टेस्ट में, जैसे कि B12 की कमी की वजह से ये लक्षण बहुत ज़्यादा मरीजों में देखे जाते हैं, तो आप अपने खाने में कोशिश करिए कि B12 वाले पदार्थ को, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो आप अंडा है, फिश है, चिकन है, एग है, ये ले सकते हैं। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर वगैरह, टोफू वगैरह आप इस्तेमाल करके B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद भी ना हो तो किसी चिकित्सक से संपर्क करके B12 सप्लीमेंट आप ले सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, श्रेया का सवाल है, ईमेल आया है हमारे पास लखीमपुर से, वो ये जानना चाहती हैं कि पता कैसे चले कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: नहीं, ये उनका बहुत अच्छा सवाल है। तो मेटाबॉलिज्म को चेक करने का जो बेसिक पैरामीटर है, आप अपना वज़न चेक करिए, वज़न के साथ आप BMI कैलकुलेट करिए। ये दोनों ठीक हैं, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो उसके बाद अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आप अपना फैटी लीवर देखिएगा, बाकी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, इन सब के टेस्ट करा लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं।
0: और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके विषय में आपको पता ही है, अगर आपको इनमें से कोई समस्या नहीं तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैम, अमित कुमार बात कर रहे हैं सीतापुर से।
0: जी अमित जी, अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से।
2: जी, हमारी वाइफ को जो है BP लो की समस्या हो जाती है, वो प्रेगनेंट है, तो इस संबंध में यहाँ दवा चल रही है, उसके बावजूद भी BP लो हो जाता है। मैम,
0: उम्र कितनी होगी उनकी?
2: 20 वर्ष है।
0: और प्रेगनेंसी उनकी कितने टाइम की है?
2: ये सातवां महीना चला है, फर्स्ट बच्चा है
0: जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ना मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ होने का एक संकेत हो सकता है, अब ये ब्लड प्रेशर का लो होना, इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, और जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, और 7 महीने की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आसपास किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में होंगे, जहाँ ये रेगुलर BP चेक करा रहे होंगे। दूसरा सवाल इनका, ये चिंता है कि BP लो है, तो BP लो में यदि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का, आमतौर पर हम देखते हैं यदि इन्फेक्शन वगैरह हो तभी BP लो उस पेशेंट में ज़्यादातर देखा जाता है, या आपके हार्ट की कोई समस्या है, तो मैं इनसे ज़रूर चाहूँगा कि अपने वाइफ का आप हार्ट की जांच जरूर करा लें कि कहीं उसकी वजह से तो BP लो नहीं है, शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चेदानी में, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी जाँच करा लें। ये सब भी ठीक रहता है, फिर भी BP लो होता है, तो ये देखना होगा कि क्या इनका शुरू से ही BP लो ही चल रहा था प्रेगनेंसी से पहले भी, और इनको यदि पेशाब बराबर आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं हो रही है, तो लो BP भी कई मरीजों में उतना नॉर्मल मान लिया जाता है, और खास करके यदि वो महिला पतली दुबली है, तो ऐसे पेशेंटों में पहले से ही उनका BP लो ही रेंज में रहेगा।
0: तो ऐसे में डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, एक ईमेल और है हमारे सामने जनवेश कुमार जी का, ये लिख रहे हैं कि माता जी को थायराइड की प्रॉब्लम है, नींद कम आती है, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है, क्या कारण हो सकता है और हमें कौन से डॉक्टर को ऐसे में दिखाना चाहिए, मतलब कौन से स्पेशलिस्ट से हम संपर्क करें?
1: जैसे कि माता जी इन्होंने कहा है, तो लगभग उनकी उम्र 50 के ऊपर ही होगी, तो बाकी इन्होंने जो थायराइड की भी समस्या बताई है उनको थायराइड की, तो मैं चाहूँगा कि इनको थायराइड की रेगुलर जाँच कराएँ, क्योंकि थायराइड की कमी की वजह से भी जो इन्होंने लक्षण बताए हैं इनके माता जी को आ रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, और बाकी मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। और रही बात इनका किस डॉक्टर को दिखाना है, तो मैं चाहूँगा कि किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को ये ज़रूर कंसल्ट करें इनकी माता में जो आ रहे लक्षणों के लिए।
0: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो। हेलो,
3: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। हाँ जी, अल्टमश बताइए, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पैर और हाथ पसीना आने लगता है, तो क्या करें मैम?
0: पसीना आना, क्या ये भी मैं

0: अल्कोहलिज्म के ठीक काम करने का संकेत है या फिर आम सी बात है डॉक्टर साहब?
1: नहीं, सही सवाल किया उन्होंने। पसीना आना यदि हद से ज़्यादा आ रहा है, शायद इसीलिए इनकी ये समस्या भी है, क्योंकि पसीना हम सबको आता है एक पर्टिकुलर टाइम पर हाथों में, अक्सर का हम लोगों के भी सबके हाथ थोड़ी देर के लिए गीले हो जाते हैं, बट इतना नहीं आता, बट इनको ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता हो कोई ज़रूरी समस्या हो। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपना थायराइड लेवल की जाँच करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जाँच कराएँ। उनके बाद भी यदि ये नॉर्मल रहता है तो कई बार ये बीमारी में, इनको एक बीमारी भी होती है जिसमें लोगों को अक्सर कर पसीना ज़्यादा ही आता है, तो ऐसे
0: जी
1: केसेस में कुछ क्रीम्स हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ पाउडर्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे पहले तो ये डॉक्टर से संपर्क करें।
0: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हम और लेंगे और उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपकी पसंद का गाना ज़रूर सुनाएंगे। सोनू परवाना का ईमेल है कि ज़्यादा नींद आए या कम नींद आए तो इसका क्या मतलब है? इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है हमारी सबकी लाइफ स्टाइल में, इवन छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी सारे टारगेट्स को मीट करते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का, तनाव का, चिंता का, नींद ना आने का भी हमारे मेटाबॉलिज्म से कोई संबंध है?
1: जी, बहुत बढ़िया सवाल किया उन्होंने, और डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जैसा कि हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन जिसको कहते हैं, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से शांत होंगे, हम प्रॉपर टाइम पर नींद लेंगे, कम से कम 6 या 8 घंटे की नींद लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं या एड्रेनलिन कहते हैं, इनकी मात्रा बॉडी में जो तय समय है या जो इसका रेट है या उस रेट से नहीं आएगा, ज़्यादा सीक्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब कॉर्टिसोल की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है, बॉडी बचाव की मुद्रा में करने लगती है, तो इसमें फिर ग्लूकोज इन सब की समस्या से होकर के बॉडी उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और रही बात इनका जो सवाल था कि ज़्यादा नींद आना या कम नींद आना, जी बिल्कुल, ज़्यादा नींद अक्सर कर बेसिकली जो हम लोगों को एक्टिविटी रखने के, थायराइड हार्मोन बहुत बड़ा इस्तेमाल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, तो मैं चाहूँगा कि ये अपना थायराइड की जाँच ज़रूर कराएं कि इनको नींद ज़्यादा क्यों आ रही है। कम नींद के लिए मैं चाहूँगा कि इनके मोबाइल का, टीवी का, इनका स्क्रीन टाइम ये कम करें, और एक तय समय बनाएं कि मुझे इतने बजे बिस्तर पर सोना ही है। शुरुआत में दिक्कत होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।
0: आज का वक्त ही ऐसा है डॉक्टर साहब कि क्या बोला जाए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए हम सभी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीज़न से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और एज अ रिजल्ट इतनी सारी समस्याएं, घर घर में फैटी लीवर, घर घर में हाइपरटेंशन, हृदय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, बढ़ा हुआ या घटा हुआ वजन या स्ट्रेस, इसी विषय में हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी 12:35 हुए हैं, अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है। हम चाहेंगे कि इस विषय में आप और प्रकाश डालें और मेटाबॉलिज्म को हम कैसे दुरुस्त करें, या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीजेज हैं तो उनको हम किस तरह से क्योर करें, इस विषय में भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। और दोस्तों, आपके पास अभी बहुत वक्त है। हमने खास तौर पर आज बुलाया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि हैं जाने माने फिजिशियन, और आज ये डायरेक्टली आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, आप तो हमारी शंकाओं के समाधान कर ही रहे हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी पसंद का ये खूबसूरत सॉन्ग प्ले कर दिया जाए। ये खूबसूरत सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में।
2: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल, @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: 12:40 और ठीक 36 सेकंड हो गए। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में। और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हम बात करें लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की। इसी विषय में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है जानी माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि आपके सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है, चलिए हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। हेलो,
7: मैम जी नमस्ते।
6: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
7: मैम अजय तिवारी बोल रहे हैं, ग्राम दहलिया, जिला सीतापुर से।
6: जी तिवारी जी, अपना सवाल पूछिए।
7: मैम हमारी बॉडी से पसीना नहीं आता है।
6: अच्छा, पसीना आता ही नहीं है कितनी भी गर्मी क्यों ना हो।
7: कितनी भी मैडम गर्मी हो, कभी पसीना ही नहीं आता है। ठंडियों में बहुत ठंडी लगती है, गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी की बर्दाश्त ही नहीं होता।
6: आपकी उम्र कितनी होगी?
7: हमारी मैम उम्र 42 है।
6: और किसी तरह क्या मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, कोई दवा तो नहीं रेगुलर लेते हैं आप?
7: नहीं मैम, दवाई किसी प्रकार की नहीं लेते। हमारे पिताजी थे, उनको भी यही दिक्कत थी।
6: जी जी।
7: और उसके बाद क्या होता है, कपड़े गीले करके हम ओढ़ लेते, तब ठंडी तब बचाव कर पाते।
6: जी जी, डॉक्टर साहब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
8: नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलती है, जो इन्होंने बताया है कि पसीना इनको आता ही नहीं है, चाहे ये कितनी भी गर्मी में रहें, और ठंड में इनको बहुत ठंड लगती है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये अपने किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को मिलके अपना थायराइड की जाँच कराएँ और जुड़े हुए जितने भी हार्मोनल्स के इश्यूज़ हैं उनकी जाँच कराएँ, क्योंकि यदि पसीना नहीं आ रहा है तो ये

0: भी एक समस्या हो सकती है जब इनको ज़रा भी नहीं आ रहा, क्योंकि पसीना हमारी बॉडी में एक तरीके का कूलिंग मैकेनिज्म का काम करता है। जब आपको ज़्यादा गर्मी में पसीना होता है तो बॉडी का बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म आपको बचाता है वो उस चीज़ से। पर जैसा इन्होंने बताया भी था कि इनको गीला कपड़ा रखना पड़ता है तब जा कर के उनको गर्मी से राहत मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द ही किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पिताजी को भी ये बीमारी थी, तो मैं चाहूँगा कि किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्या का निवारण करवाइए।
1: और समस्या का निवारण बिल्कुल हो जाएगा, बस सही समय पर सही सलाह की ज़रूरत है। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि मेडिकल साइंस की फील्ड में लगातार R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अपनी समस्या के संग जीना और इसे ये सोचना है कि चलो कोई बात नहीं और फिर तकलीफ को लगातार बर्दाश्त करते रहना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समस्या को समझिए, विशेषज्ञ से बात करिए और उसका समाधान पाने की कोशिश जरूर करिए। लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ कौन फोन लाइन पर है। हेलो,
2: नमस्कार ज्योति मैम।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं ग्राम चौजर ग्राम पंचायत चिकन पोस्ट रहमाबाद तहसील मलियाबाद जिला लखनऊ से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ।
1: जी ठाकुर साहब, बताइए अपना सवाल।
2: अरे मैम, मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये सवाल है कि हमारे पेट में दर्द रहती है, मैं खाना खाता हूँ तब भी दर्द है, नहीं खाता हूँ तब भी दर्द रहती है, तो कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है।
1: और ये समस्या है कब से आपको?
2: अरे ये समस्या कम से कम 5-6 साल हो रहे हैं।
1: और उम्र कितनी है आपकी?
2: इसमें उम्र हमारी 29 है।
1: 29 साल की उम्र और 5-6 साल से ऑलरेडी इनको इतनी समस्या है डॉक्टर साहब पेट से रिलेटेड।
0: जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनको ये समस्या पिछले 5 साल से, और ये खाना खाते हैं तब भी दर्द होता है, नहीं खाते हैं तब भी दर्द होता है, और बार बार इनको लैट्रिन जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी बॉडी का फुल जांच कराएं, जिसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है, लिवर की जांच है, और चूंकि ये इस एरिया में रह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने टाइफॉइड की भी जाँच कराएँ। ये सभी भी पैरामीटर यदि ठीक आते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलके अपनी आगे की जांच कराएं, जिसमें दूरबीन द्वारा इनके पेट की जांच की जा सके और लैट्रिन के रास्ते की, कि कहीं कोई वहाँ कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से इनको इस तरीके के लक्षणों से जूझना पड़ रहा है।
1: तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। 12:44 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले कॉलर से।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: 12:45 आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में, और हेल्थ एंड फिटनेस में आज हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। और इस विषय में बात करने के लिए हमने खास तौर पर इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को। तो लगातार आपके फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं और डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हो रही है। अगर आपका कोई सवाल है और आपने अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल इनकी तरह। हेलो जी, नमस्कार
5: जी। मैम नमस्कार, बहुत सहयोगी दिनेश साहब को नमस्कार
1: जी।
5: जी मैम, हम ये कहना चाहेंगे, हम जगमोहन बात कर रहे हैं
1: जी,
5: हम जिला बहराइच से बोल रहे हैं। ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे ज्यादातर थकान महसूस हो चलने से, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे ज्यादा चलें तो ज्यादा महसूस हो तो कोई दिक्कत नहीं है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र के विषय में जानना चाहते हैं, कितनी उम्र है आपकी, या कोई मेडिकेशन चल रहा है, कोई बीमारी का इलाज चल रहा है लगातार?
5: जी जी, मैं 18 वर्ष का हूँ।
1: ओके,
5: और हड्डियों में जैसे चटपट की आवाज आ रही है।
1: ओहो, अच्छा। और किसी तरह की कोई दवा तो नहीं आप रेगुलर लेते हैं?
5: जी नहीं मैम, दवा नहीं लेते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब फॉर श्योर देंगे।
0: जैसा कि इनका सवाल है कि इनके हड्डियों से आवाज़ आती है, थकान रहती है, सांस फूल जाती है, और इनकी उम्र महज 18 साल है, तो जहाँ तक इनके लक्षणों से लग रहा है कि इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी ज़्यादा है बजाय इसके कोई बीमारी के, तो मैं चाहूँगा कि बॉडी की रूटीन चेकअप कराएं।

0: जिसमें कि कैल्शियम ज़रूर शामिल हो, विटामिन B12 की जांच जरूर कराएं, विटामिन डी की ज़रूर जांच कराएं। ये सब की जांच कराने के लिए नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें।
1: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे पास और आया है और इस ईमेल में श्रद्धा जानना चाहती है कि क्या फैटी लिवर भी रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याओं से, और क्या ये सिर्फ अल्कोहल का लगातार सेवन करने वालों को ही होता है या फिर किसी को भी हो सकता है। इनके सवाल के बारे में हम फॉर श्योर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कमर्शियल ब्रेक।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाएं पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: तो डॉक्टर साहब, वो सवाल जो मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, क्या फैटी लिवर भी किसी तरह रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से?
0: जी, बहुत ज़रूरी सवाल है और ये हमारे आज की लोगों में ये भ्रम भी है कि क्या फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने वालों या शराब पीने वालों को ही होता है या सिर्फ उन्हीं को होता है जो लोग ज़्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का हमारे फैटी लिवर से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यदि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो हमारा शरीर हमारे ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, मतलब मांसपेशियों में उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है तो वहाँ पर वो भेज पाएगा। यदि आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब है तो वही ग्लूकोज को हमारा शरीर फैट के रूप में तब्दील करके हमारे बॉडी के अंगों में जमा कर देगा, जिसमें लिवर, पेनक्रियास, आंते जैसे ज़रूरी अंग है जहाँ पर फैट के फॉर्म में वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो कि आपको आगे चल के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक बीमारियां, क्योंकि यही फैट कभी कभी हमारी धमनियों, कोशिकाओं में भी जमा होने लगता है, जिससे कि हमें आने वाली बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं।
1: तो फैटी लिवर भी हो सकता है लाइफस्टाइल की वजह से, मेटाबॉलिज्म ठीक काम ना करने की वजह से। तो समस्याओं के बारे में हम लगातार बात करें, डॉक्टर साहब हमें आगे समाधान भी देंगे कि हम क्या करें जिससे कि मेटाबॉलिज्म या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस से फ्री हो करके, इन बीमारियों से मुक्त हो करके हम एक स्वस्थ जीवन को जी सकें। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कोई फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो,
4: हेलो
1: जी, नमस्कार।
4: नमस्कार, संजय तिवारी राम सुनेगढ़ जिलोना से बोल रहा
1: हूँ। हाँ जी संजय जी, बताइए।
4: मैम, हमारे शरीर में अचानक दर्द होता है, हाथ में खत्म, पैर में दर्द होता है, बीच में दर्द होता है, खत्म हो जाता है, उस जगह पे नहीं रहता, ये हरदम हुआ करता है। मैम, ये क्या दिक्कत है हमारे?
1: अच्छा, अक्सर ही दर्द रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत काम आपने कर लिया या बहुत चल लिए उस वजह से हो रहा है?
4: वैसे नहीं, अचानक दर्द होता है, खत्म हो जाता है, पैर में दर्द होता है, खत्म, पीठ में कभी दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तुरंत खत्म हो जाता है, या क्या लक्षण है?
1: अपनी एज भी बता दीजिए आप संजय जी।
4: एज 48 है मैम।
1: 48 ईयर्स की एज, बॉडी में यहाँ वहाँ पर पेन रहना, हाथ पैर बैक, डॉक्टर साहब बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है ये।
0: नहीं, इनकी उम्र को देखते हुए, बाकी इन्होंने बीमारियों के बारे में तो नहीं बताया, किसी कोई दवा वगैरह ये ले रहे हैं पहले से या नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि शरीर में दर्द एक आम समस्या हो गई है
1: जी।
0: बट इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जरूरी हैं, जिसमें हमारे पोषक तत्वों की कमी का होना बहुत बड़ा रीज़न है। आमतौर पर भारतीय समुदाय के लोगों में, इंडियंस में देखा गया है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, और ख़ास करके फल वगैरह हैं जितने भी हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे यहाँ शरीर में, मांस, जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। फिर भी यदि इनको कोई समस्या है तो नज़दीकी फिजिशियन या से मिल करके अपने लिए ज़रूरी जांचें कराएं, जिससे कि किसी और किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है, जिससे पता लग सके कि इनके पूरे शरीर में, चाहे वो काम करें या ना करें, हर वक्त दर्द क्यों रहता है।
1: मतलब हर वक्त दर्द रहना नॉर्मल नहीं है।
0: जी बिल्कुल नहीं।
1: और उम्र के साथ भी दर्द होना कोई बहुत नॉर्मल नहीं है, इसका इलाज किया ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं और ईमेल्स भी ढेर सारे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो चला है।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल, @ हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: 12:52 और ठीक 17

0: सेकेंड्स आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में, और हेल्थ एंड फिटनेस में आज खास तौर पर हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई खास हेल्थ प्रॉब्लम्स के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मिलाकर 223-8852 या फिर 223-8845, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और हम मिले हैं FM रेनबो पर। सो लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम श्रेया है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरी एज 24 इयर्स है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में तनाव सा रहता है, और स्पेशली जब मैं बाइक से जाती हूँ तो झटके लगते हैं, तो मेरे पेट में हल्का सा दर्द सा उठता है और लगातार तनाव नहीं रहता है, थोड़ी टाइम के लिए सही भी हो जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ये तनाव है क्यों।
0: श्रेया जी, आप कोई मेडिकेशन तो किसी मेडिकेशन पर तो नहीं है, कोई दवा तो नहीं लेती रेगुलर?
1: नहीं नहीं मैम, और मेरा वेट 48 केजी है, हाइट 160 सेंटीमीटर के अराउंड है, और मेरा BMI 18.7 है।
0: काफी अवेयर हमारी ये श्रोता हैं डॉक्टर साहब, सारी डिटेल्स इनके पास हैं। श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।
2: जी श्रेया जी का जो मेन सवाल था वो यही था कि ये जब बाइक वगैरह पे जाती तो पेट के निचले हिस्से में अक्सर इनको दर्द रहता है, तो मेरी पहली सलाह तो ये रहेगी कि अपना पेट का अल्ट्रासाउंड ये ज़रूर करा लें। दूसरा, अक्सर कर महिलाओं में जो कि देखा गया है कि फिजिकली एक्टिव उतना नहीं होती हैं, तो पेट की जो मांसपेशियों की कमी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, उनमें थोड़ा भी दबाव जब पड़ता है तो उनमें खिंचाव की वजह से उनको दर्द होने लगता है। तो मैं चाहूँगा कि पेट का अपना अल्ट्रासाउंड कराएँ, साथ ही साथ अपनी पेट की जो ऊपरी मांसपेशियां हैं उनका भी अल्ट्रासाउंड कराएं, यदि उनमें कोई कमजोरी है या नहीं उसका पता लगाएं। यदि नहीं भी है तो फिर भी मैं चाहूँगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके जितनी भी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में प्रेगनेंसी या उसके बाद इनको और ये समस्या ना बढ़ी हो इनके लिए।
0: डॉक्टर साहब, अंजू का ईमेल आया है, रादर ईमेल्स आए हैं। अनीता चौहान अंजू ये जानना चाहती हैं, वेट लॉस से जुड़े हुए इनके सवाल हैं कि क्या किया जाए जिससे कि वेट लॉस हो जाए, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज। जब हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि वो बड़े ओबीज हो रहे हैं, ओवर वेट हो रहे हैं, तो क्या हम अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करके, ठीक करके इस प्रॉब्लम से भी हम डील कर सकते हैं?
2: बहुत सही सवाल है, और एक कई लोगों का सवाल है कि हम मेटाबॉलिज्म या बेसिकली हम अपना वज़न को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वज़न एक बहुत बड़ी अब बीमारी के रूप में उभर के आ रही है। क्योंकि वज़न होगा तो आपको आने वाले वक्त में बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, इसकी समस्या ज़्यादा हो जाएगी, और चूंकि महिला हैं तो PCOD की भी समस्या इनमें जल्दी आ सकती है उम्र से पहले।
0: जी,
2: वज़न कम करने की जो बात कही इन्होंने, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे दिनचर्या का है, स्ट्रेस लेवल कितना है, हम किस वक्त सो रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसमें हमारे प्रोटीन की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। चूंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ दाल चावल खाने का एक अभिन्न अंग माना जाता है, तो यदि ये सच में वजन लूज करना चाहती तो मैं चाहूँगा कि ये प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करें रदर देन कार्बोहाइड्रेट में। तो हम लोग कहते भी मेडिकल साइंस में कि इंडियंस को हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगी तो इनका वज़न उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। रही बात कम करने के लिए, तो ये एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकती हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बनाएं कि मुझे उतने बजे सोना है, और 8 घंटे के पर्याप्त नींद लें, क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और जो बाकी हार्मोन्स हमारी बॉडी को जो नॉर्मलाइज रखने के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में बॉडी में काम कर पाएंगे, रिलीज होंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या में बेसिकली ये उसमें बदलाव लाएं और अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें।
0: तो सीधी सी बात है कि अगर दिनचर्या ठीक होगी तो मेटाबॉलिज्म बेटर हो ही जाएगा, डॉक्टर साहब के कहने का ये मतलब है। डॉक्टर साहब, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कई चीज़ों में तो हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उनको किस तरह से मैनेज करें कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी होने ही ना पाए, और अगर हो गई हैं तो वो अंडर कंट्रोल रहें, प्लीज़ हमारे लिसनर्स को आप गाइड करें।
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल था पुराना वाला, उसी में ही इसका आधा जवाब छुपा हुआ है कि आप हेल्दी डाइट लें, सिर्फ डाइट ना लें, पेट को सिर्फ कोई डब्बा ना समझें कि हमें सिर्फ भरना है। आप ये भी तय

0: करें कि जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो जैसे मतलब ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट की संख्या कम रखिए, फाइबर की डाइट रखिए, सलाद वगैरह लीजिए आप, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लीजिए, नींद पर्याप्त लीजिए, स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करिएगा, और यदि आप एक्सरसाइज या जिम नहीं भी जा सकती हैं तो आप डेली कम से कम 30 मिनट तेज जरूर चलिए, ताकि ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा एक रेगुलर एक्सरसाइज का माध्यम हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि आप दिनचर्या के कामों में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जितना भी लोग हैं अपने जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी लोग घरों में काम के लिए बाइयाँ इन सब के लिए लगा लेते हैं, और फिर खुद के लिए वो जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए।
1: जी।
0: तो मेरी पहली सलाह तो ये रहे कि आप अपने पहले खुद के काम तो स्वयं सारे करिए, उसके बाद यदि आपको वजन नहीं आ रहा है या आपको लगता है तब आप जिम जाइए। होता ये है कि जब जिम जाते हैं जब आदमी तो वहाँ पर फिर वो एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी कैलोरी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो शरीर उसको एकदम स्टोर के फॉर्म में या वहाँ पर तुरंत लग जाएगा शरीर को। तो आप दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, नींद पर्याप्त लीजिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, और पर्टिकुलर टाइम पर सोना स्टार्ट करिए।
1: पर्टिकुलर टाइम पे सोना ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि कहते हैं कि बॉडी रात में खुद को हील भी करती है। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल क्लियर हुई कि बीमारियां अचानक नहीं आती हैं, वो दरअसल हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में चुपचाप पनप जाती हैं। हमारी लाइफस्टाइल का जब हम ध्यान नहीं रखते तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाती है। तो एक छोटा सा विचार शेयर करना चाहूँगी हमारे सुनने वालों से कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ दी ओनली प्लेस You have to live. और ये मैंने कह रही, ये जिम रॉन ने बोला है, यही शरीर है, इसी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो इसका अपना ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि ऊर्जा, संतुलन और जीवन के प्रति उत्साह का नाम है। डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी, आज आपने इतनी सरल और सहज भाषा में हमारे श्रोताओं को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से, मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जी का, जो कि हैं हमारी कार्यक्रम प्रमुख, प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, और विशेष सहयोग विनय का रहा। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी हेल्थ एंड फिटनेस के एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक चलते रहिए, संतुलित रहिए और तनाव कम करिए, भरपूर नींद लीजिए, अपने शरीर को वही सम्मान दीजिए जो कि आप अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज को देते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने देशवासियों से खेती की जमीन को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस अपील का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। योजना के तहत पीड़ित परिवारों को अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जीवन

ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कार्यक्रम श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री पाठक ने मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM Rainbow।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जून में देसी साख्ता C-295 तैयारी की पहली परवाज के साथ हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेशे रफ्त हासिल की है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस तरह के मजीद 40 तैयारे बनाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, MSME और एरो स्पेस सेक्टर को फरोग मिल रहा है, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म को तकवीयत मिल रही है।
1: इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: वज़ीर आज़म ने बैनुल अक्वामी योगा डे पर तबादले ख्याल किया, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज्यादा मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी तामीर में आवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुजाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफ़र को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़रई ज़मीन को केमिकल्स से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर काश्त करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल ₹20 के सालाना प्रीमियम उस पर ₹2,00,000 तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित

0: परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराहे करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फ़रोग देने की अपील भी की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जलसे आम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वज़ीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीज़न के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ज़िलाई तरक्याती कामों और अमन अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वज़ीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2,478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीर शुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वज़ीरे आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नए वज़ीरे आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत इत्तेहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अज़ला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष

0: ठिकाना मैंने जाना, फिर ये मारा सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: एक 1:17 और 50 सेकेंड्स आप हैं ज्योति के साथ इंडो प्रोग्राम HPTV, यानी के होंठ मेरे और बात आपके दिल की, आवाज मेरी लेकिन जज्बात एंड अल्फाज आपके दिल के। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप थोड़े से तनाव में होते हैं तो क्या करते हैं खुद को कूल डाउन करने के लिए, खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। जल्दी से हमें ईमेल करिए और अपनी टिप्स हम सबके साथ शेयर करिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. एक बजकर 24 मिनट और ठीक 14 सेकेंड्स आप हैं ज्योति के साथ और ज्योति के सामने है ढेर सारी आपके दिल की बात। रामराज जी जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु, रामचरण पप्पू पासी, मनीष नीरज मधु बजरंगी काका, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉपिक है ये कि जब कभी आपको तनाव होता है, जो कि बहुत ही नेचुरल है आज के टाइम में, तो आप क्या करते हैं? गुस्सा करने लगते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, या फिर किसी और तरीके से उसको मैनेज करते हैं? सुधाकर जाधव जी ने लिखा है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम एक आधा मार्मिक पढ़ते हैं और आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं, FM रेनबो सुनते हैं और टीवी का समाचार सुनने लगते हैं। ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। होता क्या है ना कि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छा तरीका है ये स्ट्रेस को मैनेज करने का। ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से इन्होंने ईमेल किया। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख और वायाल परिवार, सतीश अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये लिखा है कि जब भी तनाव महसूस करता हूँ तो घर में बनाए मंदिर में जाकर आंखें बंद कर अरदास करता हूँ कि हे मालिक, आपका बच्चा हूँ, जो भी परेशानी है आपसे छिपी नहीं है, मुझे शक्ति दो, ये तनाव भी हवा के झोंके की तरह चला जाए। भाई वाह क्या बात है। वो है ना चौपाई के, जय विधिनाथ होई है तुमोरा, करो सोबेगी दास में तोरा, कुछ वैसी बात। इन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे उसी वक्त राहत मिलनी शुरू हो जाती है, फिर परमात्मा का शुक्राना भी करता हूँ। विनीत कुमार अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सारी तारीफ के लिए। लेकिन ये बात आपकी गलत है कि मेरे मेल कभी शामिल नहीं किए जाते हैं। आपका मेल देखिए अभी शामिल हो रहा है विनीत कुमार जी, और आपके मेल तो मैंने खुद ने कई बार शामिल किए। क्या बात कर रहे हैं आप। आगे आगे आगे किनका मेल है, मोनू सेठ लिख रहे हैं, तनाव में होता तो जो कुछ काम करता हूँ मन को खुश रखने के लिए, कॉमेडी फिल्म देखता हूँ, रेनबो सुनता हूँ, बच्चों के साथ कौवा और चिड़िया उड़ वाला खेल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बाग में बैठकर सुकून ढूंढता हूँ, जैसा समय वैसा कार्य। सीधी सी बात है कि इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है मोनू सेठ जी ने, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हृदय से आभार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू सेठ जी। और अंजू जी का एक और ईमेल है, अनीता चौहान अंजू, इन्होंने हेल्थ

इन फिटनेस से रिलेटेड मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा एम के राज, विनीत कुमार, सोनू परवाना, जनवेश कुमार, मोनू सेठ, प्रवीण हैगोने, जग्गर राम साहू, इन सबके भी ईमेल्स हमारे सामने हैं और सबके ईमेल पढ़े जाएंगे, ज़रूर पढ़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत गाना आपके रेडियो सेट्स पर। 1:27 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो ज्योति के साथ। और ज्योति आज आपसे जानना चाहती है कुछ काम की बात। जब कभी जिंदगी में तनाव आता है, जब कभी

मिनट और 42 सेकंड्स हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो ज्योति के साथ, और ज्योति आज आपसे जानना चाहती है कुछ काम की बात। जब कभी जिंदगी में तनाव आता है, जब कभी स्ट्रेस होती है, तो आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? जस्ट लेट इट बी, सोचते हैं कि अपने आप वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर आपके कुछ टिप्स हैं जो कि आपको लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए? तो जल्दी से हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwanilakhnow@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आपके ईमेल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इन द प्रोग्राम होटो पे तेरी बात।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
5: एक बजकर 33 मिनट और ठीक 54 सेकेंड्स आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ इन द प्रोग्राम होटो पे तेरी बात। अहमद नवाब का ईमेल आया है संडीला से, लिख रही गर्मी बहुत हो रही है आज तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि धूप के ओले बरस रहे हैं, काश मेरे यहाँ स्विमिंग पूल होता तो मैं उसी में रहती। टॉपिक पर ये लिख रही हैं कि जब बहुत ज्यादा तनाव होता है, गुस्सा आता है तो कभी कभी दूसरों पर निकाल देती हूँ, डिशम डिशम डिशम, और जब तनाव होता है तो डांस करती हूँ, रेनबो सुनती हूँ, दिन रात वैसे भी रेनबो सुनती ही रहती हूँ। तो ये जो दूसरों पर कैसे निकालती हैं आप, मतलब डिशम डिशम करती हैं या फिर किसी और तरीके से, ज़रूर बताइएगा। मोनू सेठ जी ने लिखा है कि सुबह से टेंशन में था लेकिन टेंशन दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, टीवी पर फिल्म भी देख रहा हूँ खट्टा मीठा, और साथ साथ रेनबो भी सुनता जा रहा हूँ। तो अगर रेनबो सुनकर आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, अगर आप रिलीव्ड फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन में रहना तो ठीक नहीं है, है ना। यदि तनाव हो जाता है तो मैं रामायण का पाठ करता हूँ, कभी कभी कबीर दोहा रहीम दोहा भी पढ़ता हूँ। सोनू महाजन लिख रहे हैं खालिसपुर ऊंचगांव अमेठी से, और आंचल लिख रहे हैं स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कई बार जब तनाव होता है तो खेलती हैं ये, विच इज वेरी गुड। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, खन्नौदी शहडोल मध्य प्रदेश से ईमेल लिख रहे हैं कि जब कभी तनाव में होता हूँ तो कुछ कॉमेडी फिल्म या सीरियल देख लेता हूँ ताकि तनाव से दूर रहूँ और अपने आप में खुश रहूँ, बाकी सुख दुख का साथी रेनबो तो है ही। बिल्कुल सही। रामेश्वर जी का ईमेल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंगीसापुर कानपुर देहात से ईमेल करें रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, कठेरिया परिवार। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम माशूक। अगर आपकी भी कुछ ऐसी टिप्स हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने की जिन्हें आपको लगता है हमारे साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज प्लीज प्लीज डू शेयर। प्रोग्राम के नाम हो तो भी तेरी बात, मैं आपकी दोस्त ज्योति और आप मुझे सुन पा रहे हैं FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:42 और ठीक 43 सेकेंड्स अपनी अपनी घड़ियां मिलाते रहिए और अपने कानों को एफएम रेनबो से सटा कर रखिए। वकील अहमद साहब शुक्रिया शुक्रिया मेहरबानी इतनी तारीफ के लिए। लिख रहे हैं कि गुस्सा नहीं आता, आता है तो खेतों की तरफ चले जाते हैं, हरी भरी फसल देखकर गुस्सा ठीक हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, कहा जाता है, ये प्रूवन है कि अगर आप नेचर लवर हैं और आप नेचर के साथ टाइम बिताते हैं तो आपका गुस्सा आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से इन्होंने ईमेल किया है। साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी मिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और एमन नवाब के साथ मिलकर। नरेंद्र सुथार जी ने ईमेल लिखा है कि जब कभी तनाव आ जाए तो उसे गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि तनाव भी पानी के बुलबुले की तरह है और हार कर चला जाता है। संगीत सुन लेता हूँ जो तनाव से राहत देता है, संगीत के साथ गुनगुनाता हूँ तो तनाव भी सोचता है कि किससे पाला पड़ा है मेरा जिस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। भाई भाई ये बात सही है, अच्छे दोस्त हो तो वो भी दोस्त का तनाव दूर कर देते हैं, जैसे सतीश अनेजा जी मेरे अच्छे दोस्त है। नरेंद्र सुधार जी नोहर राजस्थान से, जी दोस्ती तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, नो डाउट। आप बहुत स्ट्रेस में हो और अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएं, अपनी तनाव की आप चर्चा भी ना करें, ना चर्चा करें ना चिंता करें, देखिए थोड़ी देर के बाद में आपको काफी बेटर फील होता है। रामेश्वर जी लिख रहे हैं कि गुस्सा आता है या तनाव होता है तो रेनबो सुनने लगता हूँ। ग्रामो पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया। गीता सेठ लिखती हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे गुस्सा और चिंता चिता के समान होते हैं, इसलिए ठंडा पानी पिए, गहरी और लंबी सांस लें, सब मस्त हो जाएगा। एग्जैक्टली टाइम जिस चीज को जितना लगना है सॉर्ट आउट होने में उतना तो लगेगा ही, उससे पहले टेंशन लेकर क्या करना है ना, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की।

0: तो टेंशन किस बात की लेने का, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ अपनी टाइम लेकर के, हर प्रॉब्लम अपना टाइम लेकर के सॉर्ट हो ही जाती है ना। और वो कौन सा डायलॉग था कि अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
0: अहमद नवाब ने लिखा है संडीला से कि मैं तनाव में होती हूँ तो अपने फ्रेंड्स को फोन करती हूँ, वो फोन ही नहीं उठाते और उठा भी लेते तो ऐसी बात करते हैं कि मुझे और गुस्सा आ जाता है। होता है ऐसी, मतलब आप जब गुस्से में तो आप किससे बात करें, आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा और ये भी देखना होगा कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और किसी और का गुस्सा आप किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक्शन के रिएक्शन होंगे और रिएक्शन की वजह से आपके ऊपर जो असर होगा बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। तो सबसे अच्छा तो यही होता है कि शांतिपूर्वक बैठ जाइए, है ना। प्रवीण कुमार कहते हैं, प्रवीण जी बोल रहे हैं, रेनबो सुनो, पानी पियो और सो जाओ। ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा प्रैक्टिकल सा ये टिप है, हालांकि बहुत नॉर्मल सा लग रहा है लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा इफेक्टिव है। उर्फी खान का बुलंदशहर से ईमेल आया है बहुत टाइम के बाद में, लिख रहे हैं सॉन्ग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। स्ट्रेस में वही स्थिति होती है लेकिन जब मेरे भांजे आए हुए होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ स्ट्रेस होने ही नहीं देते। ये होता है, आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके साथ में अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको स्ट्रेस काफ़ी कंट्रोल रहेगा, ये प्रूविन है। कल हमारे भाई का तिलक है, ज्योति दीदी आपको इन्वाइट कर रहे हैं। हम लोग तो रेनबो सुनते हैं इसलिए हमें गुस्सा आता ही नहीं, क्या बात है। रिंकी पिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। अब आपने पूरा एड्रेस भी बता दिया, ये भी बता दिया कि आपके भाई का तिलक है, तो देख लीजिए बहुत सारे मेहमान पहुंचने वाले हैं और सुपरहिट बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम को। इन एनी केस मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। मुनेश कुमार राज ने लिखा है, सुमोना जी के मार्गदर्शन में आकाशवाणी के पग चिन्ह कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और भविष्य के लिए मार्गदर्शक रहा। हेल्थ एंड फिटनेस भी अच्छा रहा। आज के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि परेशानियां कितने भी आ जाएं, टेंशन फ्री रहना, हमारे पास से सीधा उपाय, रेडियो लाइव है तो क्यों ना बजाएं। चिंता नहीं चिंतन करो, टेंशन नहीं काम करो। आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज जी। मुनेश जी, रोशनी रावत लिख रही है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। बेमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से बिलोंग करती है, फिलहाल चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है। स्ट्रेस कम करने के लिए दोस्तों से बात कर लेती है और हर रेनबो भी सुनती हैं। इनका ये मानना है कि दो पल की जिंदगी, उसमें भी क्या स्ट्रेस लेना। तो हम स्ट्रेस नहीं लेते, खुश रहते हैं और चाहने वालों को भी खुश रखते हैं। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से लिख रहे, मुझे कभी तनाव महसूस नहीं होता, खुशी रहती है। आज मेरी दोस्त पीहू के मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है तो उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। जी नीलू जी, बिल्कुल बिल्कुल ढेर सारी बधाइयां हमारी तरफ से भी। तो दोस्तों आज हमने किस बारे में बात की, आज हमने ये जानना चाहा आपसे कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। आजकल की लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है।

सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव है लेकिन तनाव को मैनेज करना स्ट्रेस का मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ी कला है और इस पर हम सबको काम करना जरूरी है क्योंकि जिंदगी तो ऐसी रहनी है अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी टेंशन लेते हैं तो टेंशन को करिए दूर और खुश रहिए भरपूर क्योंकि ले लेकर एक ही जिंदगी तो मिली है ना छोटे छोटे से टिप्स बहुत सारे फ्रेंड्स ने दिए लाइक पानी पीजिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ लीजिए थोड़ी देर शांत बैठ जाइए और कुछ भी ना समझ में आए तो रेडियो टीवी सुनने लगिए इन सारी चीज़ों से आपको ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं ऊपर वाले को याद करते हैं ऑफकोर्स इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है तो तरीके अपने अपने लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये जो खूबसूरत सी जिंदगी है उसे स्ट्रेस के लिए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने का और जिंदगी मिली है तो पूरी तरह से जम के एकदम स्टाइल में रहने का

0: नकारेला है, ओनली बजारेला है, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग भी हो गए बाबा।
1: घुमा के उल्टा टोपी टिका के गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के

0: जी आप पूरे पूरे स्टाइल में रहिए और स्टाइल में ही सुनते रहिए एफएम रेनबो, जिस पर इस वक्त इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया। जनवेश कुमार जी ने लिखा है, गुस्सा आता है तो अपनी गलती चेक करता हूँ, कई बार उसी में गुस्सा ठीक हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। विनीत कुमार रूमी गौतम अर्थापुर रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से ईमेल कर रही हैं, लिख रही हैं कि गाना बजा देना तो भाई नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश बिल्कुल की जाएगी। ऑन दिस नोट अब ज्योति चाहेगी आपसे इजाज़त इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगी कि थोड़ी देर में एक न्यूज ब्रेक होगा और उसके बाद बस आपकी पसंद के सॉन्ग्स, सो स्टे ट्यून्ड।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के लिए तैयार करने के लिए हो रहे एक प्रयास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यांत्रिक विद्या और डेटा साइंस में बीटेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ये आधुनिक तकनीक को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने इस प्रयास के लिए विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अनुरोध किया कि उनके आसपास गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मूर्ति अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों की ही बनी हुई हो। उन्होंने मूर्तिकारों से भी मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। श्री मोदी ने ये अपील भी की कि वे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ना खरीदें। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं, जिससे नदियों, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आगामी गणेशोत्सव पर देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के प्रति प्रेरक आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों एवं शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस गणेशोत्सव को पर्यावरण अनुकूल, स्वदेशी और जनभागीदारी से परिपूर्ण उत्सव बनाने का संकल्प लेने की अपील की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कार्यक्रम श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री पाठक ने मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में 4 मैच खेले हैं और 3 में जीत के साथ वो ग्रुप में दूसरे

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
4: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
5: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
6: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दो बजकर 5 मिनट हो गए हैं और साथ में हो गए हैं 5 सेकंड्स भी, और ये टाइम होता है हॉट मेल का। हॉट मेल यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बस आपकी ही पसंद के सॉन्ग्स प्ले होने वाले हैं और आप ही के मैसेजेस पढ़े जाने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स अगर सीधे सीधे कहूँ तो ये प्रोग्राम है बस आपके ही नाम। तो ऐसे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने ईमेल नहीं किया तो अब करिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में तो बस आपके ही ईमेल्स लिए जाने हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का ईमेल आया है, बबलेश पवार का भी ईमेल आया है गाने की फरमाइश के साथ में, और ढेर सारे नाम इन्होंने लिए हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डागरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, एंड विजय मोबिया का भी ईमेल है मेरे सामने, कविता मोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु बाबा, अनय अनाय और पेंटर बाबू। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये खूबसूरत सॉन्ग प्ले करते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: दो बजकर 11 मिनट हो रहे हैं और साथ में हो रहे हैं 30 सेकेंड्स। अगर आप ऐप पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये टाइम सही ना लग रहा हो, लेकिन उसका रीज़न ये है कि ऐप पर हमारा प्रोग्राम थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी देर से पहुंचता है। ऐप पर सुनिए, रेडियो पर सुनिए, कहीं भी सुनिए, लेकिन बस जुड़े रहिए FM रेनबो से, जिस पर इस वक्त प्रोग्राम आ रहा है हॉटमेल। हॉटमेल यानी सिर्फ आपके मेल, आपके संदेश, आपके दिल की बातें और आप ही की पसंद के गाने। मैं हूं ज्योति और मैं आपसे मिली हूँ रेनबो FM पर। संदीप मक्कड़ जी का ईमेल है, गाने की फरमाइश के साथ नाम लिखे हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर, पंजाब से। इतनी दूर से ईमेल, वाओ क्या बात है। सुमन टी, ढेर सारी ईमेल हैं इनके। सलाम जी, कैसे हो आप? हमारी पसंद के कोई भी गाने सुना दो। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम, यूसुफ को भी आसमा डोम, चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जा

Jatav, Fatima Jatav, W. Wali. Jatav was so nam Wali Jatav. और साथ में गाने की फरमाइश. तो भाई जहां तक गाने की फरमाइश की बात है तो कोशिश पूरी की जाएगी. लेकिन आप सबने ईमेल किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, गाने की फरमाइश के साथ. भाई गाने की फरमाइश करिए और बिल्कुल करिए, लेकिन मज़ा तब और आ जाता है जबकि आप गाने की फरमाइश के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग भी लिख करके भेजते हैं. अभी देखिए, हमारे एक दोस्त की पसंद का मैंने सॉन्ग प्ले किया, उन्होंने लगता है प्रोग्राम सुना ही नहीं, उन्होंने फिर से मेल भेज दिया और गाने की फरमाइश भी की और ये भी कहा कि भाई ईमेल पढ़ लीजिए. तो भाई ये बात तो गलत है, जब आप प्रोग्राम में ईमेल भेज रहे हैं तो फिर मोहब्बत से, जितनी मोहब्बत से हम आपके गाने प्ले कर रहे हैं, आपकी ईमेल पढ़ रहे हैं, उतनी ही मोहब्बत से आप प्रोग्राम को सुनिए ताकि आपको पता तो चले कि आपका ईमेल शामिल हुआ या फिर नहीं. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ईमेल करिए और प्लीज़ करिए, लेकिन मज़ा तब आता है जब आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी लिख करके भेजते हैं, जैसे कि कोई संस्मरण हो, कोई मज़ेदार घटना हो, कोई शेर व शायरी हो, कविता हो, कोई जोक हो, चुटकुला हो, लतीफ़ा हो, मतलब कुछ भी ऐसा है कि जिसे सुनकर एकदम मज़ा आ जाए. सुरेश नारंग जी का ईमेल है मेरे सामने, इन्होंने गाने की फरमाइश की सहारनपुर से, आशु नारंग, सोनाली और पार्थिक के साथ. नवाब खान का भी ईमेल आया है और उन्होंने वर्ली मुंबई से ईमेल किया, इशरत जहां मास्टर अजहर खान और अजीम खान के साथ मिल कर के. अब आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये खूबसूरत सॉन्ग प्ले करते हैं.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 तक। तो ये तो थी बहुत इम्पोर्टेंट सूचना। अब चलिए वापस लौट करके आते हैं प्रोग्राम में, जिसका नाम है हॉटमेल और जिसमें ढेर सारे ईमेल्स आपके हम तक पहुंच रहे हैं। मिर्ज़ापुर दक्षिणी पोस्ट माधवपुर से, थाना साधना सीतापुर से, बिठौली लखनऊ से इस वक्त प्रोग्राम सुन रही हूँ। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मुझे गाना सुनना है, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही हैं पूजा पाल जी, तुलसी मस्कीन जी लिख रही हैं कि हम रेगुलरली कनेक्टेड हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, सॉन्ग अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जस्ट ऐसे ही कनेक्टेड रही है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे दोस्त इतनी दूर दूर से ना सिर्फ हमसे जुड़ते हैं बल्कि हमें एहसास भी दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। शायरुन नूर अंसारी जी का ईमेल आया है फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान के साथ ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से। मसरूर हसन जी का ईमेल हेड़ा सहारनपुर से, शाइना हसन नाजिया इब्राहिम के साथ लिख रहे किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। हनुमंत शिंदे का ईमेल शिरडी जिला सांगली से, हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे, गाने की फरमाइश की है तो भाई गाने की फरमाइश करिए, बिल्कुल करिए क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपका है, लेकिन मज़ा तब आता है ना जब आप कुछ इंटरेस्टिंग एकदम मज़ेदार लिख करके भेजते हैं जिसे पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है और सुनने में हमारे दोस्तों को। विनीत कुमार जी का ईमेल है सीतापुर से, ओंकार सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजा जीपुरम लखनऊ, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय तरौली से, ममता हरदोई से, वीरपाल पट्टी तरौली से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, मोहिनी हरदोई से, इन सबको लेकर के इन्होंने ईमेल लिखा है रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से। इन्होंने लिखा है कि मेरी साली बात करने में बहुत स्मार्ट है, हम उतनी बात कर ही नहीं पाते, तो मतलब ये है कि आप एडमायर कर रहे हैं उनकी इस क्वालिटी को। और ऐसे भी आजकल तो कहा जाता ना कि जिसे अपने दिल की बात रखनी आती है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।

तो जी आपकी साली साहिबा को मैं यही कहना चाहूंगी कि बस ऐसे ही बोलती रहिए और खूब बोलिए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि बातें ऐसी ना हो जो किसी के दिल को दुखाए। रेनबो लखनऊ के लिए बेशुमार मोहब्बतें। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। गाने की फरमाइश की है जी, कोशिश जारी है। बोधराज खोरवाल का भी ईमेल, बोधराज खोरवाल जी ने भी हमें ईमेल किया है गाने की फरमाइश के साथ। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी, और भी हमारे ढेर सारे दोस्त हैं जिनका ईमेल हमारे सामने है और पूरी कोशिश की जा रही है कि सबके ईमेल पढ़े जाए। फिलहाल आप ही में से किसी एक की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम कसूर, आवाज़ कुमार सानू की।

0: तो अगर आपको भी साथी की तलाश है तो हम हैं ना, हम यानी कि आपके अपने दोस्त एफएम रेनबो, और इस वक्त तो हम पूरी तरह से दोस्ती निभा रहे हैं। कैसे? बस आप ही की पसंद के सॉन्ग प्ले करके और आप ही के ईमेल्स इस पूरे प्रोग्राम में पढ़ करके। तो अगर अभी तक आपने ईमेल नहीं किया तो किस चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से ईमेल करिए एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। मैं हूँ ज्योति और मैं बड़ी बेसब्री से आपके मेल्स का वेट कर रही हूँ प्रोग्राम हॉट मेल में।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिस्निंग टू एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। हमें भी शामिल करें, इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, और साथ में ये भी लिख दिया है कि शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। शाहरुन नूर अंसारी जी का भी ईमेल आया है, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान के साथ पोस्ट हर हर पुर मटकली जिला बरेली से, एंड जावेद अख्तर रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी जी के साथ इन्होंने ईमेल किया है। जॉन डी केस्ट्रो, रोजी डी केस्ट्रो, पॉल डी केस्ट्रो, विलिस डी केस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से, थैंक्स फॉर प्लेइंग लवली सॉन्ग्स बोल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। करते हो इतने ईमेल की पढ़ने वाला हो जाता है हक्का बक्का, वाह वाह वाह वाह। करते हो इतने ईमेल की पढ़ने वाला हो जाता है हक्का बक्का, अगर चिट्ठियों का जमाना होता तो पत्रों से रूम भर जाता, इतना कि संभालने वाला हो जाता बीमार पक्का। भाई ये मेरी शेर शायरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये लिखकर भेजा है मुनेश कुमार राज ने महानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से। अभी देखिए, आपके ईमेल्स हो या आपके लेटर्स हो, ट्रस्ट मी, हमको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो इसके लिए ये कोई हक्का बक्का या बीमार पक्का वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, कम वक्त होता है, इसलिए कई बार चाह करके भी कुछ मेल्स पढ़े नहीं जा पाते, कई बार सबकी पसंद के सॉन्ग्स प्ले नहीं हो पाते, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि दिल से शुक्रिया आप सबका, जो कि आप सबसे कीमती वक्त, जो जिसे बोलते हैं सबसे कीमती चीज़ आज के ज़माने में, आज के बिजी टाइम्स में, जिसे कहते हैं वक्त, वो आप हमें देते हैं। ना सिर्फ वक्त देते हैं बल्कि हमें फीडबैक भी देते हैं, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। रामेश्वर जी का ईमेल आया है, मुगिसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, आपके कई ईमेल आ चुके हैं। तो जी, आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम अगर बस एक ईमेल करके रुक जाए ना, तो हमारे दोस्तों को भी मौका मिले, है ना। सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि ने भी हमें ईमेल भेजा है श्री कृष्ण की नगरी से, श्री कृष्ण की नगरी यानी कि मथुरा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये खूबसूरत गाना सुनाते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दो बजकर 37 मिनट और 49 सेकेंड्स, आप हैं ज्योति के साथ इंटर प्रोग्राम हॉटमेल, और ज्योति लगातार आपके ईमेल्स भर रही है, साथ ही साथ प्ले कर रही है सिर्फ सिर्फ सिर्फ आप ही की पसंद के गाने। सिद्धार्थ गोंडाने जी का ईमेल आया है, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी के साथ इन्होंने गाने की फरमाइश की है। ज्योति जी हमारे मेल पर भी ध्यान दे लीजिए। लीजिए मोनू सेठ जी, ध्यान दे लिया, बिल्कुल ध्यान दे लिया। महेंद्र देपन जी लिख रहे हैं नागौर रूण से, मैं हूँ महेंद्र देपन, नागौर का गांव रूण ही प्यारा ठिकाना हमारा है।

लाया हूँ हॉटमेल में एक खूबसूरत सा नगमा, ये सुनवा दीजिए। यही है दिल की तमन्ना। सुल्तान रज्जा, बाबू भाई अंसारी, रोशनी और बबीता दीदी भी संग हैं इन सभी प्यारे अपनों के साथ। गूंजते रेडियो के खूबसूरत रंगे, महेंद्र जी कोशिश जारी है। अहमद फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसेरा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन आसमा, परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली ने भी ईमेल किया है। राहुल का भी ईमेल आया है, कहां से आया है इन्होंने बताया नहीं, लेकिन ईमेल ऑफ कोर्स हम तक पहुंच गया है। आहिल खान जी का ईमेल है। उर्फी खान बुलंद शहर से, पॉसिबल हो तो हमारा गाना सुना दीजिए और आपके लिए दो लाइनें पेश हैं। उसने हमसे पूछा बगावत क्या है, हमने कहा जो दिल ने कर दी तुम्हें देख कर, भाई वाह क्या बात है। और इन्होंने दो बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट बच्चों की तस्वीर हमारे साथ शेयर की। अगर ये आपके बच्चे तो उन्हें ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद हम सबकी तरफ से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने भी हमें ईमेल किया है फ्रांसी हिसार से, बहुत दूर से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, किडवई नगर से, दुपुरा टाउन से, जुबैर अली खान, इनका भी ईमेल आया है हम तक। दिग्दर्शन कौर जी का भी ईमेल, ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है और कहा कोई सा भी गाना प्ले कर दीजिए। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी, पूरी कोशिश की जा रही है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जी का भी ईमेल है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी की पसंद का ये गाना सुनाते हैं चांदनी फिल्म से। हालांकि पर्वत से काली घटा टकरा रही कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम मैदानों में गर्मी से राहत नहीं आने पा रही है। लेकिन कौन जाने आपकी पसंद के इस गाने के साथ ही मौसम का मूड बदल जाए और यहाँ पर भी बारिश हो जाए। तो चलिए लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।

0: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सिर्फ लखनऊ ही नहीं, दूर दूर से हमें ईमेल आ रहे हैं, इसका मतलब हम आप सबके दिलों में धड़क पा रहे हैं। प्रोग्राम का नाम हॉटमेल, मेरा नाम ज्योति, चैनल का नाम एफएम रेनबो और टाइम हो गया है 2:45 and 48 seconds। तो चलिए जल्दी से ईमेल पढ़ते हैं ताकि आप में से किसी का भी ईमेल छूटने ना पाए। संजय साहू पोटिया कला से ईमेल इन्होंने भेजा है। सुजाता साहू के साथ लिखते हैं, सफलता कड़ी मेहनत, आत्म जागरूकता और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ दंतरेंगी भाटापारा से सोनम बिल्डार, फातिमा बिल्डार, अस्मा बिल्डार, सरफुद्दीन फकीर साहब का भी ईमेल आया है और साईं गायकवाड़ जी भी लिखा है इन्होंने कि हॉटमेल बढ़िया चल रहा है, गाना सुना दीजिए। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली दांडे नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ एंड साई गायकवाड़ जी के साथ मेल किया है। अस्मा खातून, दिल साफ रखना अच्छा है मगर हर किसी के लिए नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि दिल साफ रखना हर किसी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं ना, या अगर आप अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये दूसरे के लिए नहीं है, ट्रस्ट में ये आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी खुद की इमोशनल हेल्थ के लिए एंड अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमें अच्छे बनना है इसलिए नहीं कि दूसरों के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अच्छे हैं ही, है ना। एंड ट्रस्ट में बहुत मुश्किल नहीं होता। मगर पारा बिलासपुर से इन्होंने ईमेल किया है, वसीम आसमा दलाल, अकरम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा दलाल, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से सोनम कुटरिया, दिनेश कुटरिया, फातिमा कुटरिया का भी ईमेल आया है। ओम बगड़िया जी का ईमेल, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, बांडीवाला फजिलका पंजाब से इन्होंने ईमेल किया है और गाने की फरमाइश की, कहा है कि किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका ईमेल है। मुंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी जी का ईमेल आया है एंड रूबीना थापा। सरगुजा मैन पार्ट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा के साथ और साथ ही साथ कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा भी।

तो जी इनके ईमेल तो हम तक पहुंचे ही हैं, अगर आपको पहुंचाना है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, जल्दी से ईमेल करिए ताकि आपका नाम आज के प्रोग्राम में शामिल हो सके और आपकी पसंद का सॉन्ग भी प्ले किया जा सके।

0: तेरी की, इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तू इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया।

लखनऊ की। कोमल तिवारी जी का भी ईमेल है कैसरगंज बहराई से गाने की फरमाइश के साथ, और जाकिर साहब, रोहित बेलदार एंड याकूब कुरेशी, पूनम गगनेजा, स्वर्ण सिंह, शारुन नूर अंसारी, रिजवान साहब, राजू मिगलानी, ताज मोहम्मद साहब, सुधाकर जाधव, दिलीप राजमणि, सत्यम पाल, मुकेश कश्यप, मूसा शेख जी, संजय ढिंगिया जी, अहमद फूल वाले और नवी हसन साहब, कमलकांत गुप्ता जी, यासीन अंजन जी, दिलीप कुमार जी, डी वर्मा जी, सिद्धार्थ गुंडाने एंड ब्रह्मेश जी, राजेंद्र कुमार जी, सतीश अनेजा जी, बोधराज खोरवाल, उत्तम कुमार भगत, राधे कुमार विद्यार्थी, दुर्गा राम साहू जी, स्वर्ण सिंह, रणधीर गुप्ता, सादिक साहब, नवाब खान साहब, संदीप मक्कड़, आफ्ताब अंसारी, उदयभान पाल जी, तुलसी मस्कीन। तो जी मैंने पूरी कोशिश की है, फागुराम यादव जी, प्रकाश बोरगांवकर जी, संजय ढिंगिया जी, पूरी कोशिश की है मैंने कि आप सबके नाम एटलीस्ट ज़रूर ले जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक तो देखिए वक्त की कमी, दूसरे इंसान ही, तो अगर आपका नाम आज छूट गया, आपका ईमेल नहीं पढ़ा गया, आपकी पसंद का सॉन्ग नहीं प्ले हुआ, तो दिल पर मत लीजिएगा। ये प्रोग्राम हर दिन आता है, तो आप कल ट्राई कर सकते हैं, है ना? और अगली बार जब भी इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी तो पक्का 100% पक्का आपकी पसंद का सॉन्ग जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगी। तो ऑन दिस नोट, ज्योति चाहती है आपसे इजाजत, प्ले करते हुए आप ही में से किसी एक की पसंद का ये सॉन्ग इन द प्रोग्राम हॉट व्हील। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यू ही जारी रहेगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में असम के हरगिला पक्षी की चर्चा की, जो राज्य के कुछ हिस्सों में अशुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि ये दुर्लभ पक्षी प्रकृति को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। उन्होंने कहा कि जीव विज्ञानी पूर्णा देवी बर्मन ने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की और धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगीं। इससे एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ और हजारों महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आईं और उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। श्री मोदी ने कहा कि इन महिलाओं ने दिखाया कि सही जानकारी पहुंचाने से वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया है। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और प्लास्टिक को इको ब्रिक यानी पर्यावरण के अनुकूल ईंटों में तब्दील किया जाने लगा। अब इन ईंटों का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि राजगढ़ में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को पिछले कुछ महीनों के दौरान रिसाइकिल कर उनका बेहतर उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जनपद में आज 548 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा, जिसका लाभ यहाँ के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत

सीएमओ डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। अभियान के अंतर्गत जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 4 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
1: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: एक बार फिर से नमस्कार गुड आफ्टरनून कैसे फील कर रहे हैं आप पूरी उम्मीद है मुझे कि आपका ये संडे एकदम चिल्ड आउट बिल्कुल रिलैक्स्ड गुजर रहा होगा तो आपके संडे को और भी फन डे बनाने के लिए आपके साथ बनी हुई है आपकी दोस्त ज्योति और इस वक्त लेकर आई है आपके लिए प्रोग्राम सतरंगी दुनिया सतरंगी दुनिया और ज्योति यानी कि कुछ तो सरप्राइज होने वाला है बॉस सो फॉर द सरप्राइज स्टे ट्यून्ड किसे का

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आज के HPTB यानी कि ऑटो पे तेरी बात में मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि जब कभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप क्या करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे, बड़े यूजफुल और बड़े इंटरेस्टिंग उपाय आप सबने बताए। लेकिन दोस्तों कितनी अजीब सी बात है ना, आप एक छोटा सा फोन भी खरीदते हैं तो उसमें आपको पूरा मैनुअल मिलता है, प्रेशर कुकर तक अपने साथ एक गाइड बुक लेकर आता है। लेकिन ये जिंदगी सीधे सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई बुक्स नहीं बताती कि हम इन चीजों से कैसे डील करें। कोई नहीं कहता कि किस तरह से हम ओवरथिंकिंग के स्विच को ऑफ कर सकते हैं। कोई ये भी नहीं बताता कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में हम जब 20 चीजें डाल देते हैं तो बिना कुछ खरीदे ही हमें इतनी खुशी क्यों मिलती है। कोई नहीं बताता बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। तो चलिए आज एक साथ मिल करके क्रैक करने की कोशिश करते हैं इन्हीं छोटी मोटी चीजों को। मैं आपकी दोस्त ज्योति और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज का सतरंगी दुनिया लाइफ हैक्स स्पेशल। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बहुत कुछ काम का भी होने वाला है दोस्त यहाँ पर।

ओ जो करना है वो करो, लेकिन साथ ही साथ सुनते भी जाओ सतरंगी दुनिया, जिसमें आज यानी कि संडे के दिन स्पेशली ज्योति लेकर आई है जुगाड़ दिमाग के, आराम जिंदगी के, यानी कि लाइफ हैक स्पेशल। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को अचानक से आपको बेचैनी होनी शुरू हुई, भाई ये बात वहां कह दी थी, कहनी थी कि नहीं, कि इसको कुछ ऐसे हैंडल कर लेते, अरे वो जो जोक मारा था उसमें कोई हंसा ही नहीं, खराब तो नहीं लगा होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो गुड न्यूज ये है कि इट्स वेरी वेरी वेरी नॉर्मल। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग का स्विच ऑन हो जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हैं 2026 में और आपको चिंता होनी शुरू हो जाती 2036 की, तब क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं क्या करूं, पर आप कर तो कुछ पाते नहीं है, लेकिन हाँ बेचैन हो करके अपने बिस्तर पर करवटे बदलते रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बताऊंगी आपको और जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल लेट्स शट अप एंड डांस टुगेदर।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. 3:19 हो रहे हैं आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम सतरंगी दुनिया और आज ज्योति लेकर आई है लाइफ हैक्स स्पेशल क्योंकि लाइफ किसी मैनुअल के साथ नहीं आती तो भाई अगर आप भी ओवरथिंकिंग के शिकार हैं अगर आपको भी लगता है कि इसने ऐसा किया तो क्यों किया होगा कहीं उसने मुझे इग्नोर तो नहीं किया कहीं उसने जानबूझकर मेरी हाय हेलो का जवाब तो नहीं दिया हाय क्या होगा 2 साल 4 साल 6 साल के बाद ये जो मैंने किया था वो बहुत ऑकवर्ड तो नहीं लगा होगा अगर ओवरथिंकिंग आपके साथ भी बनी रहती है तो आपको क्या करना है भाई सीधी सी बात है बैठिए सोचिए और ये सोचिए कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर जो आपका दिमाग बिल्कुल कुक कर रहा है ना कि सब गलत है सब खराबी हो रहा है अगर वो भी हो गया तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको इग्नोर किया तो आफ्टर दैट देन इतना सोच कर देखिए या फिर अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है परेशान कर रही है तो लिखिए कि 5 साल के बाद भी क्या ये आपके लिए उतनी ही मैटर करेगी अगर मैटर नहीं करेगी तो फिर क्यों परेशान होना सोच कर देखिए ये जो दिमाग है जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का लोड लेता है तो कई बार बहुत कायदे की बातें सोचे कोई ज़रूरी नहीं है तो ऐसे में लत लगा लीजिए अपने दिमाग को बीच बीच में स्विच ऑफ करने की एंड जब यही दिमाग ज़्यादा परेशान करे तो बस चादर ओढ़ कर सो जाइए कहते हैं ना कि आराम बड़ी चीज़ है मुंह ढक कर सोइए किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइए ज़रूरत से ज़्यादा सोच कर भी कुछ होता नहीं है इसलिए बहुत सी चीज़ें वक्त के भरोसे छोड़ देना इसी में अक्लमंदी है ट्राई करिए मुझे हेल्प कर चुका है ये लाइफ हैक एंड आई एम श्योर आपको भी ज़रूर करेगा

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: 3:25 और 40 seconds आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम सतरंगी दुनिया। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कितने भी अलार्म लगा लो सुबह उठा ही नहीं जाता, पता ही नहीं चलता कि कब आप स्नूज करते करते अलार्म को ऑफ कर देते हैं और सारे लोगों के बीच आपकी इमेज हो गई है ऐसे बंदे की, ऐसी बंदी की जो कि हमेशा लेट। ये जो नहीं उठने वाली प्रॉब्लम है ना, ये भी बड़ी कॉमन है। यस, सही सुना आपने, ये भी बहुत ही कॉमन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओके, ठीक है कि ये प्रॉब्लम है आपके साथ। इस प्रोग्राम, इस प्रॉब्लम से आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, एक छोटा सा हैक आपको देने की कोशिश करूंगी, बट आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: यस
1: यस, अब हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि अगर कई कई अलार्म लगाने के बाद भी आपसे सुबह उठा ही नहीं जाता, जगा ही नहीं जाता, तो आपको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा है कि ये कि अगर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने अलार्म को स्नूज करते करते स्टॉप कर दिया, तो अलार्म क्लॉक को या फिर फोन को बेड के पास बिल्कुल मत रखिए, उसे रखिए कमरे के दूसरे कोने पर। जब सुबह सुबह वो चिल्लाएगा ना, तो आपको उठकर पैरों को जमीन पर रखकर उसे बंद करने जाना ही पड़ेगा, और इतना टाइम आपके लिए काफी होगा ये समझने के लिए कि आज सुबह जल्दी जगना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मान लें उसके बाद भी आकर के आप लेट गए, तो भी कम से कम कुछ कदम चलना तो हो जाएगा ना, तो आपकी हेल्थ आप भी खुश, और अगर आपको उसके बाद

तो आपको क्या करना चाहिए? एक छोटा सा है कि ये कि अगर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने अलार्म को स्नूज करते करते स्टॉप कर दिया, तो अलार्म क्लॉक को या फिर फोन को बेड के पास बिल्कुल मत रखिए, उसे रखिए कमरे के दूसरे कोने पर। जब सुबह सुबह वो चिल्लाएगा ना, तो आपको उठकर पैरों को जमीन पर रखकर उसे बंद करने जाना ही पड़ेगा, और इतना टाइम आपके लिए काफी होगा ये समझने के लिए कि आज सुबह जल्दी जगना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मान लें उसके बाद भी आकर के आप लेट गए, तो भी कम से कम कुछ कदम चलना तो हो जाएगा ना, तो आपकी हेल्थ ऐप भी खुश, आप भी खुश। और अगर आपको उसके बाद नींद नहीं आई, तब तो बस बल्ले ही बल्ले है ना।

मीठे बोलने वाले लोग कम प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. बट यस, ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो मीठी मीठी बातें आप बोले ना, वो सच बोले. ऐसा भी कई बार होता है कि लोग यूं ही झूठी मूठी कुछ भी मीठा मीठा बोलते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सच्चा दोस्त कौन है? सच्चा दोस्त है वो जो कि कभी अगर कड़वा भी लगे तो भी अपने दोस्तों को सच बोलकर दिखाए. 3:34 और ठीक 22 सेकेंड्स हो रहे हैं. आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम सतरंगी दुनिया. और आज ज्योति लेकर आई है आपके लिए कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो कि सुनने में कितने भी आसान क्यों ना लग रहे हो, बट यस, जिंदगी को आसान करने में बहुत इफेक्टिव है. गुलाबशाह सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए. आपकी तबीयत ठीक नहीं है ये जानकर अच्छा नहीं लगा भाई, अपना बहुत ध्यान रखिए. नीलू जी, मैंने आपका ईमेल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया. आप कैसे ऐसे सोच सकती हैं, कैसे ऐसे कह सकती हैं? आप हैं तभी तो हम लोग हैं, है ना? तो प्लीज़, अगर आपका ईमेल नहीं पढ़ा जा पाया तो उसकी वजह वो ढेर सारे ईमेल्स होते हैं जो कि हमारे दोस्त कई कई बार भेजते हैं, और इसी वजह से कभी कभी कोई कोई इम्पॉर्टेंट ईमेल भी गुम हो जाता है. लेकिन आप तो दोस्त हैं ना, समझती हैं, है ना? तो ये तो बात है इन ईमेल्स की. वैसे आपका अगर कोई ख़ास लाइफ हैक है तो मेरे साथ शेयर करिए. वैसे आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब काम टालने की आदत, सोचा कि जिम जाएंगे मंडे से पक्का 100%, लेकिन फिर मंडे को अरे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर वो दिन कभी आता ही नहीं है. और ये जो आदत होती है ये जिम जैसी बातों में नहीं होती, छोटी छोटी आदतों में भी होती है. और कई बार हम खुद ही नहीं समझ पाते कि अपने ब्रेन को कैसे डील करें जिससे कि काम टालने की आदत हमारी ख़त्म हो सके और हम भी सुलझे हुए हो सके, हम भी एक ऐसे इंसान के रूप में पहचान बना सके जिसका काम हमेशा अप टू डेट रहता है. तो अगर ये प्रॉब्लम है आपकी, एक छोटा सा लाइफ हैक है आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. लेट अस सी अगर आपके काम आ जाए. 3:36 और 20 सेकेंड्स आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ इन द प्रोग्राम सतरंगी दुनिया. स्टे ट्यून्ड.

3:40 मिनट हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की जो आदत होती है उसे कैसे डील किया जा सकता है इस बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मन में ठानना है कि आपकी लाइफ में ये टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स, और ये सब चीज़ें लिख करके अपनी टेबल के पास में कहीं पर रखना या कहीं पर पेस्ट करके रखना बहुत मदद करता है, ट्रस्ट में। और मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं और इसीलिए आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप कहाँ से शुरू करें, ऐसे में पेन लीजिए, डायरी लीजिए और एक टू डू यानी कि टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट में जो जो काम होते जाए उन्हें आप जब टिक करते जाएंगे ना तो आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा। खुद को तारीफ दीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए, फिर देखिए कितनी आसानी से काम करने का आपका मन भी करेगा और काम हो भी जाएंगे। और हाँ, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की मैं बात कर रही थी, काम को टालने की आदत की, तो खुद के मन को समझाइए, अच्छा बस थोड़ी देर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस से कहा गया है कि आज ये फाइल हो जानी चाहिए और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो आप बस लैपटॉप के सामने बैठिए और खुद को समझाइए 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। और कई बार ये जो 5 मिनट होते हैं ना, कैसे आगे बढ़ते जाते हैं और खट से काम हो जाता है, हमें खुद भी रियलाइज नहीं होता। इन द सेम मैनर, अगर आपको लगता है कि ये जो जिम जाने वाली आदत है, कुछ नहीं, सुबह किसी तरह उठ करके सिर्फ आप शूज़ पहन लीजिए और ये सोचिए जिम नहीं, चलो थोड़ा सा टहल ही लेंगे, पर जब वो टहलने की आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, वॉक की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कैसे आपका ब्रेन आपको प्रिपेयर कर देता है कि जब इतना किया है तो चलो भाई जिम ही हो लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कहूंगी। अब भाई हम सब इंसान हैं और इंसान परफेक्ट थोड़ी ना होते हैं, हमारी ब्यूटी ही है हमारे इम्परफेक्शंस में, है ना। जितेंद्र नामदेव जी का भी ईमेल आया है मेरे सामने, ये लिख रहे हैं अच्छी जानकारी और गीत भी अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। कन्नौधी शहडोल से इन्होंने ईमेल किया, इतनी दूर से बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप सबकी भी लाइफ के अगर ऐसे कुछ हैक्स हैं, छोटे छोटे आसान आसान, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास अच्छा खासा वक्त बचा हुआ है।

और अब एक और हैक, एक बड़ी कॉमन सी लत है, एक बड़ा कॉमन सा एडिक्शन है आज के टाइम पे, फोन की लत। आप कहीं भी जाइए, कई बार तो आप सब्जी वाले भैया जी से कहते हैं, भैया जी आलू कैसे दिए, और भैया जी कोई हुए होते हैं रील्स देखने में। किसी शॉप पर जाएं, कभी कभी हमारे प्यारे ऑटो वाले भैया जी से बात करें या कुछ भी करें, आपको लगेगा वो किसी दूसरी ही दुनिया में, क्योंकि वो एक के बाद एक रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब ऐसे रील्स के लती हमारे घरों में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घरों के बाहर ही होते हैं। कई बार इंसान चाहता है कि इस लत से छुटकारा मिले, लेकिन पता नहीं कैसे। तो ऐसे में एक छोटा सा हैक, अगर आपकी फोन की लत बिल्कुल नहीं छूट रही है और आप अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके या फिर नींद को भी किनारे करके बार बार रील्स को ही स्क्रॉल करते रहते हैं, तो एक काम करिए, अपने फोन की स्क्रीन की सेटिंग्स में जाइए और वहां पर ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ऑन कर दीजिए। फिर से सुनिए, फोन की स्क्रीन की सेटिंग में जाइए, ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट ऑन कर दीजिए। जहां ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी आपकी स्क्रीन, वहां इंस्टा का, एफबी का वो ग्लैमरस लुक गायब हो जाएगा। हो सकता है आपको धीरे धीरे रील्स बोरिंग लगने लगे और इस तरह से आपका स्क्रीन टाइम खुद ब खुद कम हो जाएगा। ट्राई करके देखिए, वैसे कहा जाता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो एक बार ट्राई तो किया ही जा सकता है। वैसे किसी भी लत, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर

विजय प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने मन को समझाना कि मैं कर सकता हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल कर सकते हैं. नीलू शर्मा जी का एक और ईमेल आ गया है. लिख रही हैं कि मुझे आलस नहीं है, कोई काम करती हूँ तो तुरंत करती हूँ, काम टालने की आदत तो बिल्कुल नहीं है. इसीलिए मेरे पापा मुझे राजा बेटा कहते हैं क्योंकि मुझे आलस नहीं आता है. तो जी, आलस अगर ज़िंदगी से दूर हो जाए, या ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम शेयर कर रहे हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स पर हम विजय प्राप्त कर लें, तब हमारी भी ज़िंदगी हो जाएगी कुछ ऐसी ना, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका.

अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बड़ी टेंशन है जिंदगी में, बड़ी समस्याएं हैं भाई, क्या किया जाए, हर तरह की मुसीबत आन पड़ी है सिर्फ हमारे ही ऊपर। तो भाई ऐसा सोचने वाले भी आप अकेले नहीं है। एक छोटा सा हैक आपको बताती हूँ, जब आप बहुत परेशान महसूस कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उस वक्त एक पेपर लीजिए और पेन लीजिए और अपनी समस्या को क्लियर शब्दों में, मतलब स्पष्ट शब्दों में लिखने की कोशिश करिए कि दरअसल आपकी समस्या है क्या और इस समस्या की वजह से आपका नुकसान क्या हो सकता है। आप पाएंगे कि दरअसल जो प्रॉब्लम्स जिनके लिए आप हमेशा ओवरथिंक करते रहते हैं, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। हम सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अपना टाइम लेकर धीरे धीरे खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो अभी से क्या टेंशन लेना है ना। और हाँ, एक और भी बात, अगर रियल प्रॉब्लम्स भी हैं ज़िंदगी में और आप बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा हैक अपनाने की कोशिश करिए। अपने चारों ओर देखिए और सोचिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी जीने को तैयार हो जाएंगे, और आप हैं कि उन अच्छी अच्छी बातों को छोड़ करके सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे हैं जो शायद वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएं, है ना। तो बस इसी नोट के साथ ज्योति कहते हैं आपसे टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कोई भी प्रॉब्लम इस जिंदगी से बड़ी कभी नहीं होती, और ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं ना, यही तो हमको मोटिवेट करते हैं जिंदगी की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। कहते हैं ना कि कुछ खट्टा ना हो तो मीठे का स्वाद कैसे आएगा, राइट। तो बस इसी के साथ ज्योति चलती है कहते हुए टाटा बाय बाय। अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाले हैं दो लोग, दो आरजे जो कि बिल्कुल धूम मचाने वाले हैं। सरप्राइज क्या है उनकी आवाजों के साथ ही आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हमारे लिए बहुत कीमती है। यू एक्चुअली मैटर टू अस। तो मुस्कुराते रहिए, थिरकते रहिए, खुश रहिए और आहू आहू आहू करते हुए जिंदगी को सेलिब्रेट करते रहिए।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री सिंह ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि श्री राव ने भारत की आर्थिक यात्रा को नई दिशा दी और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में आज पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए खराब हैंडपंपों की प्राथमिकता के आधार पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों एवं मार्गों की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर विशेष बल दिया। आज से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज सीतापुर जनपद में जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्वास्थ्यकर्मियों से पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही अभिभावकों से अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पोलियो की खुराक पिलवाकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में आज सुबह एक कोल्ड स्टोरेज इकाई में आग लग गई। पुलिस के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कई जिलों में तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि बलिया, प्रतापगढ़, आगरा, मथुरा, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी सहित कुछ जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा तथा 60 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं प्रयागराज, जौनपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर और गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में बिजली चमकने और हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है जगह,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
7: धड़कन लखनऊ की।
8: चार बजकर 5 मिनट साथ में कुछ सेकंड्स से मैं आ चुका हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम यूथ वे।
9: हम भी है जोश में,
8: बिल्कुल आप भी जोश में हैं, हम भी जोश में हैं, लेकिन इस जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना है।

0: तो बस ढेर सारी बातें होंगी, उन बातों के साथ होंगी कि किस चीज से हमें अवेयर रहना है, कैसे अवेयर रहना है, क्योंकि आने वाला दौर क्या कहता है, बहुत कुछ कह जाता है, एआई का दौर है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी की बात जरूर होगी, कैसे होगी, कैसे अपने आप को रखें हम सिक्योर, ये सारी बातें आज मेरे यानी जमशेद के साथ।
1: हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: बोलने को तो ढेर सारी बातें बोली जा सकती हैं, ढेर सारे कॉल्स आते हैं, कितनी बार आते हैं, कई प्रमोशन के नाम पे कॉल आ जाते हैं। भाई आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, भाई साहब आपके लिए ये ऑफर है, भाई साहब आपके लिए वो ऑफर है, ढेर सारे कॉल्स आते हैं। कभी गिनिएगा, अपने फोन को देखिएगा, और जिन्होंने उस नंबर को स्पैम में डाल दिया है या ब्लॉक कर दिया है, तब भी एक रेड लाइन आती है और ये बताती है कि ये कॉल आपके लिए है या ये कॉल आपके लिए नहीं है। और भाई अब तो एआई का जमाना है, किसी भी शख्स का कोई भी क्लोन तैयार किया जा सकता है। आपने कुछ भी नहीं कहा, आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके किसी को भी पहुंचा दिया गया। ये है एआई, यानी कहीं ना कहीं फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी मौजूद है इसमें, और उसमें हमें रहना है अवेयर। क्योंकि एआई का मतलब ये नहीं है सब कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, इट इज पॉजिटिव थिंग, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नुकसान भी कर रही हैं। मैंने क्लोनिंग की बात की, गौर किया आपने? एक गाना आया भाई, सैयारा तू तो बदला नहीं है, सुना? हाँ, ये गाना नई आवाज में, लेकिन उसी आवाज को हमने देखा कन्वर्ट होते हुए किशोर साहब की आवाज। किशोर साहब ने ये गाना कभी नहीं गाया, लेकिन उनकी आवाज में ये गाना आज भी घूम रहा है, तैर रहा है। कैसे साहब? एआई से। तो इसी तरह से ये तो एक गीत की बात हो गई, क्या आपकी आवाज का क्लोन नहीं बन सकता? गौर कीजिएगा, कितनी बार आप अपनी आवाज किसी को देते हैं और गाहे बगाहे उसमें आप अपने पासवर्ड भी बता देते हैं, अपने कोड भी बता देते हैं, वो सारी बातें भी बता देते हैं जो आपको नहीं बताना चाहिए। इसलिए ठीक है, मोहब्बत है, एआई से मोहब्बत है, आने वाले वर्क से मोहब्बत है, लेकिन थोड़ा सा वह रहिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए।

शुक्रिया मेहरबानी करम, लेकिन जब फायदे की बात हो तो शुक्रिया मेहरबानी करम जरूर कहना चाहिए, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर आपके पास बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? इसलिए कहीं ना कहीं पते की बात आप तक पहुंचाई जा सके, आपको बताया जा सके कि किन चीजों में आपका फायदा है, किन चीजों में आपका नुकसान है। आज है संडे का दिन, कई सारी कॉल्स आई होंगी, मैंने कहा ना, और इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, साइबर सुरक्षा।

सुरक्षा, क्या है साइबर सुरक्षा? सोचा कभी आपने? क्या सिर्फ कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क, यही सारी चीजें, और इन्हीं पर आधारित होती है साइबर सुरक्षा? या इन्हीं पर जो अटैक्स होते हैं, जो हमले होते हैं, उनको आपको पूरी तरह से कोशिश करके नाकाम कर देना है, यही है साइबर सुरक्षा? देखिए, अहम तो यही है, कई तरह के मालवेयर टहलते रहते हैं, कई तरह के वायरसेस टहलते रहते हैं, कब आपके डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं कतई पता नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब फाइल हमारी करप्ट होती, पता तो तब चलता है जब हमारा डेटा हैक हो जाता है, पता तो तब चलता है जब हमारी चीजों का दुरुपयोग होने लगता है, मिसयूज होने लगता है। और इसीलिए जो साइबर सिक्योरिटी है, यानी साइबर सुरक्षा है, ये जो अल्फाज है, जो शब्द है, काफी काम का साबित होता है तब जब हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं जो आधारित होता है कंप्यूटर से, जो आधारित होता है मोबाइल पर। चलिए, भी ढेर सारी बातें होंगी और साथ में भी कुछ देर के बाद रोजगार समाचार भी आप तक पहुंचेंगे, तो इन सब चीजों के बीच ये गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगा।
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, फिटर स्ट्रक्चरल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, पेंटर जनरल, पाइप फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट, वुडवर्क टेक्नीशियन और वेल्डर। ये रिक्तियां वर्ग क और वर्ग ख दोनों के लिए हैं। वर्ग ग की रिक्तियां हैं रिगर और वेल्डर। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट mazgaondocs.in। वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं करियर अनुभाग में अप्रेंटिस पर उपलब्ध नियम और विनियम। NTPC लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। विजिटिंग कंसल्टेंट डेंटल और विजिटिंग कंसल्टेंट ENT। विजिटिंग कंसल्टेंट्स की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार सीधे साक्षात्कार के लिए दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच विंध्या अस्पताल NTPC विंध्याचल जिला सिंगरौली में उपस्थित हो सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल।

0: पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
4: पुरानी जींस और गिटार।
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।
4: है जगा।
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल।

0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है रते आशिकी जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: चार बजकर 35 मिनट 60 में कुछ सेकंड्स से प्रोग्राम यूथ वेव में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं आपसे एआई और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो कि बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है, बेहद अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का। जी मोबाइल की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर लैपटॉप की बात कर रहा हूं और उसके नेटवर्क की बात करूंगा मैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी क्या होता है, ये क्या होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे, कोई भी मैलवेयर या कोई भी जो वायरस होता है वो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में आ जाता है और फिर उन सभी फाइलों को करप्ट कर देता है। मैंने देखा है कि आप अगर अनसिक्योर कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपनी पेनड्राइव वगैरह लगाते हैं तो अचानक से पेनड्राइव आपकी करप्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो आपका जो डाटा होता है वो ख़त्म होता जाता है और एक दौर ऐसा आ जाता है कि वो पेनड्राइव आपकी पूरे काम की नहीं रहती, यानी आपका डेटा पूरी तरह से खराब हो जाता है। और नेटवर्क सुरक्षा एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिससे हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को कोई भी घुसपैठिया हो या कोई भी ऐसा वायरस हो उससे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, फिर चाहे वो कैसा भी हो, अपने उपकरणों को खतरों से बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए भी एक सुरक्षित एप्लीकेशन की जरूरत होती है। मैं बात कर रहा हूं पूरी तरह से जो एंटीवायरस होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो चाहे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, किस तरह से आप कौन सा सिक्योरिटी वाला सिस्टम लेते हैं, एंटीवायरस लेते हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से वक्त आगे बढ़ रहा है उसी तरह से जो वायरसेस हैं उनकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है। पहले आसानी से ख़त्म हो जाया करते लेकिन अब तो एक से बढ़कर एक एक्टिव वायरसेस हैं और किस फाइल पर उन्हें कैसे अटैक करना उनको ये भी मालूम होता है। तो इसलिए जो बेहतरीन एंटीवायरस हो या सुरक्षित जिसको कह सकते हैं एंटीवायरस हो उसको आपको देखना है। ये नहीं कि सब लोग कहते ना कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हमने तो ऐसे ले लिया कि भाई सस्ता है काम कर रहा है, नहीं, आपको ये देखना है कि कहाँ तक आपका डेटा है, कितना सुरक्षित है और किस तरीके के एंटीवायरस की आपको जरूरत है, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह की डिवाइस है, उसको किस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत है, ये भी देखना आपको है, तब जाकर आपका सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। और गीत आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद फिर होती है बात, बने रहिए मेरे यानी जमशेद के साथ इन प्रोग्राम यूथ वेव।

अच्छा एक बात बताइए कि दिन भर में आपके पास कितने फोन कॉल्स आते हैं, डेटा से संबंधित या फिर क्रेडिट कार्ड से संबंधित या किसी और तरह से, कैसी अनवांटेड कॉल्स आती हैं आपके पास, कभी गौर किया? और कितना उन कॉल्स को आप इंटरटेन करते हैं? बस यहीं पे तो हम बात कर जाते हैं कि हमारे पास कॉल आती है और हम उनको इंटरटेन करने लगते हैं, चीजों को बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, ये बिना सोचे समझे कि हमारा बोलना या हमारा समझाना कितना घातक होगा, कितना नुकसानदायक होगा हमारे लिए, ये कभी नहीं सोचते हैं, वही बस बोलते चले जा रहे हैं साहब। तो ये सारी बातें भी जरूरी हैं, खासकर हम साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, जब इस तरह की अनवांटेड कॉल्स आपके पास आए उनको किस तरह से आपको हैंडल करना है ये भी आपको देखना है, किस तरीके से आपको समझाना है ये भी आपको देखना है, और ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो कंपनी है आपके यहाँ, कोई भी अगर वाईफाई लगा है उसके लिए कॉल्स आ रही है, या आपने सिम ले रखा है उसके लिए कॉल आ रही है, या आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है बैंक से कॉल आ रही है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है। और आजकल तो आपको लोन देने की ढेर सारी कॉल आ रही है, भाई साहब पैसा ले लीजिए, और आप उसको उठाते हैं कॉल को और उसको बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इस गीत को सुनने की भी जरूरत है, क्योंकि वक्त तेजी से आगे बढ़ता हुआ 4:44 हो चुके हैं। जमशेद हूं आपके साथ।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: वक्त बढ़ रहा है और वक्त के साथ कई सारी चीजें बदलती जा रही हैं। इसी तरह से साइबर खतरे का पैमाना भी दर बदर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो साइबर खतरा तेजी से विकसित हो रहा है लगातार साल दर साल। अगर हम साल 1900 की बात करेंगे या फिर साल 2000 की बात करेंगे या 2019 की बात करेंगे तो लगातार एक साल बढ़ता है, खतरा आगे बढ़ जाता है। और कई ऐसे संस्थान हैं, चाहे हम चिकित्सा सेवाएं कर लें या फिर हम सार्वजनिक संस्थान जो हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो है साइबर सिक्योरिटी का मैटर सामने आया है।

और लगातार जो दायरा है उसको बढ़ने की संभावना को देखते हुए साइबर सुरक्षा के समाधानों पर ग्लोबली जो खर्च है वो लगातार स्वाभाविक रूप से बढ़ता जा रहा है। यानी अगर हम बात करेंगे तो 2023 में 188.3 अरब डॉलर था ये खर्च, और अगर 2026 तक हम बढ़ते बढ़ते आए हैं तो वैश्विक स्तर पर 260 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च होने का अनुमान है। और कई तरह के प्रभावी कदम उठाते हैं लोग, आप भी उठा सकते हैं। अगर हम कई सारी कंपनीज की बात करेंगे, कई सारे संगठनों की बात करेंगे, तो कई सारे इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपनाते हैं कि किस तरह से इस खतरे को ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके। लेकिन हमें कोशिश करते रहना है लगातार।

बिल्कुल, धूम मचाने के लिए किसी ने नहीं आपको मना किया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अवेयर रहिए। तभी कहते हैं ना, जब आप अवेयर रहेंगे तो चीज़ों को कायदे से हैंडल कर सकते हैं, फिर वो साइबर सिक्योरिटी हो या एआई का दुरुपयोग हो या एआई के फायदे हो, ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल 4:46, माफ कीजिएगा 56 मिनट हो चुके हैं और साथ में कुछ सेकंड्स भी हैं। मुझे यहाँ से लेना पड़ेगी इजाजत, एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद टॉप 10 यानी काउंटडाउन शो। कौन आगे रहा, कौन रहा पीछे, किस गीत ने मारी है बाजी, वो सारी बातें होंगी आपके साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत, होती है मुलाकात कुछ देर के बाद, बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के बीच आज राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान हुआ। सेशल्स के प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास और हरित विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गॉर्जन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उनके साथ साथ भारत के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जनपद में आज 548 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्मार्टफोन, आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को विकास, सुरक्षा और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री पाठक ने मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए वाराणसी से सेवादारों और श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज चंदनबाड़ी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काशी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। समिति के अनुसार श्रद्धालु पहले अमृतसर पहुंचेंगे, जहां से जम्मू होते हुए पहलगाम तक का सफर तय करेंगे। इसके बाद पवित्र गुफा तक की यात्रा पैदल पूरी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: और आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत, जिनसे वार्ता की है आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा ने।
1: कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मानसून के आने का समय हो गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ

0: देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
1: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यद्य छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई है। और जहां तक मानसून की बात है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा, और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
0: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, ये इसका कारण क्या है?
1: देखिए, मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो। मैस्करन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है, वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है, उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है दाब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटी साइक्लोन या तिब्बतीयन चक्रवात, वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण कि इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
0: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में, और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं, और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
1: जी बिल्कुल। देखिए, जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए, दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा, अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है। और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी। और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है, जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है। हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार
0: जी।
1: तो, लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना।
0: सर, अलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
1: एलिनो का भी योगदान है। एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का। और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को हम वार्म फेज ऑफ इंसो या एलिनो बोलते हैं। और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है, लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर

0: एनोमलस एंटी साइक्लोन बनता है और जिसके कारण की कन्वेक्शन यानी कि जो ये कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का दोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है उस पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एल्निनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एल्निनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ये भी एक कारण है के कारण की सामान्य से कम वर्षा होने की सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना
0: जी
1: रहेगा?
0: जी बिल्कुल। देखिए इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं। तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में मॉनसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब जाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
6: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
7: है रते आशिकी जगा
6: फिर रात को फुर्सत के वो पल
8: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
6: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो

0: सुनते रहिए FM Rainbow 100.7 MHz FM Rainbow धड़कन लखनऊ की
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow
2: धड़कन लखनऊ की
3: और हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि जब भी किसी से कोई वायदा करो तो उस वायदे को पूरा जरूर करो यकीन जानिए जब वादे टूटते हैं ना तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछे जिससे वादा किया गया कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था होती है मुलाकात काउंटडाउन शो में यानी टॉप 10 में और आज है इतवार का दिन यानी रविवार का दिन और रविवार के दिन काउंटडाउन कौन आगे है कौन पीछे है किस गीत ने बाजी मारी है सारी बातें करते हैं ये नए गानों की बात कर रहा हूं मैं वैसे तो टॉप 10 आप रोज सुनते हैं लेकिन आज का टॉप 10 होता है कुछ खास तो चलिए गाना नंबर 10 कौन सा है इस रविवार रहिए मेरे यानी जमशेद के साथ

पर्दे पर सलमान खान और रश्मिका, सिकंदर का यह गीत आज बज रहा है नंबर 10 पर। सिकंदर नाचे।

और गाना नंबर 10 के बाद बारी आती है गाना नंबर 9 की तो गाना नंबर 9 कौन बन रहा है गाना नंबर 9 है कॉकटेल 2 का ये गीत

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।
6: पांच बजकर 26 मिनट 60 में है कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ काउंटडाउन शो टॉप 10 में। और एक गाना भी आपने सुना, कम ऑन बेबी फ्रॉम द मूवी बंदर, और एक बार और दूसरा गीत जो आ रहा है उसी फिल्म से है, यानी पायदान नंबर कौन सा है, बिल्कुल पायदान नंबर 7 पर ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: फिर मत।
1: अरे बात होती है पायदान नंबर 6 की, तो पायदान नंबर 6 पर वो गीत जो पिछले हफ्ते था पायदान नंबर 5 पर, एक पायदान की तरक्की करता हुआ फ्रॉम द मूवी धुरंधर का ये गीत।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
2: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की।
6: पांच बजकर 34 मिनट 7 सेकंड्स में हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम FM टॉप 10, जहां पर है 10 खूबसूरत से गीत, काउंटडाउन शो। कौन सा गीत आगे रहा, कौन सा गीत हुआ पीछे, ये सारी बातें इस काउंटडाउन शो में। और अगला गीत जो आपके सामने बजने वाला है, वो गीत कई हफ्तों तक लगातार रहा नंबर एक की पोजीशन पर, लेकिन धीरे धीरे खिसकता हुआ आ चुका है नंबर 5 की पोजीशन पर। धुरंधर का वो गीत आज भी मैं कहूंगा सर चढ़कर बोल रहा है। मधुबंती बागची की आवाज। और अगर हम गीत की बात करेंगे तो वो गीत है ये।

और चलते चलते हम आ गए पायदा नंबर चार की तरफ। और पायदा नंबर चार पर जो गीत बज रहा है वो है फ्रॉम द मूवी 80 का गीत मन हवा। ये आया आपके रेडियो सेट पर मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज के साथ ये गीत।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
2: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की।
6: और अब बारी आती है पायदा नंबर तीन की। तो पायदा नंबर तीन पर बज रहा है एक दिन मूवी का टाइटल ट्रैक। अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज और इरशाद कामिल के हैं बोल। गाना ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: 5:52 साथ में कुछ सेकंड्स में हूं जमशेद, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10 और टॉप 10 में पायदान नंबर 2 पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर।
6: सर तुम्हारे बारे में सोचता हूं। एक
5: फ्रॉम द मूवी एक केस सितारे
6: की हिम्मत होगी कुछ लिखना चाहता हूं।

और अब बारी आ गई है कौन बनेगा नंबर वन गीत। तो चलिए मैं बताता हूं धुरंधर का वो गीत जो इस बार बना है नंबर वन, यानी पिछले हफ्ते था नंबर दो पर और इस बार एक पायदान खिसक कर आ गया है नंबर वन की पोजीशन पर। तो ये रहा फ्रॉम द मूवी धुरंधर का गीत गहरा हुआ। और टॉप टेन से मैं लूंगा आपसे इजाजत, कुछ देर के बाद प्रोग्राम शाम-ए-वद में फिर होगी आपसे मुलाकात। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ। शाम-ए-वद में क्या है खास, इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को मजबूत करना, आजीविका संवर्धन एवं विकसित ग्राम पंचायतों का निर्माण और पारदर्शी डिजिटल प्रणाली बनाना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और आजीविका को यह योजना एक नई गति प्रदान करेगी। वीबीजी रामजी योजना का 2 जुलाई को राज्यव्यापी जन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव में सहभागिता की। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को HPV वैक्सीन तथा 10 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने माताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन अवश्य लगवाएं तथा 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जाँच एवं कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज के प्रसारण में देशभर में हो रहे नवाचारों और जनभागीदारी के प्रयासों को प्रमुखता से रखा गया। वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े संकट के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से कार पूलिंग अपनाने की अपील की। बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री को देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन जांच होगी। देश के विद्यालयों को नए सत्र में खोलने के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने हीट वेव के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षकों के लिए विशेष दिग्दर्शिका जारी की है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर तैयार दिग्दर्शिका में प्रत्येक विद्यालय में हीट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक उपचार, छायादार परिसर, स्वास्थ्य जागरूकता और आपातकालीन तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं ऑरेंज और रेड हीट अलर्ट के दौरान बाहरी गतिविधियां स्थगित करने के निर्देश देने के साथ ही अभिभावकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned. 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, जगह
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं हूं जमशेद, आपके साथ एक बार फिर वादे के मुताबिक, और प्रोग्राम शामे अवल। मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या, पूरा यकीन है कि आपने आज का दिन यानी रविवार का दिन बड़ी ही खूबसूरती के साथ गुजारा होगा और आने वाले पल भी खुशियों से भरे होंगे। इसी कामना के साथ प्रोग्राम शामे अवल की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ। बने रहिए जमशेद के साथ।

6:12 में कुछ सेकंड्स प्रोग्राम चल रहा है शामे वद, जिसे लेकर आज मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ। और शामे वद में मैं बात कर लेता हूँ आज ही के दिन जन्मे यानी 28 जून 1976 को चिलाम ठीरी गढ़वाल में जन्मे थे जसपाल राणा, जो भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। साल 1995 के कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण जीतकर जसपाल राणा ने नया रिकॉर्ड बनाया था। भारत के 2 अन्य निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजी का इतिहास रचा था, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जसपाल राणा ने इस भरोसे की नींव रखी थी तो ये गलत नहीं होगा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने एशियाई, विश्व, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड कायम किए हैं। और अब इस गीत की बारी आपके रेडियो सेट पर, ये रहा।

0: और इस गीत को जारी रखेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के साथ।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी।

0: जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

6:19 हो चुके हैं साथ में कुछ सेकंड्स और वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ और अब से कुछ देर के बाद हम आपको क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है उसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक की हम अपडेट दे दें आपको। कुछ देर पहले हमारे विकास जी से बात हुई, कुछ दिक्कतें थी जो लाइन पर वो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया कि सारी जगहों पर ट्रैफिक जो है सामान्य तरीके से चल रहा है, लेकिन आज रविवार का दिन है तो लुलु मॉल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का लोड

लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर उधर आप निकल रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा, जाम को अवॉइड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपनी क्यू में चलने की, अपने लेन में, अपने साइड में चलने की। क्योंकि होता यही है कि हम जल्दबाजी में होते हैं और जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो ट्रैफिक अपने आप अव्यवस्थित हो जाता है। तो अव्यवस्था जो है ट्रैफिक की वो ना फैलने पाए, इसका हम खासा ख्याल रखें। और बाकी और इलाकों की अगर हम बात करें, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ट्रैफिक पूरी तरह से लगभग सामान्य रहेगा।

थंगा वेलू की, जिनका जन्म भी आज ही के दिन यानी 28 जून साल 1995 को सालेम जिला तमिलनाडु में हुआ था, भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के ऊंची कूद मुकाबले में मरियप्पन थंगावेलू ने स्वर्ण और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। मरियप्पन थंगावेलू ने 1.89 मीटर की जंप लगाते हुए सोना जीता, जबकि भाटी ने 1.86 मीटर की जंप लगाते हुए कांस्य को अपने नाम किया। मरियप्पन थंगावेलू, मुरलीकांत पेटकर जो कि तैराकी के 1972 हेजवर्ग और देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक एथेंस 2004 के बाद स्वर्ण जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। थंगावेलू और भाटी की इस कामयाबी के बाद अभी सभी पैरालंपिक खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं।

अब से कुछ देर के बाद यानी ठीक 6:30 बजे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम सुनेंगे और बाकी का कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन सकते हैं। तो बस आपसे मैं ये कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ और गीतों का ये सफर लगातार जारी रहेगा।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है रते आशिकी जगा
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
0: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

6:30 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ। और आज हम सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं, हालांकि आज रविवार है, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन कल का हम आपको जरूर बताएंगे। कल बीएससी का सूचकांक जो था वो बंद हुआ था 77,100.47, यानी 0.14 अंक की ऊंचाई छूते हुए बढ़त के साथ ये बंद हुआ था। और वहीं अगर निफ्टी की हम बात करेंगे तो 24,056 अंक यानी 0.14% अंकों के साथ ये बंद हुआ था, ये भी बढ़ोतरी में बंद हुआ था। और कल क्या होने वाला है ये तो कल जब खुलेगा सेंसेक्स, कितनी तेज भागेगा या कम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आने वाला है।

और एक छोटी सी बात कर लेते हैं, आज ही के दिन जन्मे निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 जून 1971 को हुआ था। एक भारतीय हिंदी फिल्म निर्देशक और निर्माता जिन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता है। तनुवेट्स मनु, रांझड़ा, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स और जीरो जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं आनंद एल रॉय।

सेंसेक्स की बात हो गई, निफ्टी की बात हो गई, और अब हम बात करेंगे सोने की। सोने वाले नहीं कि अभी जाएंगे सो जाएंगे, वो सोना नहीं, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड की बात करेंगे तो 24 कैरेट गोल्ड का अगर हम रेट देखेंगे तो 144,100 रुपये, वहीं अगर हम 22 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं तो 132,100 रुपये, ये रहा रेट। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10 ग्राम कितने का हुआ, या अगर कहिए तो मैं बता दूं 10 ग्राम कितने का हुआ। चलिए इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक जीरो आपको हटाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे तो 22 कैरेट गोल्ड यानी आपका हो गया 13,210 रुपये, सही कहा ना मैंने। वही अगर हम चांदी की बात कर रहे हैं तो 2,40,000 प्रति किलोग्राम रहा आज का रेट। तो अब आपको देखना है सोना कितना सोना है या चांदी कितनी सोनी है, चांदी कितनी चांदी, यही रहेगा ना। फिलहाल 6:50 साथ में कुछ सेकंड जमशेद हूँ आपके साथ, और ये ट्रैक आपके लिए आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

उसमें होगी फिर मेरी यानी जमशेद की मुलाकात। तो बस आपसे यही कहूँगा कि आप जल्दी से मिलाना शुरू कर दीजिए 2238852 या 2238845, और इन फोन नंबर के साथ आप 0522 जो लखनऊ का कोड है वो लगाना ना भूलिएगा। तो एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक और उसके बाद फिर होती है मेरी आपसे मुलाकात। बने रहिए जमशेद के साथ।

और जिस तरह से मोह मोह के धागे हैं, यही मोह मोह के धागे जो हैं हमारे और आपके साथ भी उलझे हैं, सुलझे हैं, और यही कारण है कि हमारा और आपका साथ इतना मजबूत है। देखिए, अभी न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम लोग होंगे, रेडियो पर नहीं होंगे, लेकिन न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आपकी आवाज़ लगातार गूंजेगी हमारे साथ, यानी जो अगला फोन इन प्रोग्राम है हेलो एफएम।

नमस्कार, सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जनपद में आज 548 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज प्रदेश भर में उत्साह के साथ सुना गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आगामी गणेशोत्सव पर पीओपी के स्थान पर मिट्टी से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियों को अपनाने की अपील पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज के प्रसारण में देश भर में हो रहे नवाचारों और जनभागीदारी के प्रयासों को प्रमुखता से रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मंडलायुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में मात्र कॉन्क्लेव में सहभागिता की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने माताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन अवश्य लगवाएं तथा 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जाँच एवं कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष में आयोजित किया गया। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत लगाए गए बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देश के विद्यालयों को नए सत्र में खोलने के साथ शिक्षा विभाग ने हीट वेव के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षकों के लिए विशेष दिग्दर्शिका जारी की है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इसके चलते दिन के तापमान में गिरावट महसूस की गई। उधर मौसम विभाग ने 1 से 2 दिन में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में तही हमारा अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: Entertainment और information रहेगा संग संग.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
6: Love you जिंदगी, Love you जिंदगी।
5: सुकून से भरा दोपहर।
7: पुरानी जींस और गिटार।
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जा।

0: सकता ये सफर
1: है रते आशिक जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
3: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
4: और कहता ना कि अगर शिद्दत हो अगर चाहत हो दिल में लगन हो तो वो काम होता जरूर है और शिद्दत और चाहत के साथ प्रोग्राम हेलो एफएम में किसी ने मिला दी है कॉल मैंने भी सोचा बात जरूर करूंगा रैंडम कॉल किसी की भी हो न्यूज के बाद सीधे कॉल पर होगी बात हेलो हेलो आवाज आ रही है सत्यम जी लग रहा है हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है हेलो हेलो हेलो सत्यम जी का कॉल लगा था शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है चलिए कोई दिक्कत नहीं अभी हम करते हैं किसी और से बात फिलहाल सत्यम जी ने जो गाना सुनना चाहा था वो मैं जरूर सुनाऊंगा और उन्होंने कहां से फोन किया था पूरी बात हमारी हो नहीं पाई थी तो चलिए गाना सुनते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन होगा अगला लाइन पर
5: हमें लगता है

0: मिले तुम।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है हमारी? बहुत स्लो आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ हेलो, हाँ आप थोड़ी सी आवाज़ आई। नाम बताइए अपना।
2: जी बृजेश सिंह टीपू, इटावा कैसरन बहराई से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सर नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: और सर कैसे हैं आप?
1: अभी तक तो फिलहाल बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं?
2: जी सर हम अच्छे हैं, हम अपने खेत को घूमने टहलने आए थे, गन्ना के खेत को।
1: हाँ
2: आपका कार्यक्रम सुन रहे थे, फिर हम फोन ट्राई करने लगे और कॉल लग भी गई। आपने सर रिसीव कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद के भाई, आपका प्रोग्राम है और आप ही लोगों के लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अच्छा गाना किसको सुनवाना चाहेंगे आप?
2: जी सर ये सुनने वालों को और आपको सर।
1: और कुछ कहना चाहेंगे?
2: और सर क्या कहना चाहेंगे?
1: चलिए आपका गाना आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर आ चुका है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं
1: जी? मैं यासिर अमीद बात कर रहा हूँ, उम्मीदों का शहर मियांगंज उन्ना से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम हेलो एफएम में।
1: थैंक यू।
0: और बताइए कुछ अपने बारे में। आज पहली बार हमारी लग रहा है बात हो रही है आपसे।
1: आपसे पहली बार हो रही
0: है जी,
1: बात हो रही है। बहुत इंतजार था।
0: जी जी,
1: इधर से इंतजार था
0: और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मैंने कहा ना, शिद्दत होती है, चाहत होती है अगर किसी चीज को पाने की, तो पूरी जरूर होती है ना।
1: बिल्कुल, ये तो एकदम सही है, लाइट है, एकदम सही।

0: और शिद्दत से आपने चाहा कि बात हो जाए। देखिए आपकी चाहत पूरी हुई और आपसे हमारी बात हो रही है।
1: बात हो रही है बिल्कुल।
0: और कुछ अपने बारे में बताइए।
1: मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, बस अभी साइड से आया ना, तो बस फोन शो सुन रहा था, तो हमने कहा चलो हम भी कॉल लगाए।
0: चलिए, और ये गाना गाना दिव्य शक्ति का आपने सुनना चाहा, किसको सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मुझे दिव्य शक्ति मूवी से सॉन्ग सुनना है, अजय देवगन अभी नहीं मूवी, दिव्य शक्ति मूवी से सॉन्ग सुना, कुमार सानू अलका याग्निक जी की आवाज में, गाने के बोले नहीं नहीं कभी नहीं तेरा साथ,
0: गुनगुना के गुनगुना के।
1: नहीं, मेरी
0: गुनगुनाइए।
1: इतनी अच्छी आवाज नहीं है ना।
0: चलिए चलिए, और किसको सुनाना चाहेंगे, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: एक दो नाम है अगर इजाजत दो तो।
0: बिल्कुल इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है
1: जी। नीलू शर्मा दीदी है रूपू चंदेला उन्नाव से, और रोशनी दीदी है चंडीगढ़ से, और मोहम्मद अमीन भैया है गंगागंज लखनऊ से, और फैज भाई।
0: चलिए, सभी को ये गाना आपकी तरफ से, सभी को।

0: और इसलिए हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फोन लाइन पर हमारे साथ कोई आ चुका है, बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा

0: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिसमें जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कार पूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद

0: में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा, जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने

अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और हमारा दिल भी नहीं मानता है, कुछ ना कुछ बात करने का दिल करता है आपसे। और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन सा बोल रहे हैं?
1: जावेद अख्तर बोल रहे हैं, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से।
0: जी बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम में।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आवाज को सुनकर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, मुझे भी आपकी आवाज सुन,
1: अच्छा कार्यक्रम भी आप लोग दे रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दे रहे हैं।
0: हाँ, मुझे भी आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, दिल बाग बगीचा हो गया बिल्कुल।
1: जी जी जी,
0: कभी बाग बाग होता है लेकिन मेरा बाग बगीचा हो गया।
1: बगीचा हो गया बिल्कुल, आम की फसल भी है तो बगीचा होना भी चाहिए।
0: तो आम की फसल में कौन सा आम आपके यहाँ बोया है इस समय, मतलब कौन सा है कुछ?
1: आम तो देखिए, वैसे तो हम लोग ज्यादातर आम पसंद करते हैं, ये जो चौसा आता है, एक दशहरी आता है। हाँ, ये दो आम बहुत खास तौर से हम लोग पसंद करते हैं, इसको खाते भी हैं।
0: दशहरी तो ढल गया समझ लीजिए जावेद भाई।
1: जी जी, दो मुझको जो अपने पसंद की बात मैं बता रहा हूँ।
0: जी जी जी, अब
1: बाकी तो बहुत सारे आम हैं।
0: हाँ, देसी लखनऊआ और कई सारी चीजें हैं ना, सफेदा है।
1: जी,
0: तो आपको ये पसंद है?
1: जी जी,
0: चौसा। और चौसे के बाद कौन सा आम आएगा?
1: अरे उसके बाद फिर सफेदा आता है, एक लेंगड़ा आता है। हाँ, बहुत सारे आम आते हैं,
0: कई सारी किस्में हैं।
1: हाँ, किस्में से बहुत सारी हैं।
0: चलिए, आपने गाना सुनना चाहा है जीना तेरी गली में।
1: जीना तेरी गली
0: तो
1: में,
0: कोई खास है जिसकी गली में जीना है?
1: नहीं, हम तो एफएम रेनबो की गली में इस वक्त जी रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और ज्यादा दिनों से जी रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, बस यही यही तो हम सुनना चाहते हैं।

0: आप लोग किस कदर मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, भाई यही खुशी है। तो चलिए आप तक पहुंचाते हैं गीत आपके रेडियो सेट पर। हाँ नाम ले लीजिए।
1: हाँ मोहम्मद फैज साहब हैं, रामपुर कटरा से हैं, और समा परवीन अंसारी जी हैं, और रिंकी पिंकी जी हैं, और साहिबा अंसारी जी हैं, इरशाद अहमद साहब आजमी हैं, और राजेंद्र यादव भारती हैं, राजेश कुमार वर्मा हैं मऊ से हैं, और बाकी जितने भी लिसनर सुन रहे हैं उनको ये गाना डेडिकेट है, खासतौर से आपको भी रहेगा।
0: चलिए बहुत शुक्रिया।

0: और बहुत दूर से हमारे पास कॉल लगाई है, देखते हैं कौन साहब हैं, बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं सर पाली प्याला, जिला होशियारपुर पंजाब से।
0: होशियारपुर पंजाब से कॉल लग गई है आपकी, और बताइए कैसे हैं आप?
1: सर आपका प्रोग्राम सुन के मेनू बड़ी खुशी होती है, लेकिन मेरा आज पहली बारी कॉल लगा है। तो मेनू 4 महीने हो गए आपका प्रोग्राम सुनते, तो आज मेरा पहली बारी कॉल लगा सर, बड़ी खुशी हुई आज मुझे।
0: चलिए, हमें भी बहुत खुशी हुई, इतनी दूर से आपने कॉल लगाया और हमारी आपकी बात हो रही है। और कुछ अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं टेलर का काम करता हूँ, कुर्ता पजामा और पैंट शर्ट लेडीज सूट सीता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और गाना किसको सुनाना चाहेंगे? गुरदास मान का गीत है सजना वे सजना, किसे सुनाना चाहेंगे आप?
1: हाँ, मेरा फ्रेंड है एक जलंधर से है, मेंटू चंदेल
0: जी जी,
1: उसका एक मेरे और भी अच्छे दोस्त आते हैं रिंकी और मिंकी, तो मेरी बेटी है राइमा, ये घर बैठी मेरा प्रोग्राम सुनती है।
0: क्या
1: पापा
0: बात?
1: आज फोन जरूर लगाना, ट्राई करना है, गाना सुनना है सजना वे सजना।
0: चलिए सजना वे सजना हम आपको सुनाते हैं, ये रहा रेडियो सेट पर।

0: तेरे शहर।
1: और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है, बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग जसदेव भाई।
1: गुड इवनिंग, कौन सा बोले, नाम बताएं।
2: मैं वही पुराना आपका नियमित श्रोता मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ, विलेज बलेहा, पोस्ट भारोली, गंगागंज, लखनऊ से। सर आप कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपका प्रोग्राम सुन के ना सर और भी बहुत अच्छे हो गए सर।
1: क्या बात है। और गाना आपने सुनना चाहा है फिल्म नागिन का, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरा जो बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है सर ये। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि आपके प्रोग्राम में 2000 से आपका कार्यक्रम सुनता हुआ आ रहा हूँ।
1: क्या बात है।
2: बहुत दिन से सर कॉल कर रहे थे, इस टाइम कॉल नहीं लग पा रही थी, लेकिन सर आज कॉल लग गई। जमशेद भाई आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाह रहा हूँ जो आपने मेरी कॉल रिसीव की सर।
1: बहुत शुक्रिया। और ये बताइए कि जो इश्क का असर है, किसका इसका इश्क का असर हुआ आपके ऊपर?
2: सर ये जो कहें तो सर सभी लोगों का सर।
1: नहीं, किसी का इश्क होता है स्पेशल होता है। देखिए उस इश्क की बात ही छोड़ दीजिए, वो इश्क की बराबरी कर ही नहीं सकता कोई। दुनिया का कोई भी बंदा आ जाए अगर कहे कि माँ बाप के इश्क की हम बराबरी कर सकते हैं तो कभी नहीं कर सकता। और खासकर माँ का इश्क तो बिल्कुल बच्चों के लिए कैसा होता है आपको पता ही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं कुछ नाम डेडिकेट करना चाह रहा हूँ सर।
1: ले लीजिए, सब नाम ही ले रहे हैं आज, बहुत सारे नाम एक साथ चल रहे हैं, ले लीजिए आप भी
2: जी। नाम लेने में आसानी हो जा रही।
1: बिल्कुल सब नाम ले डालिए, कोई दिक्कत नहीं।
2: मैं सबसे पहले हमारी समा परवीन अप्पी हैं जो कि सीतापुर मस्जिद के पीछे से, और हमारे यासिर हमीद भाई जो कि मियांगंज उन्नाव से, और बड़े भाई हमारे सूरज सिंह भाई जी
1: थोड़ा सा जल्दी
2: बहराइच से, और प्रहलाद कुमार कुशवाहा बांगर उन्नाव से, और सर एक नाम टूट रहा है सर।
1: ले डालिए, छोड़िए मत।
2: आपको
1: चलिए बहुत शुक्रिया। और ये गीत रहा आपका जो आपने पसंद।
2: फैज भाई को भी सर। हेलो,
1: चलिए फैज भाई, फैज भाई आप तक भी पहुंच गई बात।
2: मोहम्मद फैज भाई और रामपुर कटरा से, उनको भी सर।
1: चलिए

0: और मेरी नजर इस समय वक्त पर है, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। 7:48 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम में। और हमारे साथ है कोई फोन लाइन पर, कौन है बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नाम बताइए अपना।
1: जी मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से सर बात कर रहे हैं।
0: क्या बात है, हैदराबाद तेलंगाना से आपने हमें किया है फोन। और बताइए कुछ खास है, तेलंगाना का मौसम कैसा है? लखनऊ में तो सुबह
1: बारिश हो रही है यहाँ रुक रुक के सर, एक हफ्ते से
0: यहाँ तो थोड़ी सी बारिश हुई सुबह और फिर दिन भर गर्मी, वैसे ही एहसास दिलाया गर्मी का उसने।
1: जी सर, उधर तो यूपी में तो गर्मी हो रही है सर
0: बहुत जबरदस्त। अच्छा तेलंगाना में आम मिलते हैं क्या?
1: आम मिलते हैं लेकिन अब खत्म हो गए, अभी 15 दिन हुए खत्म हुए।
0: तो वो आम कितने खास होते हैं? वो आम कितने खास होते हैं बताइए? वो आम जो होते हैं तेलंगाना वाले, वो कितने खास होते हैं?
1: उतने खास नहीं होते हैं जैसे यूपी में होते हैं, वैसे नहीं होते। इधर के आम खट्टे बहुत होते हैं, पकने के बाद भी खट्टे रहते हैं सर।
0: जैसे लखनऊ का दशहरी आम है, मलियाबादी, वैसे आम नहीं होते।
1: बारंकी के हैं।
0: हाँ क्या बात है।
1: राजा कटरा अहमदपुर बारंकी के हैं सर।
0: अच्छा तो गाना ये आपने जो सुनना चाहा अक्सर इस दुनिया में, तो कोई दुनिया में कोई मिला आपको अनजाना जो अपना बना हो?
1: बहुत लोग बिछड़ गए।
0: अच्छा तो ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे आप?
1: ये हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, उनके नाम ले लें।
0: ले लीजिए नाम, तो आज सब ले रहे हैं, सब एक ही नाम ले रहे हैं, वही नाम आप भी लेंगे?
1: नहीं नहीं, मोहम्मद तालिब भाई हैं राजा कटरा के, मेरे बड़े भाई हैं, और साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, बबीता राव दीदी और रोशनी रावत दीदी चंडीगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रही।
0: चलिए चलिए बहुत शुक्रिया। और ये गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना।
1: जी सर नमस्कार, गजराज लोधी बात कर रहा था, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है, बड़े दूर दूर से आप लोग कॉल करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। अभी पंजाब से कॉल लगी थी, अब मध्य प्रदेश से कॉल लगी है। कितने दूर दूर से
1: हम बहुत ध्यान से प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत मेहनत करते हैं फोन लगाने के लिए, मगर बहुत मुश्किल से फोन मिलता है आपका।
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आप इतनी मेहनत करते हैं।
1: नहीं सर, हमारी खुशनसीबी है कि हमारी आज फोन मिल गई और आपसे बात हो रही
0: है। और ये जो आई मिलन की रात का गीत आपने सुनना चाहे, किसे सुनवाएंगे?
1: ये सर हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं और केसरी सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी
0: हैं,
1: और हमारे राजस्थान से पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, और पंचाराम जी हैं, और पुष्कर भाई हैं, और जितने भी लोग अभी फिलहाल में सुन रहे हैं सभी के लिए, और हमारी बहन है वो दो, रिंकी और पिंकी जी, और पूनम जी है कानपुर से।
0: चलिए सभी के लिए ये गीत।

0: और चलिए बात करते हैं आज के आखिरी कॉलर से। 7:56 हो चुके हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना।
1: हाँ जी, मैं ओंकार काटकर बात कर रहा हूँ, सोलापुर जिला, महाराष्ट्र, पंढरपुर, गारडी गांव है मेरा सर जी।
0: क्या बात है, महाराष्ट्र से आपने सोलापुर से फोन किया है।
1: बहुत दिल से आपका मैं कार्यक्रम सुनता हूँ सर।
0: नहीं, बड़ी खुशी होती है, इतनी दूर दूर से आज हमें कॉल आए हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग हमें सुनते हैं।

0: और वाकई ये बड़ी खुशी की बात
1: प्यारी
0: है।
1: आवाज है ना, मीठी आवाज है ना, उसमें से बहुत बहुत
0: बहुत
1: खुशी आ रही है
0: बहुत
1: सुन के हमारे को।
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
1: हम खूब प्यवान है सर जी, हमारा किराना दुकान है।
0: जी।
1: तभी हमारा किराना दुकान 88 साल का था। 88 साल में जो मेरा दुकान था ना वो बहुत छोटा था, उसमें हम रेडियो सुनते थे। तीन भाई हैं हम, उनका नाम लेना चाहता हूँ मैं,
0: बिल्कुल, नाम नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए।
1: ज्योति काटकर, शक्ति काटकर, और मेरा नाम है ओंकार काटकर।
0: जी। और बहुत खुशी, कभी शोलापुर आऊंगा तो मुलाकात जरूर करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए गीत अपने रेडियो सेट पर। और इसी के साथ अपने दोस्त जमशेद को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर किस रोज किसी प्रोग्राम में जरूर होगी मुलाकात। तब तक खुदा हाफिज, शब बखैर, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखेगा।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास को गति देने और ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर शासन और मजबूत करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहर की टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने, कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने

को के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान मामले में पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों के घरों पर आज छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज वाराणसी में पर्यटन एवं आवास विकास विभाग की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 21 लाख रुपए की लागत से वार्ड अलईपुरा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। काशी के प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक कुंडों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

एक बार फिर नमस्कार आदाब। वक्त हो चला है रात के 8:05 और कुछ सेकंड्स, और ये वक्त कहता है अपने प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है आबशार। कहते हैं कि कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं एहसासों से पहचाने जाते हैं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से कोई बहार आई। इन अल्फाजों के पीछे वो जज्बात छुपे हैं जिन्हें दिल महसूस तो करता है मगर कह नहीं पाता। और शायद यही तो खूबसूरती है गजलों की, ये उन बातों को भी आवाज दे देती है जो हम अक्सर कह नहीं पाते। तो आज की इस खामोश सी रात में अपने दिल के किसी पुराने कोने को थोड़ा सा रोशन कीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका अपना आबशार, जहां मिलेंगे कुछ अल्फाज, कुछ यादें और कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आप ही की हो। फिलहाल प्रीति है आज आपके साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

कहते हैं कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। मोहब्बत की कहानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं जिनमें कुछ बातें लफ्जों में होती हैं और कुछ खामोशियों में छुपी रह जाती हैं। शायर बशीर बद्र साहब की ये पंक्तियां शायद उसी एहसास को छूती हैं। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं मोहब्बतों की ये कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो और जो सुना नहीं वो कहा करो। कितनी खूबसूरत बात है ना कि कभी किसी की खामोशी को भी सुन लिया जाए, किसी की आंखों में छुपी बात को भी समझ लिया जाए, क्योंकि हर एहसास को आवाज की जरूरत नहीं होती, कुछ जज्बात बस महसूस किए जाते हैं। आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत सफर जिसका नाम है आबशार।

कहते हैं आँखों में छुपे राज पढ़ना आसान नहीं होता, आँखों में छुपे राज पढ़ना आसान नहीं होता, और हर मुस्कुराता चेहरा परेशान नहीं होता। कभी खुशी कह जाती है, कभी दर्द छुपा लेती है। ये आंखें भी न जाने कितनी दास्तां सुना देती है। और सच भी है, आंखें सिर्फ चेहरा नहीं सजाती, ये तो दिल के हालात भी बयां करती है। किसी की एक नज़र में मोहब्बत मिल जाती है, तो किसी की खामोशी में एक पूरी कहानी कह जाती है। कहते हैं शायरी वही होती है जो दिल तक पहुंच जाए, और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सिर्फ आँखों के ज़रिए महसूस किए जाते हैं।

कहते हैं कभी कोई धुन पुरानी यादों का दरवाज़ा खोल देती है और कभी कोई शेर दिल की बात कह जाता है। मोहब्बत, याद और इंतज़ार, ये वो जज्बात हैं जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर रहते हैं।

तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आबशार में अभी बाकी है कुछ और खूबसूरत गजलें, कुछ और दिल को छू जाने वाले लम्हे। सुनते रहिए आबशार, आज प्रीति है आपके साथ।

कहाँ मिलता है सुकून इस दुनिया की भीड़ में, कहाँ मिलता है सुकून इस दुनिया की भीड़ में। कभी कभी करार मिल जाता है किसी अपने की याद में। कहते हैं करार सिर्फ खामोशी का नाम नहीं होता, कभी किसी की आवाज में मिल जाता है तो कभी किसी की मीठी सी बातों में छुप जाता है। ये दिल भी बड़ा अजीब है, जिसे अपना मान ले उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी इस बेचैन दिल को सुकून दे जाती है। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं, जहां फासले भी करीबी का एहसास दिलाते हैं और यादें भी साथ होने का हुनर रखती हैं। तो जुड़े रहिए आबशार के साथ।

0: कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत

0: ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
0: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी

0: ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में

0: तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, वक्त हो गया है ठीक रात के 9:02 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ स्टूडियो में लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है पॉप टाइम। फिलहाल माइक इस पार है, आरजे प्रीति आपके साथ रात 12 बजे तक रहेगा हमारा और आपका साथ, लेकिन साथ साथ बजेंगे कुछ खूबसूरत नगमे, होंगी आपसी आप ही की ढेर सारी बातें, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमें ईमेल, हमारा है वही पता fmakashwanilakhnow@gmail.com। फिलहाल हमारे पास बहुत सारी ईमेल फ्लैश हो रही हैं, लेकिन ये वक्त कहता है कि प्रोग्राम की शुरुआत बातों से नहीं सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए, गानों से भी होनी चाहिए। तो चलिए पहला एक खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर मैं भेज रही हूँ, इसको सुनिए, इंजॉय करिए, क्योंकि 9 से 10 सिर्फ और सिर्फ फुल ऑन वॉल्यूम के साथ गाना सुनना है आपको। थिरकने पर मजबूर ना कर दें तो फिर बात ही क्या, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर गाने पे आप नाचने गाने लग जाएं गाते हुए और फिर डिनर का है टाइम और उसकी वजह से आपकी हेल्थ को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके लिए सुनिए ज़रूर, थिरकिए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा बच के सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। फिलहाल आरजे प्रीति है आपके साथ।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
4: जब जाएगा 100.7 एफएम रेनबो का सतरंगी रंग,
5: कोई

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार फिर से हम आ गए हैं और आपकी ईमेल इतनी सारी आ गई हैं कि मुझे लगा कि तीसरा गाना प्ले करने से पहले आपकी ईमेल को शामिल कर लिया जाए, अदरवाइज इनबॉक्स इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ईमेल मिस हो जाती हैं। जैसे कि कल 5-6 ईमेल के मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम ले पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम, लेकिन आज मैंने बिल्कुल ठान ली है कि आज सारी की सारी ईमेल मुझे पढ़नी है। और शुरुआत करते हैं सुल्तान रजा जी से। भाई उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी सी क्यूट सी आरजे प्रीति मैम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं कितनी फ्लुएंटली पढ़ने लगी हूँ, क्यों सुल्तान जी कैसी हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी खुशी की बात है, आप कल भी आए थे और आज भी हमसे मिलने आ गए हैं। बिल्कुल ये सही आपने कहा है, हम आपसे मिलने आए हैं और जिस तरीके से आप प्यार बरसाते हैं आप लोग ईमेल में, उससे लगता है कि हमें स्टूडियो से जाना ही नहीं चाहिए, हम लोग को यहीं पर बैठना चाहिए, आपकी ईमेल पढ़ने चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए और सिर्फ गाने सुनाना चाहिए। और लिखते हैं कि तस्वीर में आपने लिखा है कि आज भी हमसे मिलने आ गए हैं, अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। बहुत सही बात आपने लिखी है। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से इकबाल रजा, जिशान रजा, अफजल रजा, मुनीश और रजा सदी, सादिक रजा, मम्मी पापा और पूरा रजा परिवार। आज आपने पूरा लिखा है, अदरवाइज आप मम्मी पापा पर ही रुक जाते थे। लीजिए भैया आज भी इनका एक जोक आया है बड़ा ही खूबसूरत सा, इसको सुनिए।

और इंजॉय करिए. लिखते हैं मैं अकेला बैठकर न्यूज देखूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा. पापा के साथ न्यूज देखूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया. और फिर पापा की नजर कभी मुझ पर तो कभी अब जिसका नाम आपने लिखा है उसको हम पढ़ेंगे तो नहीं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने ये कहना चाहा है कि जो हम पैरों में पहनते हैं कभी नज़र इन पर होती है तो कभी उस चीज़ पर होती है जिसे पैरों में पहनते हैं. तो भाई आप इस तरीके के जो जोक आप लिखते रहते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है और आपके बड़ी ही इनोवेटिव से जोक्स होते हैं. थैंक यू सो मच. अंसारी का भी मेल आया है, लिखते रेनबो कैफ़े पेश करने वाले को हमारा आदाब, आपको भी हमारा आदाब. और प्रोग्राम आप रोज़ सुनते हैं और ये हमें मेल किया है हररपुर मटकली ज़िला बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद शकील, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान, और पहले ही लिख दिया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आशीष शर्मा का भी मेल आया, हेलो गुड इवनिंग मैम, हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल कर रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं आप जी, शुक्रिया. और चार लाइनें इन्होंने हमारे लिए भेजी हैं, ज़रा इसको गौर फरमाइएगा आप सब. लिखते हैं हवाओं में तैरती है खूबसूरत आवाज़ हैं आप, FM रेनबो की सबसे हसीन अंदाज़ हैं आप, उदास चेहरे पर जो पल में मुस्कान ले आए इस रेडियो की दुकान का वो नायाब साज हैं आप. क्या बात है, बड़ा ही खूब लिखा है आशीष शर्मा जी. किसी दिन आपको भी हमें लग रहा है स्टूडियो में बुलाना ही पड़ेगा. थैंक यू सो मच. और रामराज जी का भी मेल आया है, ओम गणेशाय नमः के साथ शुरुआत करते हैं. पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज. अच्छा रामराज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो सारे नाम एक लाइन में लिखते हैं ना, अगर आप जैसे आपने लिखा राजू भान, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट एंटर प्रेस किया करिए, जो मतलब आपके मोबाइल में हो गया एंटर की जो नेक्स्ट लाइन पे जाता है ना, तब आप दूसरा नाम लिखा करिए, फिर आप तीसरा नाम लिखा करिए. इससे क्या होगा ना, वो पढ़ने में इजी होता है. और ये सारे बिना कॉमा के होते हैं तो आप समझ रहे होंगे पंचुएशन का यूज़ है ना. तो फिर भी हम पढ़ेंगे ज़रूर आपके सारे नाम, रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण, ननकई. सबसे पहले हमारी तरफ से प्रीति बिटिया को प्यार भरा नमस्कार जी, शुक्रिया. अच्छा जी, कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप एंटर नहीं भी प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन वाला तो भी हम आपके मेल को यूं ही पढ़ेंगे. आशीर्वाद आपका हमें मिल गया है, प्रोग्राम आपको हमारा बहुत पसंद आता है जी, शुक्रिया. और आगे लिखते फ्लोरी बिना अच्छा फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, और इस गाने की आपने फरमाइश की है, कोशिश करेंगे प्ले करने की, लेकिन अब वक्त हो गया है गाने को प्ले करने का. और एक मेल है अंशुल जी का, और उन्होंने कुछ किसी के लिए मैसेज भेजा है, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे. अंशुल जी, अगर आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो जिसके लिए भी आपने ये मैसेज भेजा उनसे कहिए ऑन एयर हो जाए और बस नेक्स्ट जो मेल पढ़ी जाएगी वो आपकी ही होगी. सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो. फिलहाल आरजे प्रीति है आपके साथ.

हाँ जी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि जब भी अभी गाने प्ले करने के बाद हम लौटेंगे तो एक मेल है जो कर रही है बेसब्री से इंतज़ार पढ़ने के लिए, यानी कि हमसे पढ़वाने के लिए. तो शामिल करते हैं मेल अंशुल जी की, और इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा मेल किया है और इंग्लिश में है. उनकी कुछ लाइनें हैं और लिखते हैं कि किसी भी फॉर्मेट में इसको बोल दिया जाए और ये भी बता दिया जाए कि ये किस दिन प्ले होगा. फिलहाल जो है आज तो हम इसे शामिल कर लिए हैं आपकी मेल को. और ये आप चाहते हैं, जैसा कि इस मेल को 29th और ये 30th जून को, यानी कि कल और परसों में पढ़ी जाए, तो आप ये कर सकते हैं अंशुल जी कि सेम मेल को आप कल भी भेज दीजिएगा और परसों भी भेज दीजिएगा, और बस आप मेल कर दीजिएगा कि आपकी मेल को शामिल कर लिया जाए. फिलहाल वैसे जो भी आर्जेज होते हैं यहाँ पर मेल को ज़रूर शामिल करते हैं. सेम मेल आप 29th एंड 30th को सेंड कर दीजिएगा. थैंक यू मेल करने के लिए अंशुल जी. और मोहम्मद आसिफ का मेल आया है, हैदराबाद तेलंगाना से मेल को भेजा है और वहाँ से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं. आफशार को बहुत ही पसंद किया है उन्होंने और लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं. अच्छा, ये वाला लाजवाब लगा, जिसका दिल टूटा हो वो तो ज़रूर आबशार ज़रूर सुने. जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं रहने वाला राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ. मेरे साथ कुछ लोग हैं जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बबीता राव, रोशनी रावत दीदी. तो भाई बबीता रावत और बबीता राव और रोशनी रावत, आप जहाँ कहीं भी हैं तो आप के लिए भाई मोहम्मद आसिफ ने मेल भेजा है, आप भी इनको रिवर्ट बैक ज़रूर करिए. ओके, मोहम्मद अजान का भी मेल आया है, गुड इवनिंग भेजा है, अस्सलाम वालेकुम. आपको भी अस्सलाम वालेकुम. और हमें ऐसे ही उर्दू के और भी अच्छे अच्छे शब्द आप लोग सिखाइए. सुल्तान जी, अजान और तालिब अंसारी बहुत सारे हैं जिनसे मैं कह सकती हूँ कि अच्छे अच्छे ऐसे शब्द दीजिए जिससे मैं सीखूँ और इस तरीके से फ्लुएंटली बोलूँ. आगे लिखते हैं, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, आप बहुत अच्छे हैं. अच्छा ठीक है, शुक्रिया. आपको हम सऊदी अरब से रोज़ सुनते हैं. देखो भाई, अब मतलब विदेश से भी लोग हमें सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है. मेरा घर कुंदा प्रतापगढ़ में पड़ता है, मुझे ये गाना सुनना है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं. ओके, दीवाना फिल्म का है और डेडिकेट करना चाहते हैं, ये भी हम बता दें कि अपनी बहनों को रिंकी और पिंकी रायबरेली से. देखिए हमने आपकी मेल को शामिल कर लिया है, गाने के बोल और जिनको डेडिकेट किया उनका भी नाम शामिल कर लिया, लेकिन हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि इस सेगमेंट में ये वाले गाने नहीं हम प्ले कर सकते. आई एम सो सॉरी अजान जी. मोहम्मद आसिफ का फिर से मेल आया है और सेम मेल भेजा है जी, शुक्रिया मेल करने के लिए. लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मेल भेजा करिए जिससे हर किसी की मेल शामिल हम कर सकें. जितेंद्र नामदेव का मेल आया है, ये मेल किया है कहाँ से, ग्राम पोस्ट कनौदी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से किया है. ओके, गुड इवनिंग प्रीति जी, आपके बोलने का अंदाज़ बहुत ही अलग और बेहतरीन है, गाने मस्त सुनाए जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. जी जितेंद्र जी, हमारे तरफ से भी आपको धन्यवाद और शुक्रिया इतना खूबसूरत सा मेल करने के लिए. और इतनी दूर दूर से हमारे प्रोग्राम को आप सब सुनते हैं, वक्त देते हैं, प्रोग्राम को इंजॉय करते हैं और उसका फीडबैक भी देते हैं, ये हमारे लिए बड़े मतलब मायने रखती है आपकी बातें. तो यूं ही जुड़े रहा करिए और जब भी कोई भी आए उनको यूं मेल से उनको फीडबैक देते रहा करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है और अच्छा लगता है. आपको नहीं अच्छा लगता किसी को अच्छा सा फील कराएं? और बहरहाल हमें आपका मेल पढ़ के तो बड़ा ही अच्छा लगता है. फिलहाल जिन्होंने भी अभी तक ईमेल नहीं किया और वो सोच में है कि कहाँ पे मेल करें और उनका भी शामिल हो जाए ईमेल, तो आपको बता दें fmakashwanilakhnow@gmail.com ये है हमारा पता. और अभी तक आपका ईमेल क्यों नहीं आया? जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक आपकी ईमेल नहीं आई है, ये है हमारी तरफ से शिकायत आपके लिए. फिलहाल ये गाना इंजॉय करिए, कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो. प्रोग्राम चल रहा है पॉप टाइम, फिलहाल माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ.

तो भाई देखिए दोस्तों, वक्त हो गया 9:48 और कुछ सेकंड्स, लगी नहीं रहा कि हमने 8 बजे में भी प्रोग्राम की शुरुआत की थी। लगभग 2 घंटे हो गए हैं लेकिन वक्त का पता ही नहीं चलता आपके साथ। और इसी तरीके से जो मेल आ रही हैं उसमें भी पता ही नहीं चलता, जब हम पढ़ने लगते हैं तो उनमें खो जाते हैं और वक्त इतना ज़्यादा हम ले लेते हैं पढ़ने का कि जिसमें कुछ ना कुछ हमें लगता है गाने कम हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर मेल पढ़ने का मतलब अलग ही उसका वो होता है ना, चार्म होता है। मेल पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और जितने चाव से आप मेल भेजते हैं, जितनी खुशी से मेल आप भेजते हैं, उसे कहीं ज़्यादा खुशी होती है आपके ईमेल्स को पढ़ने में। और जिसमें जो नेक्स्ट ईमेल मैं शामिल करने वाली हूँ वो है जितेंद्र नामदेव जी का, लिखते हैं। और वैसे जितेंद्र नामदेव जी, मैंने आपका ईमेल ऑलरेडी शामिल कर लिया है। रोशनी रावत का भी ईमेल आया है वही कलरफुल अंदाज में। गुड इवनिंग प्रीति मैम जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और आगे लिखती हैं, लगातार 2 दिन सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लगातार 2 दिन आप लोगों के साथ बात करने का मौका मुझे मिला है। कल कर रजनीकंदा प्रोग्राम की आपने तारीफ की है, आपको बहुत पसंद आया जी, शुक्रिया। और आज भी कमाल होगा, बिल्कुल आपने जैसी बात की है वैसा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोग्राम पसंद आए। पॉप टाइम एंजॉय कर रही हैं, मेरा नाम रोशनी रावत है, बिल्कुल हमने बता दिया सबको। और इनका पता है तहसील बमना, तहसील सफीपुर, ज़िला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बड़ी ही दूर हैं आप, कोई बात नहीं, बड़ी खूबसूरत जगह हैं पे हैं आप। बबीता राम, नीलू दीदू क्यों लिखा भाई, नीलू दीदी, गुलफसा दीदी, शाजिया जी, साहिबान सारी, समा परवीन, यासिर भाई, महेंद्र, दीपेंद्र भाई, तालिब भाई, आसिफ भाई जी को मेरा सलाम बोल दीजिए। भाई देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग, रोशनी रावत ने इतने सारे नाम लिए हैं और आप सबको सलाम भेजा है। तेज बहादुर यादव जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि पॉप टाइम शो आज प्रीति दी के साथ। जी बिल्कुल, प्रीति को मेरा प्यार भरा नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? आपकी सुरीली आवाज़ और आपकी प्रस्तुति हमें बहुत भाती है, हम हमेशा सुनते हैं, बस मेल इस कार्यक्रम में बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि इस समय हम अपनी दुकान पर थोड़ा व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल आप व्यस्त रहिए और खुश रहिए। मुझे तो ये लगता है कि जब तक हम बिज़ी नहीं रहते तब हम दुखी होते हैं, और जितना ज़्यादा हम बिज़ी होते हैं उतने ज़्यादा हम खुश होते हैं। हम ज़रूर कहते हैं अरे यार टाइम नहीं मिल रहा, हम थक गए हैं, एक वक्त भी नहीं हो पा रहा कि हम चैन से लेट पाएँ, चैन से खाना खा पाएँ। लेकिन आप अपने आप को, ये सबके लिए है, आप अपने आप को लकी समझिए, खुशनसीब समझिए अगर आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है। और अगर आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सफल हैं। तो यही चीज़ है तेज बहादुर यादव जी आपके साथ भी। और मैं तो आपसे कहूँगी पूरा दिन आप अपनी दुकान पर इतना व्यस्त रहें कि आपको थोड़ा भी वक्त ना मिले, बस कानों को आप अपने खुले रखिए और हाथों को बिजी रखिए, अपनी दुकान पर आप काम करते रहिए। पर आज संडे की वजह से दुकान बंद है, कोई बात नहीं, घर पर हैं इसलिए समय मिल गया अपनी हाजिरी लगवाने का। हमने कल भी आपके प्रोग्राम को सुना, बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाए थे आपने जी, शुक्रिया। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बहन ज्योति यादव, बच्चे रोनित यादव और बेबी वानिका जी, इन्होंने अपना पता बताया है, रायबरेली उत्तर प्रदेश से, अभी हम गुरुग्राम हरियाणा में हैं, सुन रहे प्रोग्राम जी, शुक्रिया। ऑन एयर है यानी कि आप ऐप पे हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए वक्त कह रहा है कि और सारे मेल को जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम आपकी पूरी मेल पढ़ने लगते हैं और इसमें वक्त बहुत आगे निकल जाता है। मुनेश कुमार राज जी का भी मेल आया लखीमपुर खीरी से, और शुभ रतिया, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में, शुभ रतिया, अब से हम लोग शुभ रात्रि नहीं बोलेंगे, शुभ रतिया बोलेंगे, सच में बहुत ही देसी लग रहा है ये। और लिखते हैं कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, आपकी आवाज़ में जो मिठास है वही तो इस शो की जान है। भोजपुरी सॉन्ग बजाएं तो हम थिरक उठते हैं, पैर खुद ब खुद थमते नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। आपके यहाँ मौसम कैसा है मैम? फिलहाल राज जी हम बता दें, हम तो स्टूडियो के अंदर है, आप ही हमें बता दीजिए कि वहाँ के मतलब मौसम का हालचाल कैसा है। लखीमपुर में अभी बादल घिरे हैं, ठंडी हवा चल रही है। भाई लखनऊ वाले कहाँ हैं आप, ईमेल करके बताइए ना, हम भी जिससे बता सके। लखनऊ का मौसम ऐसा है। अनंत तिवारी का भी मेल आ गया है, अनंत तिवारी ने मेल हमें किया है दारूकुइया मल्लावा हरदोई से, और ज़बरदस्त प्रोग्राम लग रहा है, रिश्तों की कदर भी पैसों

की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान है। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने। महेंद्र दीपेन का भी मेल आया, रेनबो कैफे में आरजी प्रीति मैम की आवाज़ जादू का जादू बिखेर रही है। आपका लाभ, आपकी लाजवाब प्रस्तुति हम सब श्रोताओं का दिल जीत रहे। रूरगांव नागौर राजस्थान से महेंद्र दीपेन का पैगाम आया है। इस खुशनुमा महफिल में एक पंजाबी सॉन्ग सुनने का मन बनाया है, बड़ा ही अच्छा लिखा है आपने। सुल्तान भाई, बाबू भाई, अंसारी, रोशनी और बबीता दीदी भी संग है आपकी इस मीठी आवाज़ में। आज की शाम का बेहद खूबसूरत रंग है। सुल्तान रजा जी ने फिर से मेल किया है, कह रही पता नहीं, अच्छा कह रहे हैं कि अब आप कब आएंगी, इसलिए कुछ शब्द आपके लिए लेकर आए हैं। और देखिए म्यूजिक खत्म हो गई, इसका मतलब वक्त हो गया गाना बजाने का, लेकिन मेल हम जरूर पढ़ेंगे आपका। उर्दू में जैसे आप बोलना सीखिए, हम आपको बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप उधर से बोलना वाह, अच्छा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखो, अब हम गलत नहीं बोलेंगे, हम इसको लिख लेंगे और फिर हम नेक्स्ट जब भी आएंगे सुल्तान, मैं ऐसे ही आपको जवाब दूंगी। हम पूछते हैं मैम आप खैरियत हैं, आप कहना वापसी में। अच्छा देखिए, थोड़े से शब्द बड़े बड़े, हम इसको जो है इसकी पिक्चर क्लिक कर लेंगे, रख लेंगे और इसको हम सीख के आएंगे। सुल्तान जी प्रॉमिस है ये। परवीन का भी मेल आ गया है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में बी को बहुत ठंड लगती है। अच्छा भाई, अच्छा क्योंकि ए जो है बी ए सी के बीच में है। बड़े प्यारे प्यारे जोक भेजते हैं जिसको समझने में हमें ही वक्त लग जाता है। कोई बात नहीं, एक अच्छा सा ट्रैक है हमारे पास जो मुझे लग रहा है तो पुराना, लेकिन उसकी जो वो चाम है वो आज भी वैसे ही है, क्योंकि जो पुराने गाने होते हैं रीमिक्स पॉप सॉन्ग्स वो आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं। वक्त हो गया 9:54 और कुछ सिंगर्स, और इस वक्त के साथ ही आपको बता दें ये पॉप टाइम का लास्ट ट्रैक आपके लिए आपके रेडियो सेट पर, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, यानी कि इस वक्त आपने ऑन एयर ट्यून कर रखा है ऑन आपको जाना वैसे भी कहीं नहीं है, क्योंकि रात 12 बजे तक हमारा और आपका साथ यूं ही चलता रहेगा। इस प्रोग्राम के उस पार न्यूज़, न्यूज़ के उस पार रजनीगंधा में मिलेंगे हम और आप एक बार फिर से।

नमस्कार। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए। जिन संस्थानों की फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने वाली है अथवा जिनके पास अब तक वैध फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राज्य की 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बसपा के कई नेता और कार्यकर्ता आरपीआई में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के विकास के और जन कल्याण के 12 वर्षों के कार्यकाल के अंतर्गत वरिष्ठ जनों से संपर्क अभियान के तहत प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिजनों एवं परिवार के सदस्यों से शिष्टाचार भेंट कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों तथा योजनाओं की जानकारी साझा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 12 वर्षों में विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने जिला महिला अस्पताल परिसर के बूथ से पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बूथ डे के अवसर पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुभारंभ की। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद को पोलियो मुक्त रखने के लिए अभियान में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए, 100% बच्चों को पोलियो की खुराक से आच्छादित किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जो बच्चे रविवार को पोलियो की खुराक पीने से छूट जाएंगे, उन्हें अगले 5 दिनों तक 1167 टीम द्वारा घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खामोशी।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से पहचाने जाते हैं, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते जिए जाते हैं, और कुछ रातें यूं ही नहीं उतरती, वो अपने साथ यादों की एक पूरी महफिल लेकर आती हैं। अगर इस वक्त आपकी खिड़की से चांद झांक रहा है या आपकी तन्हाई किसी अपने को पुकार रही है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रीति और आप सुन रहे हैं रजनीगंधा, जहां हर रात महकती है उन सदाबहार नगमों से जिन्होंने मोहब्बत को आवाज दी, इंतजार को लफ्ज दिए और धड़कनों को संगीत बना दिया। तो आइए वक्त की सुइयों को थोड़ा पीछे मोड़ते हैं, उन सुनहरे दिनों की ओर जहां हर धुन दिल से निकलती थी और हर गीत सीधे रूह में उतर जाती थी। शुरू करते हैं रजनीगंधा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ और उन अमर फसानों के साथ जो आज भी हर धड़कन में जिंदा है। सुनते रहिए।

वहम गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

रात की खामोशी में एक अजीब सी कशिश होती है, हर आवाज धीमी पड़ जाती है और हर दिल की बातें कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगती हैं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसे कभी साबित नहीं करना पड़ता। वो किसी वादे, किसी कस्में या बड़े बड़े लफ्जों की मोहताज नहीं होती। उसका होना ही काफी होता है। कभी किसी की हंसी में उसकी झलक मिल जाती है तो कभी किसी की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। और कभी बरसों पुराना कोई गीत अचानक दिल के उस कोने को छू लेता है जहां आज भी किसी की याद महफूज रहती है। सच्चा प्यार शायद इसी का नाम है, जहां साथ हर वक्त जरूरी तो नहीं होता, लेकिन एहसास हमेशा साथ रहता है। वक्त बदलता है, मौसम बदलते हैं, जिंदगी नई मोड़ ले लेती है, मगर दिल, कमबख्त दिल जिस मोहब्बत को सच्चे मन से अपना ले, उसकी खुशबू कभी कम नहीं होने देती।

कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके आने के बाद किसी और की तलाश ही नहीं रहती, उसकी मौजूदगी ही हर अधूरी ख्वाहिश पूरी नकल रखती है और हर धड़कन में सिर्फ उसी का एहसास बच जाता है।

ही हो जिसे मेरा दिल बिना किसी वजह के अपना मान बैठा है। तुम वही हो जिसे मेरा दिल बिना किसी वजह के अपना मान बैठा है। तुम्हारे साथ होने पर हर पल खास लगता है और तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। तुम्हारी आवाज मेरे दिल का सबसे प्यारा सुकून। मोहब्बत शायद यही होती है जहाँ किसी को पाने की जिद नहीं बल्कि उसे हर हाल में खुश देखने की दुआ होती है। जहाँ रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से निभाया जाता है। जहाँ हर दुआ में एक ही नाम शामिल होता है और हर ख्वाब में एक ही मंजिल। अगर दिल को कभी किसी पर पूरा यकीन हुआ है तो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे साथ होने का एहसास ही मेरी दुनिया को मुकम्मल बना देता है। तो इसलिए मेरे लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ एक नाम है, तुम। तो चलिए अगला गीत। ये वादा रहा फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, सुनते रहिए।

कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में आते नहीं बस ठहर जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी में आते नहीं बस ठहर जाते हैं, बिना शोर किए, बिना कोई वादा किए। वो धीरे धीरे हमारी हर आदत का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक दिन एहसास होता है कि अब तो हर खुशी का मतलब बस और बस वही है, हमारी हर मुस्कुराहट की वजह वही है। तब दिल से निकलती हैं कुछ इस तरह की बातें कि तुम्हें देखकर हमेशा यही लगता है कि दिल ने इस बार कोई गलती नहीं की, उसने जिस पर भरोसा किया वो सच में भरोसे के काबिल निकला। तुम्हारी आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो हर बार मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। अजीब बात है, तुम्हें चाहने की कोई वजह कभी मिली ही नहीं, फिर भी हर दिन तुम्हें पहले से ज्यादा चाहने का एक नया कारण जरूर मिल जाता है। शायद मोहब्बत का मतलब किसी को बदलना नहीं बल्कि उसके साथ रहते हुए खुद का सबसे अच्छा रूप बन जाना होता है। तो अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि सबसे कीमती चीज क्या है, तो मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगी, बस तुम्हारा। क्योंकि कुछ लोग किस्मत से नहीं मिलते, वो दिल के फैसले होते हैं, और शायद हमारा सबसे खूबसूरत फैसला वो होता है जिनके आने से जिंदगी ठहर सी जाती है।

दोस्तों कहते हैं कि रात जितनी खामोश होती है दिल उतनी ही जोर से बातें करने लगता है। दिन की भागदौड़ में जो बातें हम खुद से भी नहीं कह पाते, रात उन्हें धीरे धीरे एहसासों में बदलने लगती है। शायद इसलिए मोहब्बत का सबसे खूबसूरत वक्त भी यही होता है, 10 से 12 का वक्त। अच्छा, आज मैसेज भेजना कितना आसान हो गया है, कॉल करना भी आसान है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब खत लिखे जाते थे, एक वो भी दौर हुआ करता था, तब एक आशिक अपनी महबूब तक सिर्फ शब्द नहीं भेजता था, अपना पूरा इंतजार भेजता था, हर पन्ने पर उसका यकीन होता था, हर लाइन में उसका प्यार, और आखिर में लिखा होता था तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। सिर्फ एक लफ्ज ये नहीं होते थे, पूरी जिंदगी का एहसास होता था। काश आज भी लोग थोड़ा कम टाइप करते और थोड़ा ज्यादा महसूस करते, और अगर इस वक्त कोई आपकी यादों में है तो उन्हें बस इतना महसूस होने दीजिए कि इस दुनिया में कहीं एक दिल ऐसा भी है जो उनकी मुस्कान को अपनी सबसे प्यारी वजह मानता है। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रीति, आप सुन रहे हैं वो रात जहां हर धड़कन की अपनी एक कहानी है। सुनते रहिए रजनीगंधा।

दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें वजह कम और एहसास ज़्यादा होते हैं। दिल जब किसी को अपना मान लेता है तो फिर फासले ये सब नक्शे पर रह जाते हैं, एहसासों में नहीं। किसी का ख्याल बार बार आना इत्तेफाक नहीं होता। शायद दिल अपनी पसंद बहुत सोच समझ कर चुनता है। और हर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जहाँ बार बार आई लव यू कहा जाए, बल्कि वो होता है जहां बिना कहे

सब कुछ समझ लिया जाए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में शायद सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि खूबसूरत एहसास आज भी जिंदा है। अगर किसी की मुस्कान आपकी वजह से हो तो समझ लीजिए आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली। क्योंकि प्यार जताने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन किसी के लिए दिल में जगह बन जाना, ये एहसास कभी भी पुराना नहीं होता। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर। रजनीगंधा का पहला पड़ाव रात 11 बजे तक। इन बातों के साथ एक और गीत, और इस गीत के साथ ही न्यूज के उस पार रजनीगंधा एक बार फिर से करेगा आपका इंतजार। रहिएगा जरूर हमारे साथ रात 12 बजे तक। फिलहाल आज रात के हम सफर आरजे प्रीति है आपके साथ, सुनते रहिए

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सामूहिक भावना से राष्ट्र को और मजबूती मिलेगी तथा वह सफलता की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित प्रदेश के विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद में लोकमाता अहिल्या बाई होलकर के 301वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लोनी बॉर्डर बस डिपो के निकट लोकमाता अहिल्या बाई होलकर स्मृति द्वार का शिलान्यास किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि लोकमाता अहिल्या बाई होलकर ने अपने आदर्श शासन, न्यायप्रिय व्यवस्था और लोक कल्याणकारी कार्यों से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और अनेक धर्म स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम और योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अगले चरण यानी अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया गया है। यह लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम और आगामी अपडेट्स देखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://upppb.gov.in पर जा सकते हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, रजनीगंधा में। वक्त हुआ है रात के 11:05 और कुछ सेकंड्स, और माइक के इस पार आज रात आपके साथ है आरजे प्रीति। फिलहाल रजनीगंधा में कर रहे हैं कुछ दिल की बातें, और दिल से ही जुड़े हुए कुछ नगमे सुन रहे हैं। और दिल में कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो बहुत सारे एहसास होते हैं। कभी मोहब्बत में भरोसा होता है तो कभी मोहब्बत में दूरी होती है, कभी इंतजार होता है कभी इजहार होता है, कभी नाराजगी होती है तो कभी माफी होती है। ये सभी एहसास मिलकर एक शब्द को बनाते हैं, एक एहसास को, जिसे कहते हैं मोहब्बत। और हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन उसे उम्र भर संभाल कर रखने का काम एक ही चीज करती है, उसे कहते हैं भरोसा। दोस्तों, भरोसा वो एहसास है जहां हर बात का सबूत नहीं मांगा जाता, हर खामोशी पर सवाल नहीं उठते, और हर दूरी को जुदाई नहीं समझा जाता। क्योंकि जब दो दिलों के बीच भरोसा होता है तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं, क्योंकि भरोसे के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, एक नजर ही काफी होती है हाले दिल समझने के लिए, और एक मुस्कुराहट दिन भर की थकान मिटाने के लिए। भरोसा दरअसल ये यकीन है कि चाहे जिंदगी कितने ही इम्तिहान क्यों ना ले, कोई एक शख्स ऐसा है जो आपका हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से थाम लेगा, और अगर कभी रिश्तों की सच्चाई समझनी हो तो उसे शब्दों में नहीं समझनी चाहिए, जी उसे सुरों में महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ धुनें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो दिल के अंदर तक उतर जाती हैं और वहीं किसी अपने की तरह बस जाती हैं। तो चलिए इस एहसास को आगे बढ़ाते हैं और खुद को छोड़ देते हैं उस गीत के हवाले जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। सुनते रहिए रजनीगंधा।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ना जिनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस नाम आते ही एक सुकून सा महसूस होता है। ना हर बार बात होती है, ना हर दिन मुलाकात होती है, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके दिन का हिस्सा बने रहते हैं। कभी किसी गाने में, कभी किसी बात में, और कभी बस यूं ही एक ख्याल बनकर। शायद यही होता है दिल के पास होना, बिना वजह बस अपनी जगह बनाए रखना।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना पल पल तुम दिल के पास रहती हो, ब्लैकमेल फिल्म से ये था गाना। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई किसी को याद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई शख्स आपकी सोच से कभी दूर हो ही नहीं जाता, कभी दूर हो भी नहीं सकता। दिन हो या रात, काम हो या आराम, एक चेहरा एक एहसास हर वक्त साथ चलता रहता है। कभी किसी बात में उसकी हंसी

याद आ जाती है तो कभी किसी खामोशी में उसका अंदाज। और अजीब बात यह है कि उसे याद करने के लिए कोई वजह भी नहीं चाहिए होती, वो बस दिल के किसी कोने में अपनी जगह बना चुका होता है। और फिर वक्त बढ़ता जाता है। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, बाहों में चले आओ। ये सिर्फ बुलावा नहीं है, ये एक एहसास है किसी के सामने अपने दिल को छुपाने की जरूरत नहीं रहती, जहां कोई डर नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती, बस एक अपनापन होता है जो कहता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा। कभी कभी प्यार का मतलब बड़ी बातें नहीं होती, बस इतना होता है कि कोई आपके दिल के इतना करीब हो जाए कि दूरी का कोई मतलब ही ना रहे, या फिर कहें दूरी का मतलब ही खत्म हो जाए। सुनते हैं अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में, अनामिका फिल्म से।

जहां पास होना सुकून भी है और खो देने का डर भी। खोने का डर ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये तो प्यार की वो गहराई है जहां इंसान सिर्फ साथ नहीं चाहता बल्कि हर हाल में उस शख्स को अपने करीब महसूस करना चाहता है। और जब कोई हमारी जिंदगी में बहुत अहम जगह बना लेता है तो उसकी मौजूदगी धीरे धीरे हमारी आदत बनती रहती है, बल्कि हमारी धड़कनों का हिस्सा भी बन जाती है। वो आदत के साथ साथ धड़कन भी, उसकी एक छोटी सी चुप्पी भी हमें बेचैन कर देती है और उसकी एक आवाज पूरा दिन रोशन कर देती है। फिर हाल ऐसा हो जाता है कि हम हर पल उसे संभाल कर रखते हैं, जैसे वो सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी सबसे प्यारी याद हो जिसे हम कभी खोना ही नहीं चाहते। और अजीब बात यह है कि जितना हम उसे खोने से डरते हैं उतना ही वो हमारे और करीब होता जाता है, क्योंकि प्यार हमें कभी भी डराता नहीं है, वो तो बस और गहराई से हमें जोड़ देता है। सुनते हैं अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में, लग जा गली।

दोस्तों, खामोशियों में जो फिक्र झलक जाए वही तो रिश्तों को सबसे खास बना जाए। कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी आवाज लफ्ज़ नहीं होते बल्कि वो खामोश फिक्र होती है जो बिना बताए भी महसूस हो जाती है। और ऐसे में किसी की परवाह करना ये भी तो एक एहसास है। परवाह वो एहसास है जो बिना शब्दों के सबसे ज्यादा बोलता है। ये किसी बड़े वादे में नहीं होता बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है, जैसे किसी का ये पूछना कि तुमने खाना खाया या नहीं, या देर रात घर पहुंचने तक बेचैनी सी लगी रखना, या फिर तुम्हारी आवाज में हल्की सी उदासी को तुरंत पकड़ लेना। ये भी तो परवाह होती है ना। ये वो चीज है जो रिश्तों को सिर्फ जोड़ती नहीं बल्कि उन्हें जिंदा रखती है। हमें महसूस होता है कि सामने वाले को फिक्र है हमारी, क्योंकि फिक्र हर दिन ये एहसास कराती है कि कहीं ना कहीं कोई है जो तुम्हें सच में महसूस करता है, बिना कहे बिना जताए। इसलिए अगर अभी भी आपको किसी की परवाह होती है, किसी की फिक्र होती है, लेकिन आप उसे मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहते, यकीन मानिए फिर वो दिल के किसी को

कोने में उसने जगह जरूर बना ली है, वरना बेवजह किसी की परवाह हम नहीं करते, है ना? और जब किसी की परवाह हम बेइंतहा करने लगे तो समझिए उसने दिल में दस्तक दी है और दिल के दरवाजे उसने बंद कर दिए हैं। किसी और के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी उसने। तो इसीलिए मैंने कहा था, मोहब्बत के बहुत सारे जज्बात होते हैं, उसमें से एक जज्बात ये भी है। हमने देखी है उन आंखों में। अगला गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में आपके लिए।

दोस्तों, वक्त हुआ है 11:53 और 46 सेकंड्स, और इसी के साथ दोस्तों आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होने को है। कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बस महसूस की जाती हैं, और शायद आज की ये मुलाकात भी कुछ ऐसी ही थी। अगर किसी बात ने आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छोड़ दी हो, या किसी ख्याल ने आपको थोड़ी देर के लिए रोक लिया हो, तो समझिए हमारी ये शाम कामयाब रही। याद रखिए, जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं।

लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ रह जाते हैं, बिल्कुल रजनीगंधा की खुशबू की तरह। मैं हूं आपकी आरजे प्रीति, फिर मिलेंगे नई बातों, नए एहसासों और उसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, शबा खैर।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और विकासशील लघु द्विपक्षीय देशों की आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा में आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्य योजना, जनपदीय विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्य योजना की धनराशि तत्काल अवमुक्त कर कार्य प्रारंभ कराएं, कार्य योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाए जिससे कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध पूर्ण हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को तैयार करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बीच भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के लिए एक अन्य कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। श्री मोदी ने इसे आधुनिक प्रौद्योगिकी और भारत के परंपरागत ज्ञान के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और विश्वविद्यालय को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी दिनों दोनों हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:15 और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 और 17 सेकेंड्स हुए हैं।